ये आकाशवाणी है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 700 से

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी

0: समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 4.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जल कृषि और मिश्रित मत्स्य पालन विषय पर डॉक्टर शरद कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां आपके पास जल संसाधन है यानी तालाब है, तो आप जल कृषि और मिश्रित मत्स्य पालन कैसे करें।

0: इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जल कृषि है क्या?
1: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। पानी के अंदर जो भी खेती की जाती है, जैसे मछलियों की खेती हुई, सिंघाड़े की खेती हुई, मखाने की खेती हुई, जलप्लावक की खेती हुई, कमलगट्टे की खेती हुई, झींगों की खेती हुई, मोती पालन की खेती हुई, इस तरह से अनेक प्रकार की जो खेती जल के अंदर की जाती है, तो ये सभी समाहित हैं।
0: तो इनका नियोजन हो कैसे एक साथ?
1: इनके नियोजन के लिए अलग अलग विधियां हैं, उनके साथ किया जाता है, साथ साथ मछली पालन भी किया जाता है। आमतौर पर किसान भाई मछली पालन से ही जल कृषि को समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हमने नाम लिया, ये सारी खेती अगर पानी के अंतर किया जाए तो इसको एक तरह के समन्वित खेती का स्वरूप दिया जा सकता है और इसकी खेती की जा सकती है।
0: आपने समन्वित खेती की बात की, तो समन्वित मत्स्य पालन भी है?
1: मछली पालन के साथ साथ अन्य खेती भी जो की जाए वो समन्वित पालन है, जिसमें दो से अधिक पद्धतियों की खेती की जाती है, तो उसे समन्वित पालन कहते हैं।
0: डॉक्टर साहब, मछली पालन के अलावा और क्या क्या हो सकता है?
1: मछली पालन के अलावा जैसे खेती के साथ मछली पालन किया जा सकता है, उसके अलावा जैसे पशुधन के साथ मछली पालन किया जा सकता है। इसमें दो बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें मछली का जो व्यवसाय है वो प्रमुख व्यवसाय होता है और अन्य व्यवसाय जो होते हैं खेती के जो अन्य मानक हैं वो सहायक व्यवसाय होते हैं। और दूसरा तरीका होता है जो खेती मुख्य पेशा होता है और मछली पालन जो होता है वो सहायक व्यवसाय के रूप में होता है।
0: और लगे हाथ जो मिश्रित मत्स्य पालन है, इसके बारे में भी बताते चले।
1: मिश्रित मछली पालन का प्रायः आज भारतवर्ष में कार्प मछली पालन से लिया जाता है। कार्प यानी सफर मछलियों के पालन को मिश्रित मछली पालन किया जाता है, जिसमें तीन देसी मछली और तीन विदेशी मछलियां आती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देसी मछलियों में अपनी भाकुर मछली, जिसे हम कतला वैज्ञानिक रूप से कहते हैं, दूसरा रोहू मछली सभी जानते हैं, और तीसरा नयन या मृगल मछली जो है, ये देसी मछलियों में,
0: यानी भारतीय मेजर कार्प,
1: भारतीय मेजर कार्प इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा अभ्यागत तीन मछलियां हैं जो विदेशों से लाई गई हैं, जिसमें सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है और कॉमन कार्प है।

0: और कॉमन कार्प है। तो इन छह मछलियों के मिश्रित पालन को हम कार्प मिश्रित पालन के नाम से जानते हैं। और इनका मुख्य रूप ये है कि तालाब में अगर तीन स्तर होता है तो तीनों स्तरों में जो प्राकृतिक भोजन होता है ये छह मछलियां इसका उपयोग कर लेती हैं, तो इसलिए मिश्रित मछली पालन कहा गया।
1: तो इनका क्रम क्या है?
0: इनका जैसे तीन मछलियां जो बताया हम, तालाब में तीन स्तर होता है तो कुछ मछलियां ऊपरी सतह में होती हैं, कुछ मध्यम सतह में होती हैं और कुछ निचली सतह में होती हैं। तो ऊपरी सतह में रहने वाली मछलियों में जैसे कतला यानी भाकुर मछली होती है, उसके अलावा सिल्वर कार्प जो विदेशी मछली है वो होती है। सिल्वर कार्प जो है हरी नीली पीली जो काई होती है उसको खाती है, और उसको खाने वाला एक जीव होता है जिसे जंतु प्लवक कहते हैं वो खाती है। उसके अलावा बीच में जो है रोहू मछली होती है, जो ये प्लवक होते हैं वो चिपक जाते हैं तो उनको खाती है। साथ साथ बीच में ग्रास कार्प मछली को भी रखा गया, वो भी जो घास खाती है तो ग्रास कार्प मछली उसको कहा जाता है। निचले स्तर पर रहने वाली मछलियों में मृगल और कॉमन कार्प मछली है। तो मृगल जो है सली गली जो पत्तियां होती है नीचे तली में बैठ जाती है उसको खाती है, और कॉमन कार्प है जो कीचड़ में लाल तरह के कीड़े पैदा होते हैं जिन्हें हम काइरोनोमिट कहते हैं, उनको खाती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जल कृषि और मिश्रित मत्स्य पालन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके जल कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण इकाई आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9838077630 9838077630 9838077630।
1: डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और जल कृषि और मिश्रित मत्स्य पालन है क्या और किसान भाई बहन इसकी शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आपने कृषि चर्चा के अंतर्गत डॉक्टर शरद कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनी। विषय था जल कृषि और मिश्रित मत्स्य पालन।

0: शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाती है और व्यक्तित्व का विकास करती है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के महत्व पर हम सुनेंगे सुविचार के अंतर्गत डॉक्टर धनी राम अवस्थी ने क्या कुछ कहा है।
1: बरसहीं जलधि भूमि निराये, जथा नवहीं बुध विद्या पाए। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा संपूर्ण जीवन का आधार है, जिससे न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपितु मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शक्ति का विकास भी होता है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भली भांति समझता भी है। शिक्षा समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़ियों एवं अनेकानेक बुराइयों को दूर करने की क्षमता रखती है। शिक्षित समाज ही नए नए विचारों, नवाचारों और तकनीक विकास को प्रोत्साहन देता है। संस्कृत साहित्य में विद्या को गुरु नाम गुरुः कहा गया है। यह मनुष्य को के यश को चारों दिशाओं में फैलाती है। शिक्षा कल्पलता के समान होती है। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, जबकि सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति समाज के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशम परपीडनाय, खलस्य साधोर विप।

0: तमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ करने वाले राष्ट्रपति सर्वेपल्ली श्रीयुत राधा कृष्णन जी भारत के सर्वोच्च पद को अलंकृत करने में समर्थ हुई। श्रीयुत राधा कृष्णन जी महान शिक्षाविद, दार्शनिक तो थे ही, इन्होंने भारत रत्न जैसे अनेक पुरस्कारों को भी प्राप्त किया। उन्होंने कहा था कि शिक्षक देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी होने चाहिए। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाने की परंपरा है। वास्तव में सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि शिक्षकों का सम्मान है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ज्ञान कौशल को बढ़ाना, चरित्र निर्माण, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना तथा आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी शिक्षा की अमूल्य निधि है। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हम महान शिक्षाविद सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति श्रद्धानत हैं। इनका जीवन दर्शन इस सत्य को प्रमाणित करता है कि सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या ही जिसका तैल है, दया ही जिसकी बत्ती है, ऐसे महान दार्शनिक को हम सादर नमन करते हैं। शिक्षा की ज्योति अहर्निश जलती रहे और प्रत्येक बुद्धिजीवी का पथ प्रदर्शन करती रहे, यही हमारी कामना है। विद्या ददाति विनयम्।
1: तो अभी आप सुविचार के अंतर्गत शिक्षा के महत्व के बारे में डॉक्टर धनी राम अवस्थी से सुन रहे थे। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। और अब समय हो चुका है भक्ति संगीत का। जी हाँ, ये सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम भक्ति से पावन कोई काम नहीं। तूफानों से लड़ना सिखा देते हैं राम, मर्यादा का पाठ पढ़ा देते हैं राम। आइए भक्ति रचना की शुरुआत करते हैं और लता मंगेशकर और अनूप जलूटा के स्वर में इस

जिनके सीने में है श्री राम, जिनके चरणों में है सब धाम, जिनके लिए सब कुछ है दान, सभी कष्टों को हरने वाले, सभी दुखों को दूर करने वाले, वो तो अंजनी पुत्र हैं हनुमान।

आप सुन रहे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। बस नाम लेते रहो राम का, साथ मिलता रहेगा हनुमान का।

सारा जहां है जिनकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, आइए हम सब माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति।

हनुमान से श्री राम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। स्वर अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर के थे, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं और बस समय हो गया है स्वास्थ्य चर्चा का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महिलाओं के आहार में कैल्शियम और आयरन का महत्व विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए खास आहार कैल्शियम और आयरन का महत्व क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि महिलाओं को अपने आहार में कैल्शियम और आयरन की खास जरूरत होती है, लेकिन ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? आज हम इन बातों पर विस्तार से बात करेंगे। महिलाओं के शरीर में हर जीवन चरण में अलग अलग प्रकार की पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो युवावस्था हो, गर्भावस्था हो या फिर रजोनिवृत्ति। कैल्शियम और आयरन दो ऐसे प्रमुख पोषक तत्व हैं जो महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की मजबूत कम होने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि महिलाओं के आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो। कैल्शियम के अच्छे स्रोतों की अगर हम बात करें तो दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी सबसे अच्छे विकल्प हैं। इसके अलावा बादाम और तिल के बीज भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अगर आप डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं तो आप सोया उत्पादों और कैल्शियम फोर्टिफाइड अनाज का भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कैल्शियम को सही मात्रा में शरीर में अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की भी जरूरत होती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए कोशिश करें कि रोजाना कुछ समय धूप में बिताएं। अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है। ये हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। महिलाओं में आयरन की कमी एक आम समस्या है जिसे एनीमिया कहा जाता है। ये कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। खासकर मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की जरूरत अधिक होती है। आयरन के प्रमुख स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चुकंदर और दालें शामिल है। इसके अलावा मांसाहारी लोग मांस, मछली और अंडों का भी सेवन कर सकते हैं। ये याद रखना बेहद जरूरी है कि शरीर आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके, इसके लिए विटामिन सी का सेवन भी बढ़ाएं। आप संतरे, आंवला, नींबू और अन्य खट्टे फलों का सेवन करके आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। महिलाओं को अक्सर ये महसूस नहीं होता है कि उनकी कैल्शियम और आयरन की जरूरतें कितनी अधिक हैं। दिन भर की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बीच अपना ध्यान रखना वे भूल जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि एक मजबूत शरीर और स्वस्थ जीवन के लिए पोषण की

0: सही मात्रा लेना कितना आवश्यक है। प्रोटीन से भरपूर आहार भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मांसपेशियों के विकास और शरीर की मरम्मत में सहायक होता है, लेकिन कैल्शियम और आयरन को प्राथमिकता देना, खासकर तब जब आप जीवन के किसी खास चरण में हो, आवश्यक है। अंत में ये भी जरूरी है कि आप पर्याप्त पानी पिए और संतुलित आहार लें जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों, क्योंकि केवल कैल्शियम और आयरन ही नहीं बल्कि पूरे आहार का संतुलन होना आवश्यक है। ये न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि मानसिक रूप से भी आप अपने जीवन का बेहतर तरीके से आनंद ले सकेंगी। तो श्रोताओं, महिलाओं के लिए कैल्शियम और आयरन के महत्व को समझना और उसे अपने आहार में शामिल करना बेहद जरूरी है। ये आपको न केवल आज स्वस्थ बनाए रखेगा बल्कि आने वाले वर्षों में भी आपको मजबूती और ऊर्जा प्रदान करेगा। आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक अपने आहार का ध्यान रखें।
1: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के आहार में कैल्शियम और आयरन का महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। बता रही थी नीना सोनकर। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है, आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब समय हो गया है आज दिन भर के प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का। आइए जानते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज पूर्वाहन 11:25 से आप सुनेंगे नेशनल अवार्ड्स टू टीचर 2026 हमारे दिल्ली केंद्र से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रसारित करें प्रदान करेंगी नेशनल अवार्ड्स टीचर्स को।

और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम 7:31 से आप सुनेंगे वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक।

शाम 6:50 पर किसान वाणी आप सुनेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर लोकायतन आप सुनेंगे। आज चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नई उड़ान का समय शाम 5:45। आज लोकस्वर के अंतर्गत सुनिएगा शिक्षक दिवस पर विशेष काव्य पाठ डॉक्टर रश्मि लहर से। इन्फोटेनमेंट पर आधारित हमारा कार्यक्रम युववाणी आप सुनते हैं शाम 5:10 पर। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं 2:30 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भीटवाता ब्रायलर पालन पर आमदनी का अच्छा साधन। भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार और भेंट वार्ता करेंगी डॉक्टर नीलम बाला। बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आते हैं 1:15 पर। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय आज होगा समाज के दीपक शिक्षक।

और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर छोटे लाल व साथियों के आवाज में आप सुनेंगे आल्हा गायन। इसके साथ ही उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी जो आज आधारित है टीचर्स डे पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे रहबर ए राह ए वफा उस्ताद का मकाम व मर्तबा समनू सईद अख्तर। जिले की हलचल सुबह 9:15 पर, इसके अंतर्गत बाराबंकी और मिर्जापुर जिलों की हलचल के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे।

करेंगे। और अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:10 से आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम जो आधारित है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और अब समय हो चुका है विविधा कार्यक्रम का, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं निधि श्रीवास्तव।

0: विविधा के अंतर्गत आज का विषय जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं।
0: जी हाँ, शिक्षा से शिखर तक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, शिक्षा वो प्रकाश है जो इंसान को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे दार्शनिक, एक ऐसे चिंतक और एक ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। जी हाँ, हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आखिर राधाकृष्णन जी के जीवन में ऐसा क्या था जिसने उनके जन्मदिन को यानी कि 5 सितंबर को पूरे देश के शिक्षकों के सम्मान का दिन बना दिया। कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत, एक शिक्षक का विश्वास पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जी हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इसी विश्वास की कहानी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को मद्रास में, उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और साथ ही कई विश्वविद्यालय में वो अध्यापक भी रहे और भारतीय दर्शन को पूरे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आपको बता दें कि आपने कई बार देखा होगा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि एग्जाम में कितने नंबर आए, लेकिन राधाकृष्णन जी की शिक्षा दृष्टि जो है वो हमें ये अलग दृष्टिकोण सिखाती है। उनका मानना है कि व्यक्ति कितना अच्छा इंसान है। जी हाँ, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे विचारों को बेहतर बनाए, हमारे व्यवहार को बेहतर बनाए और समाज को बेहतर बनाए।

डॉक्टर राधाकृष्णन का यहाँ पर यह मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी या तकनीकी कौशल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि विवेक, तर्क और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है। उनका कहना था कि शिक्षा हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या सोचा गया है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे, क्या तरीका है इस बात को सोचने का।

और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और जब उनके कुछ विद्यार्थियों और प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने व्यक्तिगत जन्मदिन समारोह के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाने की इच्छा व्यक्त की। यही भावना आगे चलकर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा बनी। इससे पता चलता है कि उनके विचार कितने उत्तम थे। अपने सम्मान को पूरे शिक्षक समुदाय के सम्मान में उन्होंने बदल दिया। तो आज जब हम किसी शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति को, एक शिक्षक को शुभकामना देना नहीं होता है, बल्कि उस पूरी परंपरा को नमन करना होता है जिसने हम सभी को ज्ञान दिया, संस्कार दिया, आत्मविश्वास दिया और साथ ही सपने देखने की हिम्मत भी दी। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। डिग्री खत्म हो सकती है, स्कूल खत्म हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज खत्म हो सकता है, लेकिन जो सीखने की यात्रा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा, ज्ञान के साथ विवेक बेहद जरूरी है। बहुत सारी जानकारी होना अलग बात है, लेकिन उस जानकारी का जो सही उपयोग करना है वो अलग बात है। इसके साथ ही तीसरी जो बात थी वो ये है कि सफलता के बाद भी विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती है जड़ों की जरूरतें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तो याद रखिए, हर महान यात्रा का एक साधारण शुरुआत से ही एक महान यात्रा जो है वो शुरू होती है। अगर आज आपके पास संसाधन कम है, संकल्प को मजबूत कीजिए, और अगर आपको असफलता मिली है तो उसे अंत मत समझिए, और अगर आपसे कोई कहता है तुम नहीं कर सकते हो तो उस आवाज को अपने भीतर की आवाज से छोटा कर दीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल आपकी मेहनत तय करेगी। तो चलते चलते आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे बीच नहीं है। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हुआ था। लेकिन कुछ लोग शरीर से जाते हैं, विचारों से नहीं। कुछ लोग इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ लोग इतिहास को दिशा देने वाले विचार बन जाते हैं। तो राधाकृष्णन जी का जीवन हमें शिक्षा देता है कि शिक्षा को अपनी ताकत बनाया जाए, अपने उनके ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाया जाए। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हर उस गुरु को नमन जिन्होंने हमें केवल पढ़ाया नहीं बल्कि हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया है। हर उस शिक्षक को नमन जिसने हमारी गलतियों पर हमें डांटा, हमारी सफलता पर मुस्कुराए और हमारी हार के बाद कहा बस एक बार और। क्योंकि शायद एक शिक्षक के ये जो 4 शब्द होते हैं ना, तुम कर सकते हो, ये किसी विद्यार्थी की पूरी जिंदगी बदल देते हैं।

डॉक्टर राधाकृष्णन केवल शिक्षक नहीं रहे, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे 1962 से 1967 तक। भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा भी की, लेकिन इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी उनकी जो पहचान है वो एक शिक्षक, एक दार्शनिक के रूप में ज्यादा रही है।

तो आज के विविधा कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी निधि श्रीवास्तव को दीजिए विविधा कार्यक्रम से इजाजत। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुक नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना। मनन ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपनी जान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या दृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का हुआ सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है ये सफलता। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। आस्था और उल्लास के साथ राज्य भर में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि EOS-05 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जीएसएलवी मिशन। यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएलवी F-17 वाहन में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: प्रदेश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया गया। वहीं काशी विश्वनाथ धाम सहित विभिन्न शहरों के कई मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस पावन धरती पर हुआ था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। श्री योगी ने धार्मिक महत्व की जगहों को पुनर्स्थापित और विकसित करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रजतीर्थ विकास परिषद ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के

0: में मथुरा और वृंदावन के विकास पर लगातार काम कर रही है।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस ब्रज भूमि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे भव्य स्वरूप यहाँ के मन के जनप्रतिनिधि साथ मिलकर के देने का कार्य कर रही है। और हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिषद तैयार हो ऐसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। ये पर्व और त्योहार केवल एक आस्था ही नहीं, हमारी आर्थिक आधार भी।
0: मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस की ओर से आयोजित सांस्कृतिक धरोहर के उत्सव में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए सभी से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना और कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की प्रेरणा देता है। देर रात मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्त मिश्रा ने कल ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को समझने के बाद जल्दी ही रणनीति तैयार की जाएगी और उसके क्रियान्वयन का असर जल्दी दिखाई देने लगेगा। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में कल स्थानीय जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सात परिवारों को सहायता राशि का चेक दिया। इस अवसर पर श्री पाल ने केंद्र राज्य की सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकता और समर्थन व्यक्त है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं फंसा है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में होमगार्ड के 41,420 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 14 सितंबर से आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 5 सितंबर से प्रस्तावित थी। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर ये बदलाव किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी

0: अवलोकन फुटप्रिंट का हुआ सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है ये सफलता। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। आस्था और उल्लास के साथ राज्य भर में बनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार कम से कम देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यही अद्वितीय तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य लगातार ज्ञान प्राप्त करो, बड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। संतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक। स्वामी विवेकानंद। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्श होना और उन पर चलना, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आकाशवाणी।

0: और शुरू हो चुका है हमारा कार्यक्रम आज सुबह। और आज सुबह कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं निधि श्रीवास्तव, और मेरे साथ हैं
1: जी, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त शिखा।
0: आपको हम आप सभी को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार। तो भाई शिखा, कैसी हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, और निधि आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। शिखा, कल जन्माष्टमी थी, कैसा रहा आपका त्योहार जन्माष्टमी
1: का? बहुत बढ़िया रहा। और कल क्या, जब रात का ही समय मतलब 12 बजा, और अभी तक लगता है कि जन्माष्टमी का जो खुमार है
0: वो
1: एज इट इज है, और इतना ही क्रेज देखने को मिल रहा था कल मंदिरों में, घरों में। और आपने भी पूजा करी होगी?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और तो भाई हमारे सभी जो सुनने वाले हैं उन सभी के लिए भी आज का दिन अच्छा हो, बहुत खास हो, क्योंकि हर दिन जो होता है वो एक नई शुरुआत होती है, हर नया मौका होता है जीवन जीने का। इसे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शुरू करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और सूरज की किरणों को खुले मन से गले लगाना चाहिए। क्या कहती है शिखा?
1: जी बिल्कुल सही बात आपने बोली कि हर दिन एक नई उम्मीद के साथ होता है और हर दिन कुछ नया करना चाहिए।
0: बिल्कुल, जैसे कि अभी जब जैसा आपने बताया अभी कि जो कल की जन्माष्टमी का खुमार है वो आपका उतरा नहीं है
1: जी,
0: अभी है।
1: बिल्कुल,
0: अभी भी आप भक्ति के उसमें
1: हैं, भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और क्रेज के रंग में, मतलब इतना उत्साह है कि उसको शायद शब्दों में व्यक्त
0: नहीं किया सकता। और शिखा, जैसे कि अभी हमने कहा कि हर दिन एक नया क्रेज होता है, एक नई इच्छा होती है जीने की, एक नई जिंदगी मिलती है। तो जैसे कल जन्माष्टमी थी और आज है 5 सितंबर, यानी कि शिक्षक दिवस, है ना?
1: शिक्षक दिवस।
0: तो पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिखा आपको भी। और इसके साथ ही हम बता दें कि जिस तरह से हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, है ना शिखा
1: जी,
0: हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, इसी तरह हजारों दिए भी चाहिए एक आरती सजाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कहने वाली बात है कि एक अच्छा सच्चा शिक्षक अकेला काफी है हजारों बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए।
1: क्या बात कही आपने, क्या बात कही, और ये बात ना बिल्कुल दिल को छू गई, क्योंकि जो शिक्षक है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और अभी भी जब आप याद करिए ना कि बचपन में

0: हमें ये शिक्षक थे, ऐसी शिक्षा देते थे, और हमें भी बड़ा क्रेज था। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी शिक्षक से बहुत प्यार करने लगते हैं,
1: हाँ
0: बहुत लगाव हो जाता है, और उसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता
1: इंतजार
0: है,
1: भी
0: और
1: रहता
0: वो
1: है कि वो टीचर
0: हमेशा,
1: कब
0: और
1: आएंगी।
0: वो क्रेज और वो प्यार हमेशा एज इट इज रहता है।
1: बिल्कुल, अभी भी हमारे हम सभी के जहन में कभी ना कभी अगर आप पुराने जाएं तो कोई ना कोई टीचर ऐसा है जिनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी शिक्षक दिवस आएगा, गुरु पूर्णिमा आएगी, हम उनको ध्यान में जरूर रखते हैं।
0: जी
1: तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और एक खूबसूरत सा गाना सबसे पहले अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।

0: तो शिखा, कितनी कितना खूबसूरत सा गाना था ये, सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में था और संजू फिल्म से था।
1: जी, और ये गाना ना अपने में बहुत कुछ कह गया है ना, और कह ये गया कि कर हर मैदान फतेह। मतलब जैसे हम लोग आज शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक दिवस हमारे जो शिक्षक जो रहे हैं, उन्होंने हमें लगता है यही शिक्षा दी कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं पे भी जाएं, लेकिन आपको अपनी जीत का जो परचम है उसको लहराना
0: लहराना
1: है।
0: है, बिल्कुल। आपने जीत के परचम की बात करी, और जीत का जो एक मूल मंत्र होता है शिखा,
1: जी
0: वो भी हमारे गुरुओं ने हम तक पहुंचाया है कि किस तरह से जो जीत है वो हासिल की जा सकती है।
1: जी
0: और जीत का जो मंत्र है वो क्या है?
1: उसका,
0: कंसिस्टेंसी।
1: हाँ बिल्कुल सही बोला। और कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आपको हर काम को कभी क्विट नहीं करना है, उसमें उस काम को लेकर आगे बढ़ते रहना ही
0: अनवरत
1: बढ़ते रहना,
0: करते ही जाना है,
1: और देखिएगा आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल। क्योंकि अंधकार से उजाले तक, अज्ञान से ज्ञान तक, और असफलता से सफलता तक की बात करें, तो जो मूल मंत्र, जो गुरु मंत्र देता है वो है
1: शिक्षक।
0: शिक्षक। बात तो हमने शिक्षक दिवस की और कितनी सारी असफलताएं सफलताओं तक की बात कर ली, लेकिन आप देख रही हैं मौसम कैसे

0: जी, मौसम की बात आपने करी तो दिल में एक खुशी सी छा गई कि भाई वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन
1: जी
0: वेदर के साथ साथ एक जो चिंता जन्म ले रही है आजकल,
1: हाँ,
0: क्यों
1: क्यों?
0: आप समझ पा रही हैं मैं किस बात की
1: नहीं
0: बात
1: नहीं
0: कर
1: बिल्कुल, शायद जैसा कि आपने वेदर की बात की तो कहीं ना कहीं
0: जी
1: बाहर उमस टाइप का है
0: हाँ उमस है,
1: और
0: और जब आप घर में जाते हैं तो आपको एसी की जरूरत लगने लगती है, आपको मतलब गर्मी फील होती है, बाहर आप जाते हैं तो थोड़ा सा सफोकेशन फील होती है, ठंडा ठंडा गर्म, जो ये वेदर है ना,
1: जी
0: अच्छे होने के साथ साथ ये भी संकेत दे रहा है कि हमको अपनी हेल्थ के प्रति भी बहुत कॉन्शियस रहना है।
1: और ना सिर्फ इस मौसम में बल्कि हमेशा हर सीजन में आपको अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना ही है। तो शिखा, अपने श्रोताओं तक भी हम पहुंचा देते हैं कि डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जो डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से हैं, यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य को लेकर, आइए जान लेते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव, प्रोफेसर इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के साथ साथ यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की इंचार्ज भी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत पूरे मेडिकल कॉलेज की साफ सफाई और न्यूट्रिशन, जो मरीज को भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसके बारे में हम लोग उस पर कार्य करते हैं और उसको अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगी कि एक स्वस्थ मनुष्य के जीवन के चार आयाम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको आप कह सकते हैं उसकी गाड़ी के चार पहिए, जो कि है क्लेनलीनेस, यानी कि साफ सफाई, स्वच्छता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। दूसरा है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण, और स्वस्थ भोजन, जो कि बहुत अनिवार्य है हमें लेना, जिससे कि हम बीमारियों से दूर रह सकें। और तीसरा है व्यायाम। बिना एक्सरसाइज, व्यायाम के, जो कि हम लोग जून के महीने में योगा के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और वो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिरी जो आयाम है वो है स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ। हम तीनों चीजों को करने के बावजूद, यानी कि साफ सफाई, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के अलावा, यदि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इन चारों चीजों का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो सप्ताह जो सितंबर का माह है, इसमें साफ सफाई यानी स्वच्छता पखवाड़ा, आप सभी जानते होंगे, इस पे काफी फोकस किया जाता है, और न्यूट्रिशन यानी कि स्वस्थ भोजन, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस पे काफी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, आपको टिप्स भी मिलेंगे। हमारी डाइटिशियंस भी इसमें काफी सक्रिय हैं और वो इस पूरे महीने में कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी करेंगी, जैसे कि कैंसर मरीजों में भी पोषण की क्या आवश्यकता है और कैसे हम उसको अच्छा भोजन उनको दिलवा सकते हैं, किस तरह के मर्ज में किस तरह का भोजन की जरूरत है, इन सब पर हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे। और जो हमारी दिनचर्या में भोजन जो हम लोग लेते हैं उसमें भी छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जैसे कि लोग दाल चावल बनाते हैं, रोज का होता है ये खाना, उसमें यदि आपने दाल चावल को भिगो के रखा और उसके बाद उसके पानी को निकाल के फिर पकाया तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें चले जाते हैं। तो आपको पहले ही धो लेना है और फिर जिस पानी में आप उसको भिगो रहे हैं उसी में खाना पकाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हम पूरे माह में आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारी भोजन की थाली होती है वो काफी साग सब्जियों से भरी होनी चाहिए, रंग बिरंगी, जैसे कि गाजर में दूसरा रंग है, पालक है हरे रंग का है, इस तरह के साग सब्जियों का सेवन करें। कोशिश करें कि घी तेल का कम से कम इस्तेमाल हो, नमक भी कम मात्रा में, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल हो, शक्कर यानी शुगर ये भी काफी लिमिटेड ही यूज करना चाहिए, ये दोनों ही नुकसान देते हैं हमारे स्वास्थ्य को। और इसके अलावा जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा या बाजार से जो जूस है वही लेकर पिया जाए तो वो हमें लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। आप पूरा फल खाइए, वो ज्यादा अच्छा है, वनस्पत की आप उसका जूस बाजार से खरीद के पिए। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपको बहुत स्वस्थ रखने में लाभकारी होंगे। धन्यवाद।

0: तुषिका, देखा आपने कि डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि छोटे छोटे जो कदम हैं, छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं तो किस तरह से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: जी, और ये जो जानकारी दी वो मुझे लगता है कि हमको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उसमें शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये डेली यूज की चीजें उन्होंने बताई कि जैसे दाल चावल है उसको धोने के बाद भिगो करके ना रखें, बल्कि धोने के बाद उसको भिगो करके उसी पानी के साथ बनाएं। और साथ ही
1: जी
0: उन्होंने ये भी बताया कि जो छोटे छोटे से न्यूट्रिशंस हैं, हमें कितनी जरूरत होती है इन सभी की। तो
1: बिल्कुल सही
0: अभी
1: कहा।
0: आप मौसम की बातें कर रही थी कि बाहर उमस है और किस तरह से है, तो उस तरह से स्वास्थ्य की जानकारी भी उन्होंने पहुंचाई है।
1: जी, और स्वास्थ्य की जानकारी तो हमारे श्रोताओं तक पहुंच गई है और उनसे उन्होंने लाभ भी ले लिया होगा। तो अब हम क्या बातें करने वाले हैं? अब हम
0: और
1: बातें करने वाले हैं
0: इतिहास की,
1: इतिहास की।
0: जी हाँ, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं तक इतिहास की भी कुछ जानकारी पहुंचाते हैं। तो बता देते हैं कि आज का दिन क्यों खास है, क्योंकि हर दिन एक खास होता है और अपने अपने में एक अच्छा दिन समेटे हुए होता है।
1: हाँ, तो बात करते हैं इतिहास की। तो आपको बता दें कि सन 1885 में आज ही के दिन अमेरिका के इंडियाना स्थित फोर्ट वेयन में पहली बार गैसोलीन पंप की स्थापना की गई थी।
0: और इसके साथ ही 1977 की बात की जाए तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी नासा के में अंतरिक्ष में दूर तक जानकारी भेजने के लिए जो वायजर 1 है वो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था।
1: जी, और सन 1888 में आज ही के दिन दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
0: और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस है आज। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी आज के दिन मनाया जाता है।
1: जी, तो आपने जब अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस की बात करी है तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल जैसे कि आज के दिन ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। दुनिया भर में दान और परोपकार के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। और आपको बता दें कि दान का मतलब सिर्फ पैसा ही देना नहीं है। जी हाँ, लोग सोचते हैं कि अगर जब दान की बात आती है तो लोग सोचते हैं
0: सिर्फ
1: कि
0: पैसा
1: भाई
0: ही।
1: पैसे दे दिए और दान हो गया। जी
0: हाँ,
1: नहीं, दान का मतलब ये है कि आप किसी के लिए अपना समय निकालें, किसी को कुछ खुशी दे दें या अपना ज्ञान किसी से दूसरों से शेयर करें।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि जिंदगी की यही रीत भी है, और जैसा कि आपने बताया कि दान करें, शेयर करें और लोगों को खुश रखें। तो
1: जी
0: आज बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी शिखा।
1: जी और एक चीज और भी कहना चाह रही थी कि एक छोटा सा प्रयास, ये जो दान की बात हम कर रहे थे, ये जो छोटा सा प्रयास है ना, ये किसी की जिंदगी में बड़ी रोशनी ला
0: ला
1: सकता है।
0: सकता है, बिल्कुल
1: दोस्तों, कहा भी गया है, दान करने से दान देने वाला छोटा नहीं बल्कि और बड़ा हो जाता है।
0: क्या बात है शिखा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: तो अब समय है एक गाना पहुंचाने का। तो चलिए अब एक गाना पहुंचाते हैं अपने श्रोताओं तक, जिसका उनको है बेसब्री से इंतजार।

0: जी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े
1: बिल्कुल
0: आंसू है, थोड़े गम है, और थोड़ी है खुशी। तो कहने का मतलब ये है कि दिन कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, बस आपको हर दिन को एंजॉय
1: एंजॉय करना
0: करना
1: है,
0: है।
1: जैसा कि अभी इस गीत में भी था कि बादल चाहे गम के हों, अंधेरे क्यों ना हो, लेकिन उन सब के बीच में भी आपको अपने आप को संभालना है, यानी कि हमेशा खुश रहना है, क्योंकि ये गम के बादल तो छट जाएंगे
0: जी
1: लेकिन जो हमारी खुशी है वो हमारे तक रहनी चाहिए जरूर।
0: बिल्कुल, और खुशी रहनी चाहिए, और खुशी के साथ, जैसे कि आज हम लोगों ने बात करी थी कि दिन कैसे भी हो लेकिन हमको दिन को, हर दिन को एंजॉय करना चाहिए।
1: तो आपके
0: तो
1: हिसाब से शिखा आज का दिन कैसा है?
0: जी वही, आज का दिन है गजब का,
1: अच्छा कैसे?
0: ऐसे।

0: में आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
4: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ

0: रहे हैं।
1: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।

0: 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
1: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा लाल की। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर

0: ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 5 सितंबर, जिसे हम मनाते हैं पूरे भारत में। इस दिन को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने थे, तब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि यदि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय यदि इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें अधिक गर्व महसूस होगा। बस तभी से हर साल इस दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। और आपको बता दें कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज 48 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक एक वही शिक्षक नहीं है जो हम अपने गुरुजनों से सीखते हैं, या जब हम पढ़ने विद्यालय जाते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। वो तो शिक्षक है ही हैं, हर वो व्यक्ति अपने आप में जो हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। हमारी सबसे पहले बच्चे की जो एक बच्चा होता है, शिशु होता है, उसकी सबसे पहली जो प्रथम पाठशाला होती है वो होती है उसकी माँ। तो माँ जब होती है तो सबसे पहले गुरु उसकी और शिक्षक माँ हुई। फिर बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पढ़ने की अवस्था आती है और वो स्कूल जाता है, तो जब वो स्कूल जाता है वहाँ वो अपने साथ के बच्चों से बहुत कुछ सीखता है, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आता है। लेकिन होता क्या है कि और जब वो जैसे जैसे बढ़ती क्लास में जाता है, शिक्षकों से सीखता है, फिर अपने आसपास के जो भी माहौल है वो जो है उनसे सीखता है, और दर कदम दर वो जब तक ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है तो ये हो जाता है। वो हर व्यक्ति से सीखता है, हर पल सीखता है, जब तक निरंतर उसका जीवन रहता है। तो ये है आज शिक्षक दिवस की महत्ता, इसके लिए सभी शिक्षकों को समर्पित किया ही गया है। लेकिन हर वो व्यक्ति अपने आप में शिक्षक है, हर प्रत्येक व्यक्ति जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि अच्छाई का पाठ तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, कहते भी हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे बताओ। कभी कभी लोग अपनी कुछ आदतों से इतना अच्छा हमें संदेश दे के जाते हैं कि वो हम कभी कभी छोटी गलतियों पर जो है, अगर हमें पता चल जाता है, पनिशमेंट हमें मिल जाता है, फिर हमसे बड़ी गलती नहीं होती है। इसलिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए।

में जो दीप जलाए, हर मुश्किल में जो हौसला बढ़ाए, वही सच्चा गुरु कहलाए। नमस्कार साथियों, मैं गीता सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर फरीदपुर ब्लॉक बरेली से बोल रही हूँ। मेरे सभी शिक्षक साथियों और श्रोताओं को और पूरे देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रख्यात शिक्षाविद और दार्शनिक थे। साथियों, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, ये पंक्तियाँ गुरु की याद में इसलिए कही गई हैं क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। यदि आपको ज्ञान चाहिए, आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, तो आपको एक शिक्षक के मार्गदर्शन में चलना ही चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा और अध्यापन के प्रति बेहद समर्पित व्यक्ति थे। वो मानते थे कि सच्चे शिक्षक वे हैं जो हमें खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं, जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल कर हमें मार्गदर्शित करते हैं। जिस तरह एक पेड़ कई लोगों को छांव देता है, उसी तरह एक शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को शिक्षा देता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हों या हम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। साथियों, शिक्षक दिवस हमारे लिए एक विशेष स्थान इसलिए भी रखता है क्योंकि भले ही हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करना भूल जाएं, लेकिन आज का ये विशेष दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शिक्षकों के प्रति विशेष महत्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। हमें उनके प्रति एक आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वे ही हैं जो हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। साथियों, इस दिन मैं बस यही कहूँगी कि हमें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके आभार व्यक्त करते रहना चाहिए और उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं सम्मानित पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक किसी भी चीज़ के लिए मोह नहीं रखते, उन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सम्मान।

और श्रोताओं, अब बरेली शहर की कुछ खास खबरें और शिक्षक दिवस की बात लगातार चलेगी कार्यक्रम में, यह भी आपको बता दें। श्रोताओं, जिस तरह शिक्षा का होना जीवन में बहुत जरूरी है कि एक बिन पढ़ा व्यक्ति अनपढ़ कहलाता हो, उसे सब लोग कहते भी अनपढ़ और वो कहीं सर्वाइव भी नहीं कर सकता, उसी तरह एक अच्छा शिक्षक मिलना भी बिल्कुल से कहना चाहिए हीरे की तरह है, कि वो उस सबसे ज्यादा कीमती व्यक्ति है इस संसार का, जो आपके लिए रास्ता दिखाता है, आपके लिए आगे बढ़ाता है, आपको अच्छी बातें बताता है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मील का पत्थर साबित होता है। और घर घर गूंजी बधाई, आधी रात जन्मे कृष्ण कन्हाई। जी हाँ, जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबी नाथ नगरी, मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म की लीलाओं का किया गया भव्य आयोजन। श्री हरि मंदिर में श्री धाम वृंदावन की तर्ज पर तैयार भव्य फूल बंगला रहा आकर्षण का केंद्र और भगवान श्री कृष्ण

का जन्म होते ही मंदिरों में गूंजे जयकारे, श्रद्धालुओं ने दी बधाई और राधा कृष्ण के रूप में सजे बच्चों ने मोहा मन। राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ तो रही रही, साथ ही ताजे फूलों व बिजली झालरों से सजा मंदिर दूर से ही आकर्षण का केंद्र रहा और साथ ही उसमें रहे हम लोगों के साथ सभी लोग बच्चे के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राधा कृष्ण के रूप में सजे बच्चों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही साथ सभी का मन भी मोह लिया।

0: जी हेलो, थैंक
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सबीना जी।
0: यू मैम।
1: जी
0: और आज शिक्षक दिवस पे सभी देशवासियों को, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत आपका।
0: तो मैं पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं यहाँ उस प्राथमिक विद्यालय कांधरपुर ब्लॉक 11 जनपद बरेली में, उस प्राथमिक विद्यालय कांधरपुर में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ।
1: जी
0: और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बेसिक में हूँ, और ऐसा लगता है लोगों को कहीं ना कहीं कि हम कहीं पीछे रह गए हैं और कहीं हमने कम किया है अपने जीवन में, पर ऐसा नहीं है। हम जहाँ भी रहें, जो भी काम हो, तो हमें नंबर वन करना चाहिए और अपने 100% मन से करना चाहिए।
1: जी
0: इसी काम को करते हुए मैंने अपने बरेली शहर को एक इतिहास दिया। मैं अपने बरेली शहर की बेसिक की प्रथम महिला हूँ, जिसको 5 सितंबर 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: जी
0: जी
1: जी और मैडम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को हम ये भी कि आज की डेट में अभी हाल ही फिलहाल में आप मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि सैयदा जी के लिए भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनको चयन हुआ है, और हो सकता है शायद कल वो निकल गई होंगी और उनको ये पुरस्कार मिलेगा। वो भी प्राथमिक विद्यालय में जो है टीचर है, और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा सेटअप किया, अपने जो वेतन से तनख्वाह से अपने जो निकाला रुपये उन्हें, और बच्चों को लैपटॉप, वहाँ पर सारे सब डिजिटल सुविधाएं कराई उन्होंने उस ब्लॉक में जो प्राथमिक विद्यालय था। जी और आपके साथ साथ वो भी एक शिक्षक हैं, तो सैयदा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम
0: जी जी
1: देना
0: बिल्कुल सहिदा जी, अगर
1: चाहेंगे।
0: मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगी आपके, तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। और
1: जी
0: सहिदा जी को इस बार स्टेट राज पुरस्कार के लिए चुना गया
1: जी
0: है, यानी कि
1: जी
0: स्टेट अवार्ड के लिए।
1: जी
0: आज उन्हें लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, और वो पीलभीत से बिलोंग करती हैं।
1: जी जी
0: मेरी बधाई अगर वो सुनेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: जी जी बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपका सबीना जी। जी
0: और मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी,

श्रोताओं, हमारी आपसे लगातार बात हो रही है आज शिक्षक दिवस पर। जी हाँ, हम अपने गुरुजनों, अपने टीचर्स, अपने शिक्षक से तो हम सीखते ही सीखते हैं। कॉलेज में जब जाते हैं तो प्रोफेसर से सीखते हैं, लेकिन हर वो व्यक्ति जो हमारे आसपास हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव हों, हमारी फैमिली पर्सन हों, और सीख तो हमें एक छोटे बच्चे से भी मिल जाती है, तो जो हमें व्यक्ति कोई ना कोई हमें सीख दे रहा है किसी भी प्रकार की, वो हमारे लिए शिक्षक के तौर पर ही है। जी, एक वो लोग होते हैं जो हमें अच्छा रास्ता और अच्छी एडवाइस देते हैं, और एक तरीके के लोग ये होते हैं जो हमें कहते हैं अरे तुमसे नहीं होगा, अगर कर पाओ तो देख लो, ऐसा भी होता है। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि कर पाओ तो देख लो, होगा नहीं, वो भी हमें हिम्मत देते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं कि अरे होगा कैसे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़े शिक्षक हैं। कहते हैं ना, जब किसी की बात लग गई तो हमें वो काम फिर तो कर ही देना है। और बहुत से लोग जब किसी चीज़ को इस तरीके से लेते हैं चैलेंज के तौर पे, तो आपको बताएं वो अपनी लाइफ बना जाते हैं। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो आपके लिए अगर देखा जाए तो मीठी गोली होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपकी तारीफ की, आपको अच्छा लगा। लेकिन जो आपको कोई ना कोई बात ऐसी कहते हैं ना, आपको पिंच कर जाती है, लग जाती है, इसने ये बात कही कैसे कि मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए पता कड़वी गोली तो लगते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में मिठास भर देते हैं। इसीलिए कभी भी बी पॉजिटिव रहिए, कभी किसी बात को लेकर के ये मत सोचिए कि उसने ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, अरे कहने दीजिए। लेकिन हाँ, बस हमें क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से, मेंटली रूप से बहुत ही हमें स्ट्रांग होना चाहिए। हमें किसी भी बात को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा याद रखिए, समय बदलता है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन निश्चित होता है, समय बदलता है। हाँ, दिक्कतें होती हैं और हर किसी के जीवन में दिक्कतें होती हैं, इसलिए हमेशा हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, कभी भी पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा आशावान रहना चाहिए। और आपको बता दें कि दोपहर से रात तक कई बार हुई झमाझम वर्षा, मौसम हुआ सुहावना। बरेली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने के अब आसार हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल बारिश अपने चरम पे है। जिले में शुक्रवार को उमस भरी गर्मी के बीच मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह हल्की ठंडक के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन चढ़ने के साथ सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का सिलसिला चलता रहा और दोपहर बाद रात का वातावरण अनुकूल होते ही कई बार झमाझम वर्षा हुई, जिसने मौसम को पूरी तरह सुहावना बना दिया। रामगंगा का फिर बड़ा जलस्तर, तटवर्ती गांवों की फसलें हुई जलमग्न। पहाड़ों पर हो रही भारी वर्षा का असर रामगंगा नदी के जलस्तर में दिखाई पड़ रहा है। पिछले सप्ताह भी पानी बढ़ा था, लेकिन जलस्तर नीचे आ गया था और बुधवार रात से जलस्तर में फिर वृद्धि होने लगी है। सदर, मीरगंज और आंवला तहसील क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में खेतों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तो थोड़ा सा जो लोग आसपास के हैं, उनको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और श्रोताओं, स्वाइन फ्लू के 4 नए मरीज मिले। देहात और शहर में 2-2 केस मिले हैं, 3 महिलाएं और 1 पुरुष संक्रमित हैं। ये जो मौसम चल रहा है बरसात का, ये सुहाना तो बहुत होता है, लेकिन ये अपने साथ कई तरह की बीमारियों को भी लेकर आता है। तो आपको बताएं, अगर आपको बुखार आया है, फीवर हुआ है, और अगर वो लगातार 2-3 दिन नहीं उतर रहा है, बल्कि ज़्यादा टाइम मत दीजिए, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि इस समय ये बुखार ऐसा आ रहा है कि आपको एकदम से वीकनेस हो जाएगी, एकदम से चेहरा लाल, आंखें लाल, और उसमें बिल्कुल भी आपको कहीं भी मतलब केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। आप जो है बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, कोई भी लोग आराम से अपना तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, अपने पूरे

का खास ध्यान रखें। जिले में स्वाइन फ्लू H1N1 के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार को 4 नए मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इनमें 2 मरीज देहात और 2 शहर क्षेत्र के हैं, और जिनमें 3 मरीज बुजुर्ग हैं, इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। 4 नए मरीज मिलने के बाद जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन आपको हम ये बता दें कि जो सर्दी जुकाम बुखार है इस समय, ये स्वाइन फ्लू एक तरीके से कोरोना की तरह ही चल रहा है। इसको हल्के में लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और इसी के साथ अब आप हमें दीजिए अनुमति कार्यक्रम नमस्ते बरेली से

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का। और आज पहला लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और सुनिए लीजिए अब ये लोकगीत। ये लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बीना शर्मा और सखियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9 बजने वाले हैं और अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आप ब्लफ मास्टर म्यूजिक का ये गीत

0: आप सुन रहे थे फिल्म थी टेल मी ओ खुदा, श्वेता पंडित और साथियों की आवाजें थी, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने संगीतकार और पार्श्व गायक आदि श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है। 4 सितंबर सन 1964 को मध्य प्रदेश के कटनी में जन्मे आदि श्रीवास्तव ने बचपन से ही संगीत में रुचि रखी और बकायदा संगीत की तालीम भी ली। 1993 में आई फिल्म कन्यादान से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उनके संगीतबद्ध किए नगमे फिजाओं में आज भी रंग भरते हैं। 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम, 2003 में बागबान, राजनीति, 2010 में आई हसीना मान जाएगी और बॉर्डर जैसी म्यूजिकल हिट गीतों के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने लगभग, वैसे देखा जाए तो 100 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री विजेता पंडित हैं उनकी शरीक हयात। इन दंपति के 2 बेटे हैं, अनिवेश और अवितेश।

0: मुजतबा अजीज नाजा और एम तूरज की आवाजों में संजय लीला भंसाली का सबद किया ये गीत आप सुन रहे थे पद्मावत फिल्म से। आवाज थी शिवम पाठक की।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक।

0: हिट स्टोरी 3 फिल्म का गीत आपने सुना, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें थी। रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक ने इस गीत को सुरबद्ध किया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संपादक विधु विनोद चोपड़ा का आज जन्मदिन है। उन्हें हम जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। उन्हें उनकी फिल्म परिंदा जून और 1942 अ लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, थ्री इडियट्स, पी के संजू और मुन्ना भाई, MBBS

फिल्मों के लिए जाना जाता है और इस फिल्म की श्रृंखला तीसरी श्रृंखला भी उन्होंने बनाई। विशेष रूप से इन फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी पहली लघु फिल्म मर्डर एट मंकी हिल काफी चर्चा में रही। लघु किसान फिल्म एन एनकाउंटर विद फेसेस जो रिलीज हुई 1976 में पहली फीचर फिल्म सजाए मौत थी। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई और थ्री इडियट्स, इन फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया और फिल्म परिंदा को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।

जी निसार, इस फिल्म में उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे। नवाब वाजिद अली शाह अख्तर का लिखा ये गीत था, मुजफ्फर अली उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान की तर्ज थी।

अली ठाकुर की आवाज थी दम लगा के हईशा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक का संगीत था। और चित्रलोक कार्यक्रम की श्रोताओं, यही थी आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 9:30 हुए हैं और अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: वक्त, दोस्त और परिवार, वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त हैं, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। ये है हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय।
2: हम बीमार क्यों हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सच।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र मिश्रा। जान है तो जहान है कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल, MBBS MD।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल और आज मैं आपसे कोई बीमारी की बात नहीं करने वाला, ना कोई दवा बताऊंगा, ना कोई ऑपरेशन की बात करूंगा, और आज एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सबसे।
3: डॉक्टर साहब, वो कौन सा प्रश्न है जो हमारे श्रोताओं से आप पूछना चाहेंगे?
2: इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बाद भी पहले से ज्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं? सोचिए, हमारे पास आज AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CT स्कैन है, MRI है, रोबोटिक सर्जरी है, बहुत सारी हेल्थ की एप्स हैं, स्मार्ट वॉच है, फिर भी डायबिटीज बढ़ रही है, फैटी लिवर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की उम्र कम हो रही है, बच्चे चश्मा जल्दी लगा रहे हैं, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी आ रही है। तो आखिर गलती कहाँ है? मुझे लगता है समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, समस्या लाइफस्टाइल की है।
3: जी डॉक्टर साहब, ये हमारे श्रोता भी जानते होंगे।
2: बचपन बदल गया, बीमारी भी बदल गई। जरा याद कीजिए, बचपन में बाहर बुलाने दोस्त आते थे, अब नोटिफिकेशन आता है। पहले मम्मी कहती थी बस बहुत खेल लिया, अब घर आ जाओ। अब स्मार्ट वॉच कहती है यू हैव बीन सिटिंग फॉर 1 आवर। कितना बड़ा बदलाव है
3: डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे श्रोताओं के मन की बात है ये।
2: पहले हम खेलने बाहर जाते थे और आज बच्चों को बाहर खेलने भेजना पड़ता है जबरदस्ती। पहले एक्सरसाइज अलग से नहीं करनी पड़ती थी कि आपको 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज करनी है या 20 मिनट करनी है, जिम जाना है। पहले जीवन में ही एक्सरसाइज था, सब्जी लेने चले गए, दूध लेने चले गए, किसी ने खेतों पे काम कर लिया या कुछ गार्डनिंग कर ली, वही एक्सरसाइज हो जाती थी। अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज एक्सरसाइज भी कैलेंडर में शेड्यूल करके पढ़नी पड़ती है, ट्रेनिंग शेड्यूल आता है। तो टेक्नोलॉजी हमारा दोस्त है या दुश्मन? मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज लाखों लोगों की जान नहीं बचती, हार्ट अटैक जल्दी नहीं पकड़ पाते हम, स्ट्रोक का इलाज भी समय से नहीं कर पाते, कैंसर भी देर से पता चलता। टेक्नोलॉजी एक शानदार दोस्त नहीं है, सर्वेंट है हमारा।
3: बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब,
2: लेकिन बहुत खराब मास्टर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर मत बनने दीजिए। टेक्नोलॉजी आपको गाइड ना करेगी क्या करना है, आप बताएं टेक्नोलॉजी को क्या करना है। तीसरी बात, स्क्रीन टाइम वर्सेस ग्रीन टाइम। आज एक छोटा सा बच्चा चलना सीखने से पहले स्वाइप करना सीख जाता है, मोबाइल पे उंगली घुमाना सीख जाता है। पेरेंट्स खुश होते हैं, देखो कैसे उंगली घुमा रहा है, देखो मोबाइल चला लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो मैदान में भी दौड़ता है या मैदान में ही फुटबॉल को खेलता है? स्क्रीन टाइम के नुकसान सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है कि स्क्रीन टाइम वो मोबाइल को देख रहा है तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। कम फिजिकल एक्टिविटी मोटापा बढ़ाती है, पुअर हमारी नींद को खराब करती है, स्ट्रेस आता है, सोशल इंट्रैक्शन कम हो जाता है, बात करने का ढंग बच्चों को बदल जाता है, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ चिल्ड्रन नीड मोर ग्रीन टाइम देन स्क्रीन टाइम। बच्चे मोबाइल पर बचपन नहीं जी सकते, बचपन मैदान में आता है, आंगन में आता है, मिट्टी में आता है, बारिश में आता है।
3: जी सर, आपने बिल्कुल बारिश की बात की तो बहुत अच्छा लगा।
2: रेडिएशन का डर होता है बहुत सारे लोगों को। अब एक प्रश्न करता हूँ, लोग कहते हैं CT स्कैन में बहुत डर लगता है, उससे हमें कैंसर हो सकता है, बहुत सारी रेडिएशन है। मैं कहता हूँ सवाल अच्छा है आपका, लेकिन पूरा उत्तर भी सुनिए तसल्ली से। रेडिएशन की मात्रा डोज पर निर्भर करती है। चेस्ट एक्सरे लगभग 0.1 मिलीसीवर्ट की डोज होती है उसमें, लेकिन अगर हम नेचर जो हम आसमान के नीचे भी खड़े हो जाएंगे तो 2 से 3 मिलीसीवर्ट हमको वैसे मिल जाते हैं 15-20 दिन में। तो जरा सोचिए, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो या कोई, तो सीटी स्कैन से डर जाए या एक्सरे से डर जाए तो नुकसान किसका होगा, मशीन का या आपका? तो जहां जरूरत है वहां कराना है, वहां अपना दिमाग नहीं लगाना, वहां डॉक्टर की चलनी देनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, हमारा LRR प्रिंसिपल है, डोर ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है, जो कि हमको रेडिएशन से बहुत तरीके से बचाते हैं। फिर विटामिन डी और B12 की बात कर लेते हैं लगे हाथों, कि विटामिन B12 और विटामिन डी साइलेंट

0: की तरह है, मतलब साइलेंटली हम पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे रीजन फैले हुए हैं। धूप वाला देश है हमारा भारत, धूप वाला देश है, फिर भी विटामिन डी की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम धूप में रहते ही नहीं है, ऑफिस में रहते हैं, कार में रहते हैं, मॉल जाते हैं, लिफ्ट में रहते हैं, घर में एसी में रहते हैं, बस यही हमारा जीवन बन गया है। विटामिन B12 विशेषकर स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए धीरे धीरे कम हो जाता है बॉडी में। हम अब जो हम फर्मेंटेड फूड होता है वो हमने खाना छोड़ दिया है, घर की बासी रोटी, घर का बासी बासी जो दही में चावल होते हैं, वो सब हमने खाने छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें तो फ्रिज में रखा हुआ जो फूड है वही हमारा फ्रेश है। ताजा फूड भी नहीं खाते हम, ना हम बासी फूड खाते हैं, हम खाते हैं फ्रिज में रखा हुआ खाना।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या इसी वजह से स्वास्थ्य के प्रति रिजल्ट अच्छे नहीं है?
0: तो हमारी हड्डियां भी कमजोरी होती है, हमें थकान रहती है, झुंझुनी रहती है, कुछ मेमोरी इश्यूज आते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको अभी नहीं पता लगती हैं, जब समय चला जाता है उसके बाद पता लगती है। अब हम बात करते हैं लिवर, जो फैटी लिवर है, हर एक को जो अल्ट्रासाउंड करा रहा है उसका फैटी लिवर आ रहा है, या कोई ब्लड टेस्ट करा रहा है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रहा है, जो शराब नहीं पीते उनमें भी आ रहा है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है क्या?
0: तो कारण क्या है कि आदमी कम वॉक कर रहा है, ज्यादा खाना खा रहा है, मोटा है, उसको डायबिटीज हो रखी है, तो फैटी लिवर अक्सर साइलेंट होता है, वो ऐसे कुछ नहीं करता लेकिन बहुत कुछ कर जाता है। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपको समझना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं AI डॉक्टर की जगह ले लेगा क्या? कुछ लोग कहते हैं AI आ गया अब तो डॉक्टर की जरूरत कहाँ है, गूगल करो, ChatGPT करो, जेमिनी करो, क्लॉडी करो, सब उसमें सब पता लग जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता AI। AI डॉक्टर, जैसे आपका मैंने कहा AI इज लाइक अ सर्वेंट टू यू, वैसे डॉक्टर का भी असिस्टेंट है वो, डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता वो, है ना। मैं सबको बताता हूँ कि GPS आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन गाड़ी अभी भी ड्राइवर चलाता है ना। ड्राइवरलेस गाड़ियां भी आ गई हैं, लेकिन गाड़ी में बैठते तो आप ही हो कि आपको कहाँ जाना है, आप ही बताते हो ना, या उसको मालूम चल जाता है कि आपको कहाँ जाना है। तो AI सुझाव दे सकता है लेकिन डिसीजन डॉक्टर ही लेता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी भी कोई रोबोटिक रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, उसको ऑफकोर्स एनहेंस कर सकता है, उसको असिस्ट कर सकता है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो हम जैसे हमेशा बात करते हैं वही हम आखिरी बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हम कार की सर्विस समय पर कराते हैं, AC की सर्विस समय पर कराते हैं, वाटर प्यूरिफायर की सर्विस समय पर कराते हैं, लेकिन बॉडी की सर्विस नहीं कराते टाइम पे। जो बीमारी हो जाती है, हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते हैं, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तब सोचते हैं यार यार ये नहीं किया तो अच्छा होता, आप दवाई खा लेते हैं। तो हर व्यक्ति को टेस्ट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ उम्र है जैसे 40 के बाद है तो आप रेगुलर टेस्ट कराइए, एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए।
1: श्रोताओं, आयु बढ़ने पर और समय समय पर जांच भी करानी चाहिए।
0: है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं।
1: जी
0: अगर मैं आपसे कहूं आपकी सबसे बड़ा एसेट क्या है, सबसे बड़ी आपकी दौलत क्या है, कोई कहेगा मेरा घर है, कोई कहेगा मेरी गाड़ी है, कोई कहेगा मेरा बिजनेस है, कोई कहेगा मेरा परिवार है, कोई कहेगा मेरा बैंक बैलेंस है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि आप बिस्तर से ही ना उठ पाए, अपने हाथ से ग्लास लेके पानी ना पी पाए, तो क्या उस दिन आपका बैलेंस या आपको मॉर्निंग वॉक ले जा पाएगा, आपका बैंक बैलेंस आपको मॉर्निंग वॉक पे ले जा पाएगा, कि आपकी गाड़ी आपके लिए सीढ़ियां चढ़ सकती है, कि आपका मोबाइल आपकी जगह सांस ले सकता है? नहीं,
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं।
0: उस दिन सबसे बड़ी दौलत सिर्फ एक होगी, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं, हर दिन लोगों की बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता हूं। कई बार रिपोर्ट देखकर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, देखो डॉक्टर रिपोर्ट भी मेरी नॉर्मल आई है, अब मैं क्यों टेस्ट कराऊं? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। बहुत सी बीमारियां दर्द देकर या रिपोर्ट में प्रॉब्लम होकर नहीं आती हैं, वो चुपचाप आती हैं, साइलेंटली आती हैं। हमारी बॉडी जरूर हमें सिग्नल देती है पहले, बीमार होने से पहले, अगर उसको हमें सिग्नल को पकड़ना है, हमें अपना एंटीना सही रखना है कि उस सिग्नल को हम पकड़ लें। हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, डायबिटीज, कई शुरुआती कैंसर, वो पहले शोर नहीं मचाते, वो हल्के हल्के हल्के आते हैं जैसे चोर आता है और एकदम धावा बोल देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है क्या?
0: इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिम्टम्स का इंतजार बिल्कुल मत करिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, सिग्नल्स को पहचानिए। और एक और बात, हम लोग इंश्योरेंस भी कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो रहा है अब तो, है ना, बहुत लोग कराते हैं अब तो। पहले कार इंश्योरेंस होता था सिर्फ, या पहले कमर्शियल गाड़ियों का होता था, फिर पर्सनल गाड़ी का भी होने लग गया, है ना। अब हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, घर का इंश्योरेंस भी होता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी होता है, फायर इंश्योरेंस हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से इंश्योरेंस हो रहे हैं। भैया हेल्थ इंश्योरेंस भी हो रहा है ना, सब लोग कर रहे हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस भी करा रहे हैं लोग। लेकिन सबसे ज्यादा इंश्योरेंस सबसे जरूरी जो है, जो आदमी हर कोई भूल जा रहा है, लाइफ स्टाइल का इंश्योरेंस आपका, है ना। आपके लाइफ स्टाइल का इंश्योरेंस भी करा लो आप। कैसे कराओगे? वो कहीं नहीं होता, वो आपको खुद ही करना है। कैसे करना है? और इसका प्रीमियम भी बहुत महंगा नहीं होता।

0: जबकि बाकियों की तरह सिर्फ आपको आधा घंटा वॉक करनी है, थोड़ा सा संतुलित खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, थोड़ी सी धूप लेनी है, थोड़ा कम स्ट्रेस लेना है, थोड़ी ज्यादा गप्पे मारनी है दोस्तों के साथ, थोड़ा ज्यादा हंसना है, है ना? आपकी जेब पे कहीं पे भी असर नहीं आएगा। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना है, ताजा बना हुआ खाना खाना है, ताकि हम लंबे समय तक ताजा रहें, है ना? बासी खाना रेफ्रिजरेटर में रखकर ताजा कभी नहीं होता, है ना? और बासी हो जाता है, बस वो हमें लगता फ्रेश है। अगर आपको सही में बासी खाना खाना है तो फर्मेंटेड फूड खाइए, रात में रख के, जैसे लोग खाते थे पहले, कि चावल है, दही है, उसमें थोड़ी प्याज डाल दिया, मिर्च डाल दिया, उसको एक मटके में रख दिया और सुबह उसको खाया, तो वो आपके गट पे भी अच्छा रहेगा, पेट के लिए भी अच्छा रहेगा और वो सही में अच्छा है।
1: बासी रोटी खाने से, सुबह सुबह बासी रोटी खाने से स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी बनेगी। सोचने की बात है,
0: बासी रोटी भी अच्छी होती है, उस समय विटामिन मिलते हैं। हमारी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही है, अगर हम स्वस्थ रहते हुए उसकी देखभाल करेंगे, तो वे हमें वर्षों तक हमारा साथ देगी, कोई कुछ नहीं करना। पर पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसलिए द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज नॉट ट्रीटिंग डिजीज, इट इज प्रिवेंटिंग डिजीज। तो दोस्तों, स्वास्थ्य दवा से नहीं बनता, आदतों से बनता है। थोड़ा चलिए, सीढ़ियां भी चलिए, धूप में रहिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को भी खेलने दीजिए, घर का खाना खाइए, और सबसे जरूरी, रिश्तों के लिए समय निकालिए, अपनों के लिए टाइम निकालिए, पड़ोसी घर जाइए, पड़ोसी को घर बुलाइए, है ना? क्योंकि हेल्थ केवल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करता, हेल्थ अच्छी नींद है, हेल्थ खुश परिवार है, है ना? चलता हुआ शरीर है, शांत मन है। आज मैं आपको एक चैलेंज देके जा रहा हूँ, कल से सिर्फ 3 काम शुरू कर दीजिए।
1: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, वो कौन कौन सी बातें हैं जो अमल करनी चाहिए?
0: 20 मिनट वॉक, 20 मिनट बिना मोबाइल के परिवार के साथ रहिए, और 20 मिनट अपने लिए रखिए, चाहे मेडिटेशन करिए, चाहे खाली बैठिए, बस ऐसी पैर पे पैर रख के, बस देखिएगा, धीरे धीरे आपका शरीर भी बदलेगा, आपको अच्छे थॉट्स आएंगे और आपका जीवन ही बदलेगा। और अंत में, हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम हेल्थ को हल्के में लेते हैं। जब तक वह साथ छोड़ना शुरू नहीं करती, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिफोर योर हेल्थ स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, और याद रखिए, इलाज से बेहतर समय रहते बचाव है। तो दोस्तों, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए।
1: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान थे डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, MBBS MD।
2: बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल, MBBS MD।
1: और अब जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए रविंद्र मिश्रा को आज्ञा दीजिए। श्रोता नमस्कार। बहनों भाइयों, तन स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ, यही जीवन का सार है। रोज सुबह की धूप में ही आरोग्य का उपहार है। सादा भोजन, साफ पानी, यही सबसे बड़ी दवा। व्यायाम से आती ताकत, आलस से तन है सड़ा। समय पर सोना जागना और हंसना दिल खोल, तनाव को दूर भगाओ, मीठे बोल तुम भी बोल। पेड़ पौधे हरियाली से सांसों को मिले जीवन, मोबाइल कम चलाओ, प्रकृति से करो मिलन। बीमारियों से बचने का एक ही मंत्र है ध्यान, रोकथाम ही सबसे बड़ी सेहत की पहचान। स्वस्थ रहोगे तो जग में हर सपना साकार होगा, स्वास्थ्य ही धन है भाई, यही सबसे बड़ा उपहार होगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान थे
2: बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल, MBBS MD।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आपको पुनः जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रमों से, रिले करेंगे मुंबई केंद्र से।
4: और अमाय प्रश्नों करे नील ध्रुव तारा।

सलील दा ने केवल फिल्मी गाने ही तैयार किए हों ऐसा नहीं है। जब उनकी बेटी अंतरा छोटी थी तो उन्होंने बांग्ला के नर्सरी गीत तैयार किए। अंतरा इतनी छोटी थी कि माइक्रोफोन के सामने स्टूल रखकर उस पर उनको खड़ा करना पड़ता था। ये वो बांग्ला नर्सरी सॉन्ग हैं जिन्हें गाते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं।

यहाँ हम इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि सलील चौधरी ने केवल फिल्मी गाने तैयार किए हों, ऐसा नहीं है। सलील चौधरी ने कई जनगीत तैयार किए और ये गीत नाट्य टोलियां और युवाओं की टोलियां आज भी गाया करती हैं, जैसे शैलेंद्र का लिखा ये बेमिसाल नगमा।

सलील चौधरी के संगीत का दायरा अपरिमित है। अपरिमित सही मायनों में है, क्योंकि एक तरफ इसमें हिंदी फिल्मी गीत हैं, दूसरी तरफ बांग्ला फिल्मी गीत हैं, लेकिन इसके अलावा गैर फिल्मी गीतों और अन्य भाषाओं के फिल्मी गीतों का एक विराट संसार है। गैर फिल्मी गीत हिंदी में भी हैं और बांग्ला में भी। इसके अलावा मलयालम में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 27 फिल्मों में संगीत दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, बांग्ला में 41 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और कुल 13 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिसमें हिंदी और बांग्ला और मलयालम के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और असमी भाषा की फिल्में शामिल हैं। सन 1965 में आई थी फिल्म चिमीन। इस मलयालम फिल्म में सलील चौधरी ने अद्भुत संगीत दिया था। मन्ना डे के स्वर में ये मलयालम गीत सुनिए।

अब एक और दिलचस्प घटना की बारी। सन 1972 फिल्म अन्नदाता के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सलील चौधरी ने एक गीत बनाया जिसका मुखड़ा इतना लंबा था कि क्या कहें। अब इतना बड़ा स्केल, उन्हें लगा कि कौन गायक इसे गा पाएगा। इस गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया। हालांकि सलील दा डर रहे थे कि किशोर इस गाने को गाएंगे, निभा पाएंगे या नहीं। किशोर कुमार ने भी इस गाने को गाने से पहले तरह तरह के नखरे किए और तरह तरह की दिक्कतें दी। उन्होंने कहा कि वो वास्तविक जीवन तो छोड़िए, सपने में भी इस गाने को नहीं गा सकते। अब सलील चौधरी संकट में फंस गए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हुआ और किशोर कुमार पहुंचे और उन्होंने इस गाने को गाना शुरू किया, तो सलील दा और वहां मौजूद सारे साजिंदे चकित रह गए। एक ही बार में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का बड़े मुखड़े वाला ये अद्भुत गीत फिल्म अन्नदाता।

सनी दा ने एक फिल्म भी निर्देशित की थी। सन 1966 में आई फिल्म पिंजरे के पंछी में मीना कुमारी, बलराज साहनी और महमूद थे। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन तीनों का जिम्मा सलील चौधरी ने संभाला था। सलील दा दुनिया भर का संगीत सुनते थे। केवल वेस्टर्न क्लासिकल नहीं बल्कि वेस्टर्न फोक से भी उनका बड़ा लगाव था। तभी तो उन्होंने जब लेव निपर की ट्यून मीडो लैंड सुनी तो इस हंगेरियन फोक ट्यून को उन्होंने हिंदी सिनेमा के एक कालजयी गाने में बदल दिया। वो गाना था

यहाँ एक और मजेदार बात बताएं। बचपन के दिनों में एक दरबान को गाना गाते हुए उन्होंने सुना। ये गाना उनके जहन में छप गया। आगे चलकर सन 1954 में इसी धुन को उन्होंने फिल्म नौकरी के इस गाने में बदल दिया।

पुरस्कार, सम्मान, पेशेवर काम, धन संपत्ति, इन सब चीजों से सलील चौधरी को कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने संगीत के मुसाफिर थे, संगीत की दुनिया का ये मुसाफिर बस काम करता रहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी कौन सी फिल्में बड़े

दुनिया के हर कोने में सलील चौधरी के संगीत को पसंद करने वाले, सराहने वाले और उनके दीवाने मौजूद हैं। अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता। सलील चौधरी भले मुख्य धारा के बहुत ही कामयाब और धनी संगीतकार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने असली दौलत कमाई और वो दौलत थी संगीत के सुर और उनके प्रशंसक। तभी तो सलील दा के जाने के इतने बरस बाद भी हम इतनी विकलता से उन्हें याद कर रहे हैं।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार सलील चौधरी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय मौसम ऐसा है कि आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वाइन फ्लू इस समय बहुत फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा जुकाम, सर्दी, फीवर, जरा सी देर में फीवर आ जाता है, लेकिन वो ऐसा बुखार होता है कि इतनी वीकनेस आ जाती है कि और जो अपना डेली रूटीन है उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो इस बुखार को ज़्यादा समय मत दीजिएगा कि सोचे अभी 3-4 दिन अभी सही हो जाएंगे, ये मत सोचिएगा। तुरंत ही आप अच्छे अपने फैमिली डॉक्टर से दवाई लेकर के अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अपने परिवार में जो है बच्चों का, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। बच्चों को इस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, क्योंकि इस समय थोड़ा मौसम जो है मिला जुला है, इसीलिए जरा सी देर में ठंडक का एहसास होता है, बारिश होती है तो, और फिर गर्मी जब धूप निकल आती है तो गर्मी का होने लगता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आज पहला कमेंट आप सभी का हम तक पहुंचा है, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश कोर्धनधरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पद्मा टाकिज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं आप सभी लोग, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। रजोखर बाजार अररिया बिहार से हैं शरीफ आरजू, गुड्डू रंगीला, मोहम्मद नसीम, मोहसिन आरजू। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल, डॉक्टर अमनदीप। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। भोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। ये कमेंट हमारे पास आया है राजकमल, रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद उनू, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। दतरेंगी भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। शाहजीनगर देगलूर जिला नादिर महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। मालियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बहेली से हैं ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार और इनके मम्मी पापा। ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हैं अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। MLB रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना और SK पप्पी का। साथी हैं आरफ खुराना। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान और इनके परिवार के सभी सदस्य, साथ ही इनके दोस्त।

ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है गंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

0: बार कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के नगमों को आकाशवाणी के परेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 एफएम पर। और श्रोताओं, कल तो आपने बनाई है कृष्ण जन्माष्टमी। जी हां, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और अब धीरे धीरे उनकी छठी भी आएगी, फिर राधा अष्टमी आएगी। जी हाँ, और छठी में तो जगह जगह जो है बहुत अच्छे से भंडारे लगते हैं, कड़ी चावल। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान टेढ़े, वसंतराव भोजन, पीएस नभाकर और मोहन करांगले। परीमेल कासगंज से हैं आवाद खान, नबील खान और आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव बॉन्डी वाला फजल का पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी करीमा बगड़िया का। बहड़ी से हैं अंजुम भाई, खालदा बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का का। राज मैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का। शनि बाजार कस्बा उघेती बदायूं से हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन देव, प्रियल कैरव और गौरी गुप्ता का। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं राजेश कुमार, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। बाबा कोटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से हैं तरुणु मंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु का। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। बन बघेरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा। उरेटा डोंडी लोहारा जिला बारौस से हैं देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा और माधुरी अल कबीर। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। गांव खावारी अब्बल से हैं चौधरी राजवीर सिंह, अवियाना चौधरी, अध्ययन डागुर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव हीरावली फजलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से है विकास श्रीवास्तव और सौरभ श्रीवास्तव। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। सफीदो सिटी हरियाणा से हैं नाना खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिला नाचानी, गोपाल

तंबोली और तिलक तंबोली का। कस्बा उगहती बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से हैं धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप का। पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का। शकुलपुरा बनारस से हैं सतीश शर्मा जी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी, बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवार के सभी सदस्य। सालार पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराज उद्दीन, नजमुद्दीन, कैसर उद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से हैं राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी और शिवम का। ग्राम करेली जिला बरेली से हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहनूर अंसारी, नसरीन अंसारी और समा अंसारी का। भट्टापार छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अकीता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी और जगदलपुर बस्तर से हैं पूनम नायडू जी। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है खुद्दार और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां हैं आप और वहां हैं हम। और ये कमेंट आप सभी का फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुंचा है। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा का। ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से हैं राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और बेबी लक्षुका। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई और प्रतेश संघई।

साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्य आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मेंटी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबवेल और पीबी कुलथे का। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार का। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हिरामन शेंडे, प्रतिभा ताई गोंडाने का। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या और अन्नू गोस्वामी का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शपिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और इनके बच्चे नुमेर मंसूरी का। रंगोली रेडियो लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी। दरभंगा से हैं क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद भगत और भूलिया देवी का। आकोट से हैं विनायक वेंडे, श्रीमती मंगला वेंडे, विजय शुभम वेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का। गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अनु खान का। नजबुल होदा से हैं एस एम जावेद। टावर चौक गुमला से हैं एयरपोर्ट रोड वंदनानगर इंदौर से हैं नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, गणेश कार्तिक खड़से, कुमारी लड्डू देविका चौधरी, स्वाति प्रयागराज चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पूर्णा देगांव से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात का। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, जुहान उल हुदा का। लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। कासम कॉलोनी सनावत से हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री और नुरू मीना का, इरफान मीना और कासिफ मीना का। भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से हैं विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान का। पंचकूला सेक्टर 9 से हैं आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढिंगरा का। पंचकूला सेक्टर 11 से हैं अतुल शर्मा। बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से हैं अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से हैं गजान येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। कर्मचारी नगर रोड बरेली से हैं गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल, मिही लाल, प्रीति मौर्य, रीना और सुनीता मौर्य का। कटरा चांद खा पुराना शहर बरेली से हैं रतनमाला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश और मन्नू भाई का। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिक्रेस्ट्रो, रोजी डिक्रेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिक्रेस्ट्रो का। गाँव वड़वाला हनवंता फाजिलका पंजाब से हैं विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यसिका, माँ विद्या देवी और सारा मायल का। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है दिल्ली उत्तम नगर से हैं मानसी गौरव, कविता और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। समस्तीपुर बिहार से हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह। रोहतास बिहार से हैं सोनम सिंह और अनामिका सिंह का। नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नूरी, नथु नन्हे, शाकिर और इनके परिवार के सभी सदस्य। सरलाही सोकनाहा नेपाल से हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी और इनके सभी साथी। नई बस्ती गजुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का।
आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत फिल्म का।

0: बाजरे की पकौड़ी है।
1: बाजरे की पकौड़ी, वाह।
0: लोगों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे श्री अन्न के व्यंजन अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं और पाचन सुधार में मदद करते हैं।
1: अच्छा भाभी,
0: श्री अन्न से रोटी, दलिया, खिचड़ी, लड्डू, पोहा आदि बना सकते हैं।
2: श्री अन्न अपनाए, स्वास्थ्य बनाए।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को, और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। छिंदवाड़ा बेरेडी से है नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जय लाम से का साथी हैं हर्षिता का। विराटनगर नेपाल से हैं अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और इनके सभी साथी। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। तिगरा खानपुर उत्तर प्रदेश से हैं रचना, रेणु, उत्तम, तरुणा, रजत और राधिका का। महाराष्ट्र से हैं आप सभी लोग आष्टी जालना से दत्ता धोड़के और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इनके दोस्त। टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा, रीमा और राहुल डोंगर दिवे का। राजकोट से हैं जैमिन जैन, हितल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से हैं बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता और निखिल कांगड़ा, साथी हैं तन्वी बोध। पश्चिम पुरी दिल्ली से हैं उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा, अनमोल जुनेजा और साहिबाग गुप्ता का। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। लाल कुर्ती रुटकी कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा का। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं

राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना और तुलसी मस्किन का। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित तानिया नारंग। सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय मेरसाय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और भवानी पेट। सोलापुर महाराष्ट्र से हैं मिस्किन परिवार, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, आरव और वाणिका। माहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ का। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर अली खान। अडार नांदगंड घाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी वर्मा और उदयपुर से हैं नजीब खान, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। अहमदगढ़ मंडी मंजाब से हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया सुल्ताना, सूरज अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। गोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार का। ये कमेंट हमारे पास आया है जनकपुरी नई दिल्ली से हैं संगीता सलूजा, प्रदीप सलूजा, प्रथम सलूजा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से हैं राजेंद्र, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फा शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल, संजीव गंगवार। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि मानवी और ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार का। ग्राम कुदरकी मुरादाबाद से हैं एम मुनाजिर खान, फरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा और गौसियाबी का। नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह स्वीटी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है कुदरत और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। पांजरा बोरी जिला भंडारा महाराष्ट्र से हैं बवन राम टेके, वैशाली, आरुषि और आस्था राम टेके का। बुलंदशहर से हैं उमेश गौड़ और रानी गौड़। हजारीबाग झारखंड से हैं वीरेंद्र भगत, माली भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल का। गांधीनगर महेश्वर से हैं श्याम यादव और सोना यादव। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से हैं आप सभी लोग। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार, पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास का। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं सुरेंद्र खुराना और इनके परिवार के सभी सदस्य। वीरम गांव गुजरात से हैं अजित भवसार, प्रेमिका भवसार। गुरमीत सिंह मीता का हम तक कमेंट पहुंचा है। वर्ली मुंबई से हैं नवाब खान, ईश्वर जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान। बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से हैं रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांवकर। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हैं कुमारी वंदना, मराठा भाऊ मराठा, पूजा रेखा, रघुवंशिनी रघुवंशी, नंदनी बबीता रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा युवराज वानखेड़े, ललित लक्ष्मी, राणा भाऊ खड़से, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका, श्रीनिजा, आप सभी लोगों ने कमेंट हमें भेजा है। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जिला बदायूं ग्राम गनगोला से हैं इसरत खान, सायरा बेगम, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान का। गंगवार बैगलाइन से हैं आप सभी लोग गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, बेचेलाल गंगवार, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील, महावीर कश्यप, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर और राज कश्यप का। ग्राम टोडरपुर भूडू बिलसी पदाइयों बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं पीएस यादव, अजनबी, जयपाल सिंह यादव, पवन कुमार यादव, प्रभात कुमार यादव, मयंक मुन्नी यादव, नीतू सिंह, प्रतिभा, प्रतिज्ञा और नेमपाल सिंह यादव का। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया हुलक डावर, भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद, तहसील आलोड, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमला बाई, वन देवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य डब्बू सम्राट। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और इधान खुराना। गांव सिद्धूवाला सूरतगढ़ राजस्थान से हैं इंदिराज ज्याणी, अंकुश ज्याणी। ईदगाह जनूबी जिला बखर

पंजाब से हैं मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान का। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है। छत्तीसगढ़ से हैं धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता, हर्ष कुमार पटवा, विनीत और क्रिस्टी पटवा का। पंजाब से हैं रिहाना खान, हफीजुर रहमान खान। श्रोताओं कोशिश किया कीजिए, जब आप हमें कमेंट करते हैं तो एक बार में ही कमेंट अपने नाम का करें, बार बार ना करें। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से है राम राव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया का। वर्ली मुंबई से है नवाब खान, इशरत जहां, मासूद अजहर खान और अजीम खान। रणधीर गुप्ता का ये कमेंट हम तक पहुंचा है। फलाई नगर बीट महाराष्ट्र से है बालाजी प्रसाद करवा और उनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी रिया, रेणु यादव और रोनिका यादव का। ये कमेंट हमारे पास आया है। नरकोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है कन्यादान और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्वर परीक्षा हेतु एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने SINE पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की है, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। युववाणी के लिए 10+2 यानी 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों, ये बहुत जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। सूचना समाप्त हुई।

सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यातायात के नियमों का पालन कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने वाहन और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये सब हैं वृक्षों के उपहार। जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। प्रकृति हमें वही देती है जो हम प्रकृति को लौटाते हैं, और इसका उदाहरण हाल ही फिलहाल की देख लीजिए, नेपाल में आई हुई बाढ़। पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे सब रंग। सब रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पहले ये कृष्ण भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण व साथियों की आवाज में ये भजन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम। और लीजिए अब सुनिए ये गजल चंदन दास के स्वर में।

और लीजिए अब सुनिए सब रंग में ये गीत दलेर मेहंदी की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 होने वाले हैं और अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और हमारे साथ फोन लाइन पर भी कोई आ चुका है अपने मैसेज के साथ में, उनसे बात की जाए। हेलो।
7: हाँ नमस्ते सर।
6: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
7: सर श्रवण कुमार, राम हसनापुर, फतेहपुर जिला, फतेहपुर उत्तर प्रदेश भारत से सर।
6: जी जी जी, फतेहपुर से आप बोल रहे हैं श्रवण कुमार जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं श्रवण कुमार साहब?
7: सर यही कि बारिश का सीजन है, तो आंधी तूफान अगर आए मैदान पे, अगर आप हो तो कुकड़ों को बन के अपने आप को बचाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं सर, और बीमारियों से दूर रहें सर।
6: क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज है आपका, और आप हमसे जुड़े
7: लेना चाह रहे?
6: जी बिल्कुल, बहुत जल्दी नाम लीजिएगा।
7: पिताजी का नाम है श्री अजय पाल सिंह हसनापुर, माताजी का नाम है श्री श्रीवती देवी हसनापुर।
6: जी जी जी, श्रवण कुमार जी आप हमसे जुड़े और आपने बहुत अच्छा मैसेज हम हमारे सभी लिसनर्स को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं फिर आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

फ्रेंड्स 11:53 और 18 सेकेंड्स का वक्त। आप एंजॉय करें प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे। और मेल्स की बात करें तो बहुत सारे मेल्स हम तक पहुंचे हैं। कौशलेन जी ने मेल किया है अर्जुनगंज से और ये बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। लिखी जी, बरसात में जब भी आप निकले तो भीगे नहीं, अपना रेनकोट लेकर साथ चलें। क्या बात है। ब्रजेश जी ने मेल किया है, लिखते हैं कि नमस्ते विनय जी, नमस्ते, और कह रहे हैं आप कहीं पर जा रहे हो तो अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो उसकी मदद जरूर करें।

फ्रेंड्स, 11:54 और 12 सेकेंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि विनय अब आपसे लेगा इजाजत। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना है कि प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।

0: रंग हमारे संग तुम्हारे। सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन
1: 100.7 FM रेनबो
0: सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गिद्धों के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि गिद्ध प्रकृति की अपनी क्लीन अप टीम है। वे इकोसिस्टम को साफ रखने, बीमारियों को फैलने से रोकने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार गिद्धों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है ताकि ये महत्वपूर्ण पक्षी एक बार फिर देश के लिए आसमान में उड़ सके। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों से यह भी अपील की कि वे गिद्धों की सुरक्षा, उनके आवासों को बहाल करने और इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखने का संकल्प फिर से लें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले महीने की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11.4 अरब अमरीकी डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 740 अरब डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां इस सप्ताह के दौरान 9

अरब अमरीकी डॉलर बढ़कर 600 अरब डॉलर से अधिक हो गई। स्वर्ण भंडार 2.1 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 116 अरब डॉलर से अधिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश की आरक्षित स्थिति 11 मिलियन डॉलर घटकर 4.9 अरब डॉलर हो गई। प्रदेश में बाढ़ की चुनौती के बीच सरकार का राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक 18,810 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत अभियान के तहत अब तक 4,00,000 से अधिक लंच पैकेट और 79,666 बाढ़ राहत किट वितरित की जा चुकी है। 1,821 नाव एवं मोटर बोट रेस्क्यू कार्य में लगाई गई है। बाढ़ से अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। वर्तमान में 24 जिलों में बाढ़ का असर है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़ घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

जी हाँ, 12:05 रेनबो के आशिकी में सरशार रहिए, तरन्नुम के साथ सुनते रहिए फैमिली फन। आज स्पेशली टीचर्स जो हैं उनसे हम बात करेंगे। सो विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे।

जी हाँ दोस्तों, 12 बज चुके हैं और 12:09 हो गए हैं और सभी को पता है कि आज है सैटरडे और आज के दिन इस एक घंटे स्पेशली आपके लिए प्रोग्राम हम लेकर आते हैं जिसका नाम है फैमिली फन। हमारा बहुत ही स्पेशल वुमेन बेस्ड प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं उनके जिंदगी, उनके चैलेंजेस, उनके अचीवमेंट्स और उनके जज्बे की। उनके जज्बे को तो हम हमेशा सलाम करते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम, जैसे कि आज टीचर्स डे है, सभी को हैप्पी टीचर्स डे अगेन, और अक्सर क्या होता है कि हम टीचिंग को बहुत ही लाइट प्रोफेशन लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सुबह आप बहुत अच्छे से गए, आपने बच्चों के साथ हंसी मजाक किया, उनको अच्छे से पढ़ाया और उसके बाद हम घर लौट आए। स्पेशली जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन टीचर सिर्फ क्लासरूम में लेसन नहीं पढ़ाती बल्कि बच्चों के कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और जो फ्यूचर्स है उसको शेप करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है जी। लेकिन एक फीमेल टीचर के लिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर और फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी होती है। ऐसे में टीचर्स कैसे तालमेल बिठाती हैं, कैसे उनकी जो स्कूल की लाइफ है, कैसे उनकी घर की जो लाइफ है, कैसे मैनेज कर पाती हैं वो, ये सोचकर आज हम कुछ ऐसी टीचर्स से बात करेंगे, कुछ ऐसे प्रोफेसर से बात करेंगे जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हैं, जो बताएंगी कि कैसे लाइफ को बहुत ही लाइट भी जिया जा सकता है। बस जीने का जो ढंग है वो आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जीते रहना है, खुश रहना है रेनबो के साथ। बोले तो सुरों का लखनवी एहसास।

0: हमारा प्रोफेशन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जो कि प्रोफेशनली टीचर नहीं है, बट हमें बहुत सारी चीजें सिखा करके जाते हैं। तो आई बिलीव बहुत सारे लोगों को टीचर्स डे हम सबकी तरफ से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है, इसमें आने के लिए सबसे ज़्यादा आपको किससे इंस्पिरेशन मिली, किससे प्रेरणा मिली?
0: मैम, हमारे एक सर थे, आपके सक्सेना सर थे, और एक हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ाते थे, नायर सर। तो जब वो क्लास में आते थे, बिकॉज आई हैव बीन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो उनकी क्लास 4 बजे लगती थी। और जैसे हम, भाई पता ही है कि जैसे अगर बच्चे बंक कर सकते, लेकिन हम उनकी क्लास में जाते थे, हम वेट करते थे शाम के 4 बजे का, और हम सब उनकी क्लास में जाते थे। ना ही वो किसी बुक को कैरी करते थे और ऐसा कुछ भी नहीं। और उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने लर्निंग को बहुत आसान बनाया हमारे लिए, और हमें इंटरेस्ट आता था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात होती है ना कि उस इंटरेस्ट आना। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
1: अच्छा, तो उनसे इंस्पायर होके आप टीचर बनी। तो जब आप पहली बार क्लास आपने अटेंड किया एज अ टीचर, तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
0: देखिए, पहले तो मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब बन गई तब मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। क्योंकि ना, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाती हूँ, तो जब बच्चे, आपको पता होता है कि मैं टीचर्स के हाथ में मार्क्स हैं कुछ कुछ, लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी सब रूल करते हैं, और फिर जब आपको बच्चे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो ये अलग बात होती है। तो जब पास आउट बैच आपके पास आता है, या फिर आज भी मैं देख रही थी, बहुत सारे मैसेजेस, मुझे लगा भी नहीं था वो बच्चे मुझे याद हैं, या मैं खुद भी भूल गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर भी आता है। तो याद रखना, और ये बियॉन्ड पेपर्स, बियॉन्ड नंबर्स, ये बात होती है। कोई भी रिश्ता, मतलब आप, हम आपके टीचर खत्म हो चुका है हमारा बैच, उसके बावजूद भी आप एक कनेक्टेड हो, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है।
1: मैम, सबसे पहले तो ये होता है ना कि अक्सर एक महिला के लिए, स्पेशली जो महिला होती है, जो कि लड़की होती है, कि एक औरत होती है, उसको ये लगता है कि उसको ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो उसका टैलेंट भी उसमें निखर के आए, और दूसरी चीज़ ये होता है कि उसमें पैसे भी उसको मिलें। भाई, जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग भी इंसान होना चाहता है। तो क्या आपका ये एक कह सकते हैं कि टीचिंग को लेके आपके अंदर शुरू से था कि नहीं है, मुझे भी किसी को टीच करना है, या फिर आपने सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन चुना कि नहीं, बस इससे मुझे पैसे की इनकम होनी है, और सीधे सीधे जो एक कहते हैं ना, सिंपल सी एक जॉब चल रही
0: हाँ,
1: है, ऐसा मतलब आपको
0: नहीं
1: इसमें?
0: नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे जैसे आप बढ़, हो सकता है कि कभी कभी कभी आता हो, लेकिन जैसे जैसे आप यू यू बिकम सीनियर इन द प्रोफेशन, तो आपको आपका जॉब सेटिस्फेक्शन, आपकी सैलरी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि किसी चैनल पर आ रहे हैं, या कोई बहुत अच्छी स्टोरी करी है उन्होंने, और या फिर बहुत फेमस हो गए हैं, या फिर कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स, उनकी स्टोरीज बहुत इंपैक्टफुल है, तो इससे इससे सैलरी वैलरी, मतलब आप इसको क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते। ये अलग लेवल का जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को मिलता है, मुझे लगता है। तो वो चीज होती है।
1: अच्छा मैम, कुछ कैसे मैनेज करती हैं? कभी कभी ये भी होता होगा कि स्कूल जाने का मन नहीं है, फैमिली में कुछ ऐसा है, या मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कैसे मैनेज करती हैं?
0: देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आधी आबादी की बात करते हैं, जब हम अपने देश की बात करते हैं, या कहीं पर भी, पूरी दुनिया की भी बात करते हैं, तो अगर एक फीमेल किसी भी प्रोफेशन के लिए जा रही होती है, तो ओवरऑल जो जेंडर रेवोल्यूशन होता है ना, वो पूरे घर का होता है। सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं जितनी भी लेडीज, या जो भी टीचिंग प्रोफेशन में या किसी और भी प्रोफेशन में, प्लीज डू नॉट गिव अप। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने ना आप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, और आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ही बस नौकरी नहीं छोड़ देनी होती है। सोचो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या परम्यूटेशन हो सकते हैं, दिमाग लगाइए आप, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। देखिए, हर हर बारी ऐसा नहीं होता है कि आपकी पांचों उंगलियां सर में, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, आप थोड़े एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, और फिर आप, यू नो, यू आर इन द क्रूज मोड। जब आप सब कुछ अपना दे देते हैं, तो फिर सामने से इट्स देयर टर्न टू गिव इट बैक।
1: बिल्कुल,
0: तो दैट्स हाउ यू स्ट्राइक अ बैलेंस।
1: क्या बात है मैम, क्या कहना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं? एज अ टीचर, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी 2 लाइन में?
0: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे आजकल जो, मतलब मैं पूरा जेंजीज को ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमें हमें लगता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अहम, बहुत बहुत मैं वाले फैक्टर में है, और उनको लगता है उनको सारी चीजें आती हैं। आप थोड़ा सा झुक जाइए, मतलब इन द सेंस, तो आप देखेंगे कि आप बेहतर इंसान बन रहे हैं,
1: क्या बात
0: है ना। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग,
1: है,
0: मतलब
1: बिल्कुल।
0: एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छा लगा आपने इतना अपना कीमती टाइम हमें दिया।
0: अरे वाह,
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो
0: थैंक यू
1: मच
0: सो
1: मैम,
0: मच। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।
1: थैंक यू।

0: जी हाँ, जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी में कैसे डिसिप्लिन रखा जाता है, जिंदगी को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये एक टीचर से हम अच्छी तरह सीख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ ऑन कॉल हैं डॉक्टर सुनैना अस्थाना, मास्कॉम असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडर्न गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: मैम,
1: हाँ
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम फैमिली फन में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू
0: मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत टीचर्स डे की शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी, और मुझे लगता है कि

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।
4: जानो फिर मानो।

0: जी हाँ, 12:30 हो रहे हैं। गल मीठी मीठी बोल, और ये जो बोल होते हैं, जो लिखना सीखते हैं, जो पढ़ना सीखते हैं, ये जो हम मैनर्स सीखते हैं, जो एट्स सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? ये सारी टीचर्स सिखाती हैं हमें, और उन टीचर्स को लाइफ क्या क्या सिखाती है, कैसे वो लाइफ में चीज़ों से, परेशानियों से ओवरकम करती हैं, कैसे वो मैनेज करती हैं, कैसे तालमेल बैठाती हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में, टीचिंग लाइन में कैसे तालमेल बैठाती हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम कुछ लोगों को हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी मास्कॉम की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनैना अस्थाना जी से, और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर मुदिता त्रिपाठी, लॉ प्रोफेसर हैं BBD की, और इनसे हम बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस को हम जानते हैं। हेलो मैम।
1: हेलो मैम।
0: मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी टीचर्स डे।
1: थैंक यू सो मच तरुण्णु मैम, और अभी जो आपने गाना बजाया, थैंक यू सो मच, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट
0: सॉन्ग। थैंक यू मैम। जितने भी सॉन्ग्स प्ले होंगे, उम्मीद है कि वो सब आप लोगों को पसंद आते होंगे।
1: जी मैम, जी हाँ।
0: तो सबसे पहले तो मैम, आप एक टीचर हैं, आप एक लेडी भी हैं, और जाहिर सी बात है कि एक स्कूल की फैमिली होती है, एक अपनी पर्सनल फैमिली होती है, तो सबसे पहले तो क्या टफ टास्क आते हैं?
1: मैम थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस में कहूंगी कि इसमें हमारी, क्योंकि 8 घंटे की जॉब तो सिर्फ 8 घंटे तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी

0: होती हैं, सबसे पहले तो हमें अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस जो करना होता है कि कभी हमारी पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं जिसमें हमें हमारे घर में कोई इवेंट है, कुछ है उसके साथ इन चीजों को मैनेज करते, साथ ही साथ स्कूल में कुछ इवेंट्स हैं उस समय आप अवेलेबल हैं नहीं हैं, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, फिर भी अवेलेबल होना, एग्जाम्स ड्यूरेशन में ड्यूटी करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर हमें बहुत डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, तो हमें कभी कभी अपनी पर्सनल चीजों को सेट असाइड करना पड़ता है, बट मैम इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन तो वो हम बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ मैम कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, कभी ऐसा
0: जी।
1: होता है कि आपको लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं बट वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर बार बार वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, उस टाइम पे कभी आप मान लीजिए कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है, कभी ऐसा हुआ कि आपने झुंझला के कुछ कहा?
0: बिल्कुल मैम, ये कई बार होता है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा आजकल जैसा जमाना है आप देख ही रहे हैं, टेक सेवी हैं बच्चे, तो कभी कभी भटक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत टीचर्स को बहुत पोलाइट मैनर में थोड़ा सा हम कई बार अपनी क्लास में करते हैं कि हंसी मजाक कर ली, उनको थोड़ा सा भटका दिया, उनकी इसी चीज को मजाक में ले लिया, तो बच्चे मैम इतने समझदार हैं आजकल मैं कहूंगी कि वो इसको बहुत समझदारी से लेते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेशन क्वेश्चन को समझाना तो वो तो मैम हमारे पार्ट ऑफ प्रोफेशन का है, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चा एक बार पूछे 10 बार पूछे, और मैं जिस फील्ड में हूँ मैम तो ये बहुत ही वाइड फील्ड है, तो कई बार हम क्रॉस रिलेशन, बच्चा एक सब्जेक्ट से रिलेट करते करते दूसरे सब्जेक्ट पे भी चला जाता है, उससे भी रिलेट करता है, तो ये हमारा काम होता है कि बेहतर से बेहतर और इजिएस्ट मैनर में उनको चीजें समझा दें, बट शैतानियों को थोड़ा सा हमें डील करना पड़ता है मैम, बट अच्छा लगता है।
1: अच्छा मैम, आज के स्टूडेंट्स और आपके जो स्टूडेंट्स लाइफ थी उसमें
0: जी
1: क्या क्या डिफरेंस लगता है, क्या फर्क आ गया?
0: मैम, थोड़ा सा मैं कहूंगी कि जो एक क्लासरूम टीचिंग होती है उससे थोड़ा सा बच्चे भटक रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तो इसको ऐसे रिलेट करूंगी कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, इट्स वन ऑफ द गिफ्ट बाय द गॉड्स, तो टीचर्स भी आपका लाइफ का वही हिस्सा होते हैं, तो टीचर्स से क्लासरूम टीचिंग में चीजों को समझना वो कोई भी AI कोई भी गूगल कुछ भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता मैम, कई
1: बिल्कुल
0: बार हमें कंसेप्ट का क्लियरेंस जो है वो एक क्लासरूम टीचिंग से ही होता है, मेरे पास कई बार ऐसा किस्सा भी हुआ है कि जहाँ बच्चों का मिसकंसेप्शन है या उन्हें अधूरी नॉलेज है, तो एज अ टीचर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको क्लैरिफाई करना, पर ये आप सब गूगल से या AI से या
1: नहीं
0: किसी भी
1: सीख
0: और
1: सकते
0: मोड ऑफ एजुकेशन को अडाप्ट करें, अगर आप टेक्निकल उस पे बात करें तो मैम उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बच्चों का आज का दौर जो है वो एडवांस जरूर हो रहा है, हम उसको एक स्किल की तरह जरूर ले सकते हैं और बच्चों को ऐसा करना भी चाहिए, इट इज नीड ऑफ द आवर, बट हाँ हमारे समय और आज के समय में मैम अगर आप अंतर पूछें तो ये थोड़ा सा एक बेसिक अंतर है, बट फिर भी मैं कहूंगी कि बच्चे इतने हैं कि समझते हैं कि उसको धीरे धीरे अडाप्ट भी कर रहे हैं और इस डिफरेंस को वो भी समझते हैं
1: तो
0: अभी। जी
1: मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे
0: बिल्कुल मैम बिल्कुल
1: कि आप जो हमारे लिसनर्स हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ स्टूडेंट भी होंगे, कुछ टीचर्स भी
0: जी
1: होंगी, तो कभी कभी
0: जी
1: कुछ महिलाओं का जो कह सकते हैं कि उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होती, उनको लगता है कि बस अब गिव अप कर देना चाहिए, अगर टीचिंग लाइफ में है बहुत ज़्यादा, अगर उनको लग रहा है बहुत स्ट्रगल लग रहा है, घर भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और जॉब भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए आप?
0: मैम देखिए कठिनाइयां तो हर प्रोफेशन में होती हैं, बट टीचर जो है मैम एक नींव की तरह है, हम सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं हर प्रोफेशन की नींव है, तो टीचर्स को अपने इस काम को जिम्मेदारी से लेते हुए थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करते हुए इसको मैनेज करना चाहिए, जहां पे भी कभी कोई परेशानी हो तो क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में पर्सनल चीजों में इतना दिमागी तौर पर एंगेज्ड
1: टूटे
0: हैं
1: पे हैं या
0: सुलझे नहीं हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा मन नहीं है पढ़ाने का आज, हमारा मन नहीं है जाने का आज, बट मैं समझती हूँ कि आज तक कभी भी कोई किसी इस प्रोफेशन में रहा है तो एक दिन ऐसा तो जरूर हुआ होगा जब आपने कभी कुछ पढ़ाया हो उससे रिलेटेड या कभी किसी और चीज से रिलेटेड आपका कोई बच्चा आपके सामने आ जाए और आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे उस चीज के लिए, तो मैम वो आपका दिन बना देता है, और आई एम श्योर कि किसी

0: और भी प्रोफेशन में हम अपने मैनेजमेंट से चाहते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करे, बट टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ हमारे बच्चों का सिर्फ एक ही कह देना कि मैम आपका पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, ये चीज़ें हमें और क्लियर हो गई, तो वो शायद सारी परेशानियों को जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, वो सारी दिक्कतों को हम भूल जाते हैं उस समय के लिए. तो मेरा ये कहना है कि चुनौतियाँ ज़रूर हैं, आने वाले समय में थोड़ी और हैं, बट हमें इससे ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमारा ये प्रोफेशन है, उनसे ही हम ये हैं, और देश में हम सीधे सीधे तो नहीं पर उसके निर्माण में कुछ ना कुछ तो सहयोग कर पा रहे हैं.
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी ईंट ही सही, लेकिन
0: जी
1: देश के निर्माण के बिल्डिंग में एक ईंट हमारी और आपकी भी लग रही है। बहुत
0: जी
1: बहुत
0: मैम,
1: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन
0: थैंक यू
1: करने
0: सो
1: के
0: मच
1: लिए
0: मैम,
1: हमें।
0: थैंक यू सो मच.
1: आपका
0: हैप्पी टीचर्स
1: दिन
0: डे टू एवरी टीचर हु इज लिसनिंग.
1: थैंक यू सो मच।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: हर सुबह नया जोश,
5: हर शाम एक नया रंग,
6: लखनऊ की रगों में जो दौड़े
5: वही है ये तरंग।
4: 100.7 FM रेनबो,
7: सुरों का लखनवी एहसास।
8: जी हाँ, 12:43 हो चुके हैं, सुरों का लखनवी एहसास 100.7 FM रेनबो आप एंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन, और आज क्योंकि टीचर्स डे है तो आज हमने उन महिलाओं को इस प्रोग्राम में शामिल किया है जिन्होंने बहुत सारे साल, बहुत सारी जिंदगी का हिस्सा टीचिंग लाइन में दिया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बच्चों को दी हैं जो बच्चे आज कहाँ कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। और उन्हीं में से एक हमारी बहुत ही सीनियर टीचर लाइन पर हैं, हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, मिसेस यूशिंग। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम।
9: हेलो मैम,
8: गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
9: गुड आफ्टरनून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तरन्नुम जी।
8: मैम हैप्पी टीचर्स डे।
9: सेम टू यू, बहुत बहुत, और आप ही को नहीं बल्कि समस्त संसार के, विश्व के जितने भी अध्यापक गण हैं और जितने भी शिक्षक, गुरु और माता पिता भी बच्चों के लिए गुरु हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के शिक्षक दिवस के लिए।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आप एक टीचर रही हैं और आपने अपनी जिंदगी के कई साल टीचिंग लाइन में दिए हैं, क्या कहना चाहेंगी अपनी लाइफ के बारे में, इस टीचिंग लाइन के बारे में?
9: हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अपनी जीवन के बारे में और टीचिंग लाइन के बारे में। मैं यही बताना चाहूंगी कि मेरी बहुत बचपन से ये एक ख्वाहिश थी कि मैं एक टीचर बनूं, और मेरे माता पिता भी ये देख के, क्योंकि मैं कहीं कहीं से भी अपने छोटेपन में, मैं कहीं से भी क्योंकि मेरी मदर भी एक प्रिंसिपल थी, तो मैं कहीं से भी जो है वो रजिस्टर से पेपर फाड़ के और ये सब करके मैं उसमें लिखना शुरू कर देती थी। और बहुत उनकी, बल्कि वो तो गवर्नमेंट में प्रिंसिपल थी, तो वो बहुत सी जो है कॉपियां आती थी उनकी रीचेक करने के लिए, वो रात में बैठ के अपना चश्मा लगा के जो है वो रीचेक करती थी कि टीचर्स ने सही मतलब करेक्शन किया है कि नहीं किया है ये वो। तो मैं क्या करती थी कि उनकी कॉपियों में से कुछ कॉपियां निकाल लेती थी।
8: अच्छा।
9: और उनको मैं कॉपी करती थी कि कैसे वो टिक कर रही है, राइट कर रही है, तो मैं भी वही करने लगती थी।
8: अच्छा।
9: एक बार मैं पकड़ी गई और जो है मम्मी ने मुझसे कहा नहीं ऐसे नहीं करती है, ये तो बच्चों की कॉपी है, और ये बचपना ही होता है। और शुरू से मेरी बहुत ज्यादा ये था कि नहीं मुझे टीचर बनना है, टीचर लोग अच्छी साड़ी पहनती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और ऐसे सब करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर ऐसा ही हुआ कि वही होता है कि जो इंसान जो चाहता है अपने जीवन में करना, और अगर वो अपना 100% उसमें पूरा लगा दे तो वो वही बन के रहता भी है।
8: बिल्कुल,
9: वही बन जाता है फिर वो। बस आपकी जो हार्दिक जो इच्छा होती है उसके लिए आपको बड़ा आशावादी होना पड़ता है, और बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, और तब आप उसको, उस उद्देश्य को अपने प्राप्त कर लेते हैं।
8: क्या बात है। तो मैम इतने साल आपने इतने बड़े स्कूल में दिए हैं, इतना बड़ा स्कूल जो कि लखनऊ का जाना माना स्कूल है, वहां पर आपने पढ़ाया है बच्चों को, और जब बच्चे आपसे मिलते हैं अब आके, तब आपको कैसा फील होता है?
9: मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ साल पहले मेरे कॉलेज के 150 इयर्स हुआ था, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत देश में भी है, विदेशों में बहुत है। तो जो बच्चे देश में है और जो लखनऊ में है, और भारत के बहुत से कोने कोने में मेरे बच्चे फैले हुए हैं, तो आज देखिए, आज टीचर्स डे है, आज की मैं बात

0: बताती हूँ, आज टीचर्स डे, आज मेरा फोन मैसेजेस से भर गया और मॉर्निंग से मेरे पास जो है सुबह से ही खूब फोन आ रहे हैं, विशेस कर रहे हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मेरे बच्चों ने मुझे याद किया। और जो विदेश में बैठे हुए हैं, तो मैं बता रही थी 150 ईयर्स में जब बच्चे आए, इतने प्यार से मिले, इतना जो है, इतनी खुशी हुई हमें, इतनी खुशी हुई हम लोग, हमारे साथ फोटो खिंचवाना, हमसे बातें शेयर करना, किससे सुनाना पुराने, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए शिक्षा एक शिक्षा ऐसी है जो कि विद्यार्थी का भविष्य तय करती
1: बिल्कुल
0: है ना, भविष्य तय करती है विद्यार्थी का। तो इसमें शिक्षक को, जो मैं सोचती हूँ, शिक्षक को बहुत धैर्य, बहुत धीरज रखना पड़ता है और हमें त्याग बहुत करना पड़ता है अपने
1: बिल्कुल
0: जीवन में।
1: बिल्कुल
0: क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छी शिक्षा देनी है बच्चों को, तो आपको अपने जीवन के जो जो चीजें, जैसे कभी ऐसा हुआ कि एनुअल फंक्शन हुआ कॉलेज में, और उसी दिन मेरे घर में शादी भी है,
1: क्या बात है।
0: बहुत कई बार ऐसा हुआ कि कोई जन्म दिवस है, कोई शादी है, कोई अपने बच्चों का हुआ, बीमार पड़े हुए, कभी डेंगू हो गया, कभी पैर टूट गया बेटी का, लेकिन हमको उन सब चीजों को जो है अपने हिसाब से टैकल करना पड़ा और त्याग करना पड़ा, बहुत बहुत त्याग करना पड़ा। और फिर कॉलेज गए, और क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में हमेशा ये रहा कि पहला, फर्स्ट प्रेफरेंस हम अपने स्टूडेंट्स को देते थे,
1: बिल्कुल
0: हमेशा दिया फर्स्ट प्रेफरेंस अपने बच्चों को, कि नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, अरे ये मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मुझे तो पीटी करानी है, या मुझे तो जो है ये बच्चों का म्यूजिक आइटम पेश करना है, तो मैं नहीं होंगी तो क्या होगा, जबकि और भी होते थे, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा कि नहीं हमारे बच्चों के लिए हमारे। तो देखिए टीचर का जो एक रोल है, एक भूमिका है, ये एक बहुत ही अलग भूमिका है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के जीवन में। तो आप जो बच्चे, सॉरी टू से, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन आज बच्चे जो है टीचिंग लाइन में नहीं जाना मांगते हैं, टीचिंग लाइन में नहीं जाना मांगते, तो मैं उन बच्चों को यही कहूंगी कि वो बिल्कुल डरे ना। उनको डर ये रहता है कि अरे बाप रे बाप, इतने ढेर से बच्चे, और अलग अलग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग दिमाग के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, कैसे उनको टैकल करेंगे, शैतान होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी कि वो डरे नहीं बिल्कुल भी, आप अपने अंदर एक कला जो है, एक निपुणता को जो है वो आप डेवलप करिए,
1: मैम,
0: उसको
1: आप
0: डेवलप करिए।
1: गाना गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। एक लाइन में आप कुछ गा दीजिए और फिर इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप कर लें।
0: ये तो हाँ, गाना तो मैं गा लेती हूँ, ऐसा
1: बिल्कुल
0: नहीं है कि बहुत अच्छा गाती हूँ। तो
1: चलिए
0: एकदम से आपने कहा है तो
1: चलिए
0: मुझे
1: चलिए,
0: याद भी नहीं आ
1: कोई
0: रहा
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। और
0: है।
1: बहुत अच्छा लगा कि
0: ना,
1: आपने अपनी बेटी को भी टीचर बनाया है और आज वो इतने बड़े कॉलेज में, आईटी कॉलेज में प्रोफेसर है।
0: आईटी कॉलेज में प्रोफेसर है।
1: तो बहुत बहुत मैम आपको शुभकामनाएं आपकी बेटी के फ्यूचर के
0: बहुत
1: लिए।
0: बहुत धन्यवाद।
1: और मैम आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में, उसके लिए आपको
0: मैं
1: बहुत
0: एक
1: ज्यादा
0: लाइन गाती हूँ, मुझे
1: जी
0: याद आ गया, मुझे
1: जी
0: याद आ गया।
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: मैं गाती हूँ।
1: जी जी
0: हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत
1: बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी यस, लूज कंट्रोल। 12:54 हो चुके हैं। प्रोग्राम फैमिली फन को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है होटो पे तेरी बात। और आज का सवाल आपसे ये है कि आपकी लाइफ का पहला टीचर कौन है? आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com। सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित।

श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और पहला पत्र आप सभी श्रोताओं का पहुंचा है हम तक सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। बेरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर का। करुलम रदाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी और इमरान शेख। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार का। ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती, तनिष और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। छत्तीसगढ़ भाटापा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जयवेंद्र कुमार वर्मा। मॉडल टाउन करनाल से हैं

0: सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप मुगलानी, और जगमोहन प्रजापति। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।
1: अच्छा।

0: मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशनदत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी, शिप्रा नीलम, मुन्नी देवी और श्री राम राठौर का। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नस्रीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं फहीम खां, सिद्धिकरी साबिया, धुनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। कुंज निवास धाकुंज इज्जत नगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शैना बी का। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ पंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या रचना, श्रीमती ओमवती भारती, रवनक, शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने जिला बरेली से हैं रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, अनुरमा देवी, अजय शर्मा, वंश छोटी, गौरी काकू, रीता, विनोद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है राजा और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने एसआईनी पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका है। आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की है, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। युववाणी कार्यक्रम के लिए 10+2 यानी 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी है। और हाँ, बरेली नगर निगम में रहना ये आपके लिए अनिवार्य है। आप बरेली से ही बिलोंग करते हो, ये ज़रूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी बरेली आकर आप आवेदन पत्र आपको लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतज़ार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। सूचना समाप्त हुई।

और श्रोताओं, आपके पत्रों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाशने का। अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर का। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। बठिंडा रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। दसमल चौक परतूर जिला जालना से हैं सुरेश अप्पा दसमले, सौरभ दसमले, सुधाकर दारजी सरजे, जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और इनके परिवार के सभी सदस्य। मस्तानपुरा तापूर्णा जैसे हैं आनंदा भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। ग्राम रट्टे नगला अलीगंज एटा से हैं दीपक शाके, ज्योति शाके, अंकित शाके, पूजा और सक्षम शाके का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है सड़क और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी प्यारे श्रोताओं का। राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान इरफान। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जयपुर निशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवड़ाकर, राही सरिता गवड़ाकर, सिद्धांत गवड़ाकर, प्रिंस एकांश गवड़ाकर, आकार हाइट्स बहादुरा नाग

नागपुर से हैं शैलेश घबराकर, वैशाली घबराकर, श्वेता सुमित घबराकर और ध्वनि घबराकर का। आतिश नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और आरू साहू का। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से हैं मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा का। परीमहल कासगंज से हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी और गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही। ग्राम बगबुड़बा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत को गाया है साधना संगम और साथियों ने।

0: होना अवश्य है ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार अवसरों का उपयोग करना और समाज के प्रति अपने को निभाना उनके कर्तव्यों में शामिल हैं। उन्हें अन्य समुदायों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव या अलगाव की भावना से दूर रहना चाहिए।
1: तो बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करे और जो सामाजिक आपसी सामंजस्य है वो किसी प्रकार से बाधित करे, है ना। अल्पसंख्यकों को देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना, रोजगारों के अवसरों का प्रयोग करना और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाना उनके कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए। उन्हें अन्य समुदायों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता मजबूत करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव या अलगाव की भावना से दूर रहना चाहिए। अंततः अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, है ना। जहां अधिकतर उन्हें सुरक्षा और अवसर प्रदान मिलते हैं, वहीं कर्तव्य उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। यदि दोनों का संतुलन बना रहे तो न केवल अल्पसंख्यकों का विकास होगा बल्कि पूरे देश की एकता, अखंडता और प्रगति भी सुनिश्चित होगी। तो प्रियदर्शनी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये NCM क्या है और ये किस प्रकार काम करता है?
2: राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, इसे हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के नाम से भी जानते हैं। यह अधिनियम भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों के संवर्धन के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों की जांच और सरकार को नीतिगत सुझाव देना, यह सब इस एक्ट का या फिर इस अधिनियम का परम उद्देश्य है। प्रारंभ में 5 समुदाय थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी अधिसूचित हुए थे। बाद में जैन 2014 को जोड़ा गया था, जो जैन धर्म है इस समुदाय को 2014 में जोड़ा गया था अल्पसंख्यक के सूची में। इस बेसिकली इस एक्ट का जो इस अधिनियम का जो प्रारूप है वो इसीलिए बनाया गया था जिससे कि हम डायरेक्ट तौर पे शिकायत कर सकें, अगर किसी समुदाय को कोई परेशानी है, उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वो डायरेक्ट तौर पे इस पे शिकायत कर सकता है।
1: वैसे अल्पसंख्यकों के जो कानूनी अधिकार होते हैं वो जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार होता है, नंबर 2 धर्म की स्वतंत्रता, नंबर 3 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और नंबर 4 शिक्षा का अधिकार, नंबर 5 संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। तो निसार भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि समानता का अधिकार क्या है?
0: अनुच्छेद 14 के कानून के सामने सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
1: धर्म की स्वतंत्रता क्या है?
0: अनुच्छेद 25 से 28 अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की आजादी, धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है।
1: प्रदर्शनी जी, मैं पूछना चाहूंगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है?
2: अनुच्छेद 29 में अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार ये प्रदान किया गया है समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, चला सकते हैं और इसमें इनको पूरा रिजर्वेशन होता है। सरकार इनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, हालांकि राज्य सरकार का अपना इसमें एक तरीके से थोड़ा इनका वो होता है होल्ड, लेकिन पूरी तरीके से ये कहें कि इन्हीं के ही पूरे नियम कायदे कानून चलेंगे, नहीं तो सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है।
1: और शिक्षा में अधिकार क्या होता है?
2: शिक्षा में अधिकार जैसे अनुच्छेद 21A में आपको जो शिक्षा में अधिकार ये जोड़ा गया था 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें 6 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अल्पसंख्यकों के लिए या फिर किसी भी समुदाय या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए यहाँ पे प्रदान की गई है, चाहे वो किसी भी

0: अधिकार क्या होता है?
1: शिक्षा में अधिकार, जैसे अनुच्छेद 21A में आपको जो शिक्षा में अधिकार ये जोड़ा गया था 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें 6 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अल्पसंख्यकों के लिए या फिर किसी भी समुदाय या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए यहाँ पे प्रदान की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म से या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे 6 से 14 साल का बच्चा, उसके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। तो अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए भी इसमें जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान किया गया है।
0: तो संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM, ये संस्था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और शिकायतों की जांच करती है। तो अल्पसंख्यकों के कर्तव्य क्या है निसार भाई?
2: अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। नंबर एक है संविधान का पालन करना, देश के कानून और संविधान का सम्मान करना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, समाज में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना। और तीसरा, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, दूसरे धर्मों समुदायों की आस्थाओं का सम्मान करना, क्योंकि आजकल लोग दूसरे की भावनाओं
0: हाँ
2: को ठेस
0: भावनाओं को ठेस
2: पहुंचाते
0: पहुंचा
2: हैं,
0: रहे हैं, सोशल मीडिया
2: ऐसा
0: में ये अक्सर देखने को
2: बिल्कुल
0: मिलता है।
2: देखने को मिलता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना धर्म और अपने अपने उसको मनाने की आजादी है, अपने
0: बिल्कुल
2: अपने
0: सही
2: तरीके
0: बात।
2: से मना सकते हैं, और हम सबको किसी के लिए किसी चीज के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात।
2: और नंबर चार है शिक्षा और जागरूकता, अपने समुदाय में शिक्षा बढ़ावा देना, कानून का पालन करना, किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहना।
0: तो इसको कह सकते हैं संक्षेप में, भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देता है, विशेष सुरक्षा देता है, ताकि वे अपनी पहचान बनाए रखते हुए देश की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकें। साथ ही उनसे उम्मीद की जाती है कि वे कानून का पालन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। केंद्र सरकार ने जो 6 धार्मिक समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक माना है, वो 6 हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। इनमें से मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को 1993 में अधिसूचित किया गया, जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। तो मैं ये पूछना चाहूंगा प्रदर्शनी जी कि अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कैसे शिकायत दर्ज करें हम अल्पसंख्यक आयोग में?
1: शिकायत दर्ज करने के लिए विकल्प प्रदान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 सीधे शिकायत जो है वो स्वीकार करता है अल्पसंख्यकों की। संपर्क माध्यम उनका, जैसे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उन्होंने प्रोवाइड कराया है 1800-1100-88, इस पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे।
0: मैं ये चाहूंगा कि ये नंबर आप 2 बार रिपीट करें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि हमारे श्रोताओं के समझ में आए।
1: जी, 1800-110-088, 1800-110-88, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे शिकायत अपनी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब फोन के माध्यम से आप इसमें कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे ईमेल एड्रेस, अगर मान लीजिए कोई मेल भेजना चाहता है तो वो मेल भी कर सकता है अपनी शिकायत को, तो grievance@gov.in, इस पे आप अपनी मेल से कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप डाक द्वारा भी इसको उनके पते पे भेज सकते हैं जो आयोग का अपना पता दे रखा है। और ये आप जब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आयोग की वेबसाइट पे इनका पता भी वहां पे मिल जाएगा, ये टोल फ्री नंबर भी, सब कुछ वहां पे पूरी जानकारी दे रखी है
0: तो
1: कि आप
0: इसकी
1: कैसे इसकी
0: जो
1: शिकायत कर
0: वेबसाइट
1: सकते हैं।
0: है उसको भी कृपया आप बताने का कष्ट करें, ताकि हमारे श्रोताओं तक प्रॉपर वे में जानकारी पहुंच सके। और उसको भी आप 2 बार बोलिएगा।
1: www.ncm.in पे आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे आपको जो ईमेल का एड्रेस है वो भी दे रखा है जहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और ये भी बता रखा है कि आप कौन कौन से मुख्य दस्तावेज होंगे जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं और सुलभ तरीके से वो सही से निवारण हो जाए। जैसे आवश्यक दस्तावेज उन्होंने जो बताए हैं,
0: जी
1: पहचान पत्र जिसमें आधार, मतदाता पहचान पत्र आदि, या घटना का जो संक्षिप्त विवरण और उसकी तिथि जिस दिन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कोई घटना घटी है उसका संक्षिप्त विवरण और उसकी तिथि, और यदि संभव हो तो गवाहों या साक्ष्यों की प्रतियां भी आप उसके साथ संलग्न कर सकते हैं।
0: जी
1: आगे की कार्रवाई जो है वो आयोग शिकायत की जांच कर संबंधित विभाग या राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। आयोग की ही सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक या न्याय कार्रवाई होती

0: होती है। यदि समाधान ना मिले तो पीड़ित पक्ष जो है वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला ले जा सकता है।
1: तो मतलब कानून द्वारा उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं कि अगर कोई भी उनको कोई भी शिकवा शिकायत है या कोई किसी प्रकार से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है तो वो इन नंबरों पे और इन वेबसाइट के माध्यम से अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकेगा और आयोग आकर उन समस्याओं का समाधान करेगा।
0: जी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो है बहुत अति आवश्यक है। भेदभाव विरोधी कानून रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तथा तक पहुंच में मौजूद असमानताओं को दूर करते हैं, जिससे एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज का निर्माण होता है।
1: हाँ, तो मेरे ख्याल से सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां हैं ये, है ना।
0: जी
1: सकारात्मक कार्रवाई उपायों का उद्देश्य उन ऐतिहासिक अन्यायों और व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करना है जिनका सामना अल्पसंख्यकों को करना पड़ता है। ये नीतियां राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। इन पहलों का लक्ष्य सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना और संस्थाओं में विविधता बढ़ाना है। विधायी प्रक्रियाओं में अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत के लिए क्या रणनीतियां हैं?
0: अगर हम इसकी बात करें तो गठबंधन निर्माण और सहयोग, जैसे हम जब गठबंधन निर्माण और सहयोग की बात करें तो उसमें अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाले जो समूह होते हैं, नागरिक अधिकार संगठन होते हैं, श्रमिक संघों और सामाजिक न्याय आंदोलनों सहित अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और विधायी परिणामों को प्रभावित करते हैं। गठबंधन निर्माण से वकालत के प्रयास मजबूत होते हैं, एकजुटता बढ़ती है और नीतिगत सुधारों के लिए समर्थन जुटाया जा सकता है। पैरवी और नीतिगत समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो पैरवी संगठन नीति निर्माताओं की निर्माताओं को शिक्षित करने, कानूनों का मसौदा तैयार करने और अल्पसंख्यक अधिकारों को बढ़ावा देने वाले नीतिगत परिवर्तनों की वकालत करने के लिए पैरवी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। प्रभावी पैरवी रणनीतियों में अनुसंधान करना, जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाना और निर्वाचित अधिकारियों और सरकारी एजेंसियां जैसे होती हैं उनके साथ सीधे पैरवी करना शामिल है।
1: तो निसार भाई, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जन जागरूकता अभियान अल्पसंख्यकों के लिए किस प्रकार से करे जा सकते हैं?
2: अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाना, आम सहमति बनाने, जन समर्थन जुटाने और जनमन को शिक्षित करने देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वकालत समूह जनता को शिक्षित करने, रूढ़ियों को चुनौती देने और सहानुभूति एवं समझ को बढ़ावा देने के लिए मीडिया अभियान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जन और सामुदायिक संपर्क पहलों का उपयोग करते हैं।
1: हाँ, तो सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज को जागरूक करके जगह जगह उनके अल्पसंख्यकों को उनके कानूनी अधिकार बताना, ये एक सामाजिक संस्थाएं और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना।
2: जी हाँ, प्राइवेट संस्थाएं चलाते हैं हम लोग तो वो इसी
1: हाँ,
2: उसमें
1: एनजीओ
2: बताते
1: वगैरह
2: हैं।
1: जो होती हैं तो इसी
2: जी
1: तरीके
2: जी
1: से वो बताती हैं ना। तो प्रियदर्शनी जी, मैं पूछना चाहूंगा अल्पसंख्यक अधिकारों पर विधायी पहलों का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अगर वृद्धि होती है और जैसे हम बात कर रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और निर्वाचन क्षेत्र सुधार, जैसे चुनावी सुधारों को बढ़ावा देना वाली विधायी उपाय निर्वाचित पदों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हैं। नीति निर्माताओं में विविधता बढ़ाने से अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया और विविध समुदायों के हितों की प्रतिबिंबित करने वाली नीतियां बनाने में मदद मिलती है।
1: तो इसका अर्थ यह हुआ कि कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना है ना।
0: जी
1: भेदभाव विरोधी कानूनों और घृणा अपराध संबंधी कानूनों को लागू करने और उनका प्रभावी ढंग से पालन करने में से अल्पसंख्यकों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगती है क्योंकि समाज में वैमनस्य फैलता है इससे, और भेदभाव के जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय मिलता है। कानूनी सुरक्षा सहिष्णुता, विविधता के प्रति सम्मान और सामाजिक न्याय के माहौल को बढ़ावा देने में योगदान मिलता है। तो प्रदर्शनी जी, अंत में ये पूछना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों का उत्थान किस प्रकार से हो?
0: जैसे हमने अभी संवैधानिक आधार पे बताया था कि जैसे 25 से 30 25 से 28 उनके

0: धार्मिक स्वतंत्रता उनको प्रदान की जानी चाहिए, और 29-37 उनकी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में बात की जानी चाहिए, और बाकी उनके जो 350A अनुच्छेद, 350B मातृभाषा में शिक्षा और भाषी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो प्रदान किया गया है संविधान में, उनके लिए उनको प्रदान कराना चाहिए। जैसे अब संस्थागत ढांचे की बात करें तो राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, इसके जो उपाय हैं, जैसे शिक्षा जो हम प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में सुनते हैं जानते हैं जो बच्चों के लिए दी जाती है उनके शिक्षा के लिए, तो इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उन अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को। उच्च शिक्षा हेतु मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये सब चलाने होते हैं तभी इनका उत्थान जो है इस माध्यम से संपूर्ण होगा। रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं,
1: जी
0: उद्यमिता सहायता और लोन प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, आवास योजनाएं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जैसे नंदा गौरा योजना उत्तराखंड में चलती है, राजनीतिक भागीदारी जैसे पंचायत नगर निकायों में प्रतिनिधित्व, आयोगों और समितियों में सदस्यता इनको प्रदान करनी चाहिए। तो इनके उत्थान के लिए हम हर संभव जो है राज्य या केंद्र सरकार अपना कदम उठा सकती है। अब मैं आखिर में बस यही बात कहना चाहूंगी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा केवल संवैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की शर्त भी है।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने प्रदान करी और मुझे लगता है कि श्रोता भी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। तो आप लोग कार्यक्रम में पधारे तो प्रदर्शनी जी आपका और निसार भाई आपका, आप दोनों का धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद सर आपका।
1: तो मित्रों मिलते हैं अगले जनमंच में और नए मुद्दों के साथ, आपके साथ फिर होंगे हम। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आवाज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, सलिल चौधरी का संगीत था। आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल, सलिल चौधरी की बनाई थी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
6: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
5: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
6: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय।

0: हाफ टिकट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था सलिल चौधरी का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: झुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में अगला गीत, शैलेंद्र के बोल, संगीतकार सलिल चौधरी, फिल्म का नाम 2 बीघा जमीन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत लाल बत्ती फिल्म से। मन्ना डे की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। लेके समाज का ये

इसमें सवार कोई प्यार का भिखारी, ख्वाबों की दुल्हन साथ बिचारी, ओ बाबू प्यार के फरियादी, कर ले शादी है।

लाल बत्ती फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको सबसे पहले बताएं कि हमारे टेलीपारा बिलासपुर से एक श्रोता है रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। इन्होंने हमें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहुत ही सुंदर सी राखी बनाकर पत्र भेजा है। बहुत ही सुंदर पत्र है ये। इन शुभकामनाओं के साथ हमने ये पत्र यहाँ इस कार्यक्रम में आज आपको बताने के लिए शामिल कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह पत्र भेजने के लिए, और आपको भी रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। आजीवन

नमन का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, कुदरत है फिल्म का नाम। और भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं जिनकी ये फरमाइश है, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, और ये नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसके साथ ही जम्मन रेकवार, मूलचंद्र रेकवार, मनसुख रेकवार, लालचंद्र रेकवार और सरमन रेकवार, ग्राम गड़िम लहरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे इंदौर की एक श्रोता है सृष्टि उपाध्याय, ये गीत सुनना चाहते हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आशियाना फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, साथ ही महेंद्र कपूर ने। योगेश के बोल हैं और इस गीत की फरमाइश की है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद और सुनील प्रसाद ने, साथ ही नरोत्तम गोर लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, तिवरता छत्तीसगढ़ से अमृत लाल अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रुति, विवेक और विवान अग्रवाल।

अग्रवाल ने। और साथ ही एडवोकेट बारिस अली खान, मोहम्मद दानिश, शहनाज खान, समीर अहमद और सबा ये सुनना चाहते हैं लखनऊ से ये गीत।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरि अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुरोशे, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशे। साथ ही फरमाइश करता है, उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामटकर, ज्योति

भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुरोशे, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशे। साथ ही फरमाइश करता है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामटकर, ज्योति और चेतन शामटकर, साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश, मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा, सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथी घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने लिया है और महेंद्र कपूर की आवाज में नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन का, साथ ही श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई गीताबा, धर्मराज करणराज सिसोदिया परिवार, और किशोर गुप्ता दस्तूर नगर छत्री तालाब रोड अमरावती से, और साथ ही रविकांत गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता और आशीष साथी सुप्रिया ने हमें फरमाइश भेजी है मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश की है हमारे श्रोता जिन्होंने भाटापाड़ा से हमें ये पत्र लिखा है, हरमिंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, त्रिशमन कौर चावला और गुरु फतेह सिंह, साथ ही लक्ष्मण बागवानी, श्रीमती विमला बागवानी, श्रीमती दिशा बागवानी, ये श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साथ ही मास्टर हर्ष व खुशी वाधवानी और शंकर नगर दुर्ग से मनिक सिंह बैस, कावेरी वनिता, लल्ली लेखमणि बैस और साथ ही ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचित और कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करड़ा सिरोड रिसोर्ट से कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख, ये गीत सुनना चाह रहे हैं संबंध फिल्म का, आशा भोसले की आवाज में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाएंगे हम। पत्र लिखा है प्रकाश दादा जैन, सूरज संगीता जैन और पीआर जैन ने, साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण आशा नारंग और सुरेश नारंग ने, और ग्राम सालियाखेड़ी आमर मालवा आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने, मैसवाड़ी मलकापुर से।

शत्रुघ्न धाड़ी वाल्मीक नीना जी स्वप्निल और अजय स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने ये गीत सुनना चाहते हैं प्यार किए जा फिल्म का लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में सहयोग चंचल वर्मा और आकांक्षा विश्वकर्मा का था, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे आंख की किरकिरी। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उच्चृंखल रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी। हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
2: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
3: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की माँ अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई।

0: अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी, लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
1: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगी।
0: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ।
1: लेकिन आज इस मौसम में?
0: नहीं नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
1: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया, कपड़े यथास्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूँ। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
0: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
1: हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को माँ के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
0: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
1: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
2: अरे महेंदा, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
1: हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
0: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
1: नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
0: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
1: अच्छा,
0: कुछ आराम मिल रहा है?
2: हाँ। अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टेल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा।
0: हम मूर्ख स्त्रियां ऐसे क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा।
2: ठीक तो है। अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
2: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सर दर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं, कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई?
2: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
1: अर्थात
2: मेरे जैसे आदमी को, जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
1: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
2: वो तो अपना गुण न होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक तेवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है, अरे कुछ दे दे। हम जाते हैं।
2: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल दी जाती हैं, किंतु महेंद्र के साथ नकद कारोबार होता है।
1: बिहारी, ये तो क्या पक रहा है।
2: ठीक है, मैं चलता हूं।
0: अरे रे रे रे,

0: आप निराश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ।
1: महिंदा, तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
2: पहेली मत बुझाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
1: साफ ही कहूंगा। महिंदा, विनोदनी तुम्हें जानबूझकर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
2: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
1: ठीक है, मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तू हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है जी, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न बोलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया। इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो, पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
2: चुन्नी चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो। चुन्नी
3: नहीं ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
2: चुन्नी मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
3: सुनो हमारी एक प्रार्थना है।
2: कहो।
3: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे।
2: और तुम भी
3: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैस में जाकर रहेंगी, दिखाना चाहते हैं कि मेरी परवाह नहीं करती। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही बाधा करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं क्या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? पर चाहे जिस कारण भी हो, चलने के लिए क्या चलाने के लिए, मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ जाएंगे वो? उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे।

0: उन्हें गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्या उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिखो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तो दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया है?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी, तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
2: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
0: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो,
1: इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज सब चिंताओं के बीच मुझे बेथती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बहकर आई हूं, बहकर चली जाती।
2: ये चिट्ठी, समझा, आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए, और अब से मैं विनोद

0: यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
1: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
2: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
1: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी, लोग क्या कहेंगे।
2: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो, किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
3: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
0: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है, वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
3: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, वो, हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
0: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ।
4: क्या है बेटे?
0: माँ, बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
4: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
5: महिंदा, महिंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते।
0: मैं नहीं जा सकूंगा।
5: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा।
0: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
5: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
1: लाला जी, लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
5: ना ना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चलती हूं।
1: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
6: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया, पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा। लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदारवाणी फिर कब सुनूंगी। एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो।

0: तुम्हारी विनोद भाभी।
1: विनोद की चिट्ठी लेकर दुर्बान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दुर्बान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उसे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद ने के मन की गति किस ओर है। है तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा। मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा। व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है। मैं जा रहा हूं।
0: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है? समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।

0: बेटी, देख रही हूं कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा, तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहां है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेल खाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: अच्छा, बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो?
1: जी, छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
0: अरे आशा, तू बेटी, महेंद्र तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
3: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
0: हे भगवान,

0: भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: उनकी बात मुझसे न पूछो।
0: अरे पता तो, क्या बात है?
1: वो मैं न बता सकूंगी।
0: बेटी बेटी सुन दो, सुन दो चुन्नी। ये भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी चुन्नी बेटी, लाल टेन लेकर नीचे जा और दरवाजा खोल दे।
1: अच्छा मासी, खोलती हूँ।
2: हाँ भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी।
1: मासी मासी मासी मासी,
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। 100.4 FM आकाशवाणी बरेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। साथियों, आपको तो पता ही है कि रोज हम अपने इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ते हैं एक नए विषय के साथ। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम का विषय है वो आपके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी जीवन में आपके कौन से ऐसे शिक्षक थे जो आपके सबसे प्रिय रहे हैं और क्यों। तो देखते हैं प्रोग्राम में हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
4: जी सर जी नमस्ते, और सर मेरी तरफ से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जी
3: आपको भी, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
4: सर जी मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश अग्रवाल बात कर रहा हूँ। सर
3: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या करते हैं आप?
4: जी सर मैं बिजली ऑफिस में हूँ, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ सर जी।
3: जी बहुत अच्छा, तो ये बताइए कैसा मौसम है आपके यहाँ इस समय?
4: जी सर हमारे यहाँ मौसम सर ऐसा लग रहा है सर सुबह से कि बारिश हो सकती है, बहुत खुशनुमा मौसम, मतलब धूप निकली सर हमारे घर पे आज तो।
3: यानी कि अच्छा मौसम आज है।
4: मौसम अच्छा सर, और ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है आज।
3: तो ये बताइए कि कौन से आपके ऐसे शिक्षक रहे हैं जो आपको सबसे प्रिय रहे हैं, आपको सबसे अच्छे लगते हैं?
4: जी जी बिल्कुल सर जी, मैं जब 10th क्लास में था सर, उस समय हमारे गुलाब सर थे सर, तो वो सर बहुत ही अच्छे हमारे शिक्षक थे सर जी, मतलब कि हमें वो पढ़ाते पढ़ाते हंसाते थे भी, मारते थे भी, और उतना प्यार भी करते थे सर
3: जी।
4: और यदि सर हम यदि कहीं भी गए घूमने के लिए सर जी, उन्होंने हमको रास्ते में देख लिया सर जी, तो हमारी दूसरे दिन स्कूल में क्लास में बहुत किटी करते थे सर हमारी, तो सर डर लगता था सर उनको देख कर कि हमारे सर हमको कहीं रास्ते में न मिल जाए। हमें कहीं बाइक से जा रहा थी सर, हमने चश्मा लगाया सर आंख में, और यदि उनने देख लिए तो सर वो हमको स्कूल में चश्मा उस दिन कह के चिढ़ाते थे।
3: तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे?
4: जी सर आप मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है अनाड़ी, बोल रहेंगे सर जी, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है।
3: हम आपको सुनवा

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार,
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, करेला बरेली।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन में आपके ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जो आपको सबसे प्रिय लगते थे?
1: सर हमारे लिए विद्यार्थी जब हम पढ़ते थे
0: जी
1: सर, एक मायाराम नाम के मास्टर थे, वो
0: जी
1: मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे
0: जी
1: और बहुत प्यार से समझाते थे, तो इसीलिए हमें मैथ की कोई जानकारी ज्यादा ही है।
0: अच्छा,
1: हाँ सर,
0: तो
1: बहुत ही प्यार से बढ़िया करके पढ़ाते थे।
0: जी शिक्षक वास्तव में हमारे जीवन को संवारने का काम करते हैं और हमें सिखाते हैं। तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आपको सुनवाएं हम?
1: सर मोहब्बत फिल्म है और गुलों के रंग सितारों की रोशनी दे दूं, अगर कहूँ तो मैं अपनी शायरी दे दूं, ये बोल है मोहम्मद रफी के बारे में।
0: हम आपको

0: आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय यमन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा
0: स्वागत
1: हूँ।
0: है आपका कार्यक्रम में। कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: मौसम तो अभी बरसात हो रही है जी।
0: बरसात हो रही है, यानी कि मौसम अच्छा है। तो क्या करते हैं आप?
1: सर हम खेती बाड़ी का काम करते हैं।
0: तो खेती में इस समय क्या लगा हुआ है?
1: मैं धान लगी है और अपने मक्का है और सोयाबीन है सर,
0: जी,
1: तो तीनों चीजें लगाई हुई है।
0: तो फसल कैसी है?
1: सर राम जी कृपा से अभी तो बढ़िया है, आगे देखते हैं क्या होगा। जी
0: तो आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: सर हम आकाशवाणी बरेली को सुनते हैं, फोन प्रोग्राम हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, बाकी सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं, खेती बाड़ी वाले भी फरमाइशी वाले भी।
0: तो ये बताइए, विद्यार्थी जीवन में आपके ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं जो आपको सबसे प्रिय लगते हों, और ऐसा क्यों?
1: सर जी हमारे सबसे प्रिय शिक्षक थे एक रघुवंशी जी, तो वो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे और
0: जी
1: उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। मतलब एक बार में चीज ना आ रही हो समझ में तो आप 4 बार ही पूछेंगे, जब भी वो हमको अच्छे से समझा देते थे।
0: जी
1: उनकी बात हमको ये बहुत अच्छी लगती थी, हमको नहीं कोई भी स्टूडेंट हो वो उनको सबको बता देते थे। आज वो कहीं और चले गए हैं लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे मन में रह गई। जी
0: जी
1: सर सभी दोस्तों को शिक्षक दिवस की ढेरों ढेरों सर।
0: आपको भी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: सर कोई भी सुनवा दी, लता जी का।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: थैंक यू।

0: आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर। सर
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसा मौसम है आपके हैदराबाद में?
1: जी, धूप खिली हुई है और अब की बार बारिश ही नहीं हुई है तेलंगाना में।
0: अच्छा, बारिश नहीं हुई है इधर?
1: जी
0: तो इस
1: बिल्कुल
0: समय
1: भी नहीं हुई
0: काफी
1: है।
0: बारिश है और हम चाहेंगे कि हमारी ओर से बारिश आपकी ओर भी पहुंचे।
1: जी थैंक यू सर। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी भी हो रही है। जी
0: जी, ये बताइए जो आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: जी सर, कार्यक्रम का विषय बहुत अच्छा है और मेरे सबसे पहले टीचर
0: जी
1: मेरे एक आरती मैम थी।
0: जी
1: जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था, उनको वो बच्चों को समझाती बहुत अच्छा थी
0: जी
1: और प्यार मोहब्बत से बात भी करती थी और बच्चों के लिए टॉफी डेली सुबह टॉफी चॉकलेट लेके आती थी और काफी अच्छे से समझाती थी उनको।
0: जी इसलिए वो आपको सबसे अच्छी लगती।
1: जी, उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। जी थोड़ा मतलब बीच बीच में हंसी मजाक भी करती थी और पढ़ाने के टाइम एकदम
0: जी
1: परफेक्ट उन्होंने बात बताती थी। वो आज भी मेरे जीवन में काम आ रही है सर।
0: तो
1: जी
0: इसीलिए
1: एक्चुअली आपको
0: शिक्षक
1: बताना
0: दिवस पर
1: चाहता हूँ,
0: आप उन्हें याद कर रहे हैं।
1: जी सर आपको बताना चाहता हूँ, मैं छोटे से गांव राजागढ़ में अहमदपुर बाराबंकी जिले का रहने वाला हूँ सर,
0: जी
1: और आपका नियमित श्रोता हूँ सर। न्यूज ऑन एयर ऐप पे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ यहाँ हैदराबाद तेलंगाना में।
0: बहुत अच्छा लगता है हमें भी जब इतने दूर दराज से हमारे श्रोता हमें सुनते हैं और हमसे जुड़ते हैं। तो कौन सा गीत आज आपको प्रोग्राम में सुनवाएं हम?
1: चांद सी महबूबा हो ऐसा मैंने कब सोचा था वाला सुना दो।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत 100.4।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भौगा बाजार से बोल रहे हैं बाबू भाई।
0: ये कहाँ पर
1: और
0: पड़ता है?
1: भौगा बाजार लगता है भोतार से करीब 14 किलोमीटर इधर पश्चिम में।
0: जी
1: हाँ, हमें सबसे अच्छे एक रविंद्र कुमार मास्टर साहब थे, वो अच्छे लगते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, वो प्यार और मोहब्बत से पढ़ाते थे और वो ही अच्छे लगते थे, क्योंकि वो बच्चों को ज्यादा प्यार से पकड़ते थे।
0: तो कौन सा गीत आपको प्रोग्राम में सुनवाया जाए?
1: हमारे लिए आप आए फिल्म जंजीर और मिल गए वो।

0: बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं ग्राम कतरा कला से।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। तो ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन में आपके ऐसे कौन से सबसे प्रिय शिक्षक रहे हैं और क्यों, जो आपको सबसे प्रिय लगते थे?
0: जी हम जब पढ़ने जाते थे तो एक हमारे शिक्षक थे भुता के
1: जी,
0: तो वो हमें बहुत प्यार से पढ़ाते थे, समझाते थे, कहते थे बंटू भाई ये सवाल ऐसे होगा आप समझिए, और मतलब जो विद्यार्थी जो है हमें मालिकर बनाया तो हम उनको भी समझाते थे, बोले इनको भी समझाया करो।
1: अच्छा,
0: वो हमें सब बहुत अच्छे लगते थे।
1: अच्छा, तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आप सुनेंगे?
0: सुनवा दीजिए मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत

0: नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मास्टर आलिश्याम बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। बढ़िया
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: है सर, आप कैसे हैं सर?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये बताइए मास्टर साहब, आप तो खुद ही शिक्षक हैं, और
1: जी
0: आपका
1: सर।
0: जब विद्यार्थी जीवन था तो कौन से आपके ऐसे शिक्षक थे जो आपको सबसे प्रिय लगते थे, और ऐसा क्यों था?
1: सबसे अधिक जो शिक्षक थे हमारे वो गणित के सर थे श्री एच के मिश्रा जी।
0: जी
1: वो हमें सबसे अच्छे लगते थे और उनका पढ़ाने का ढंग था और व्यवहार था, वो हमेशा बच्चों को मोटिवेशन करते रहते थे, इसलिए
0: जी
1: उनका बहुत हमें अच्छा लगता था।
0: जी तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आपको सुनवाएं हम?
1: सर गीत से पहले मैं चार लाइन कहना चाहूंगा। गुरु जी सबसे पहले मैं समस्त टीचर्स को जो है टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सर,
0: जी आपको भी।
1: और उनके सम्मान में चार लाइन में कहना चाहूँ।
0: जी
1: जिनकी छाया में ज्ञान का प्रकाश मिलता है,
0: जी
1: जिनके हौसलों से परिंदों को आकाश मिलता है,
0: जी
1: जो अज्ञानता और अंधकार का दोष

0: चाहते हैं, ऐसे शिक्षकों को हम अपना शीश झुकाते हैं, ऐसे शिक्षकों को हम अपना शीश झुकाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए प्रोग्राम में?
0: फिल्म नाम है सूरबीर
1: जी।
0: हाय क्या पूछते हो, दर्द किधर होता है।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये आपकी बात आगा।

0: स्वागत नमस्कार। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में आपका
1: मैं
0: स्वागत
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा हूँ।
0: कौन
1: तो ये
0: कहाँ से बोल
1: बताइए
0: रहे हैं?
1: मास्टर साहब, आप
2: हेलो, नमस्कार सर
0: नमस्कार।
2: जी। मैं मंसूरी क्लब ग्राम चोरा तहसील मलक जिला रामपुर से शेखावत हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो ये
2: जी
0: बताइए कि आपके ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं आपके विद्यार्थी जीवन में जो आपको
2: जी
0: सबसे प्रिय लगते थे और
2: जी
0: ऐसा क्यों
2: हमारे
0: था?
2: मैं सर, जब हम क्लास सिक्स में गए थे तो
0: जी
2: हमारे मतलब जो सर थे टीचर, वो मैथ के बहुत प्रिय रहे हैं
0: जी
2: सर जी। पढ़ाई में भी मतलब अच्छा था हिसाब किताब, और वैसे भी मतलब वो जैसे हंसी दिलाना और शक्ति भी बहुत कर रही थी
0: जी
2: जी।
0: तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे?
2: सर फिल्म का नाम है दीवाना, वो गाने के बोले तेरे दर पे दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा
0: हम आपको सुनवा रहे
2: जी।
0: हैं
2: कुछ दोस्त आगे जागे
0: आपकी
2: सुनो
0: पसंद का ये गीत। जी बिल्कुल।
2: जी। छोटा भाई तालिब मंसूरी, तौफीक मंसूरी, और ये लाल मोहम्मद अंसारी जी हैं और सहनपुर अंसारी जी हैं बरेली। ये सर
0: आप सबको भेज रहे हैं हम।

अपने इस प्रोग्राम में हम आपकी फोन कॉल्स के अलावा आपके कुछ चुनिंदा कमेंट भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने हमें कमेंट किए होंगे और उन कमेंटों की ओर हम चलते हैं। शाहनूर नूर अंसारी का कमेंट हमारे पास है हर हरपुर मटकली से। शाहनूर नूर अंसारी लिखते हैं कि जब मैं छात्र था उस वक्त मेरे घर के पास रहने वाले मेरे गुरुजी अफजाल अहमद, जो रिश्ते में मेरे दादा लगते हैं, मुझे पढ़ाया करते थे। उनके पास बैठकर पढ़ना मेरे लिए सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं था बल्कि जिंदगी समझने का एक खूबसूरत सफर था। और गंगा सिंह रावत लिखते हैं कि अब मैं खुद शिक्षक हूं। विद्यार्थी जीवन में मेरे सबसे प्रिय शिक्षक ओपी चौहान सर रहे हैं, वे मेरे भूगोल विषय के शिक्षक थे। विष्णु टेलर का कमेंट हमारे पास है, ये लिखते हैं कि यह सवाल सुनते ही शायद हम सभी के मन में अपने स्कूल के दिनों की कुछ यादें ताजा हो जाती हैं। जो कोई शिक्षक अपनी प्यारी मुस्कान के कारण याद आता है तो कोई अपनी सख्ती के कारण हमें याद आता है। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर से जमुना प्रसाद का कमेंट है कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा किसी से भी प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने शायद विषय को ठीक से समझा नहीं और ऐसे ही बिना पढ़े ये कमेंट किया है। तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पहले पोस्ट को पढ़ लिया करें, विषय को समझ लिया करें, उसके बाद उस पर कमेंट किया करें। और अगला कमेंट हमारे पास है, इसे भेजने वाले हैं राम बाबू मिश्रा। ये लिखते हैं, जहां शिक्षा और शिक्षक की बात हो तो हमारे सबसे पहले शिक्षक अली अहमद थे, जिनकी शिक्षा इतनी उत्तम व पिटाई भी उतनी ही उत्तम थी। कक्षा एक व कक्षा पाँच तक वह पढ़ाया उन्होंने और हम तो पिटाई के कारण स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। लाल मोहम्मद अंसारी का कमेंट है हमारे पास, इन्होंने भी हमारा जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से पढ़े बिना ही कमेंट कर दिया है। इन्होंने लिखा है कि जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन हमने आपसे जो कार्यक्रम में प्रश्न किया

था वो ये था कि आपके कौन से शिक्षक विद्यार्थी जीवन के, यानी कि जब आप पढ़ते थे तो कौन से शिक्षक आपके सबसे प्रिय रहे हैं और ऐसा क्यों है, वो कारण भी लिखिए। अनोखे लाल जी ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है। तो ये थे हमारे आप श्रोताओं के कमेंट, और श्रोता भी जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में। उनको जाना है आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के पोस्ट उन्हें मिलेगी आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर, और उस पोस्ट पर उन्हें कमेंट करना है।

0: जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: और कार्यक्रम में ये कमेंट है हमारे पास वारिस अली खान का। ये लिखते हैं कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में राम सजीवन भट्ट सर मेरे प्रिय गुरु रहे हैं। मैंने किसी तरह से तो हाई स्कूल पास कर लिया था, लेकिन मेरे मैथ्स और साइंस में मार्क्स बहुत कम थे। जब मैंने इंटर में पीसीएम ग्रुप ले लिया, मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स की समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्होंने अलग से पढ़ाया और मेरी मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई। ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान हैं और इनके साथ हैं शहनवाज खान। शहनाज खान,

अभी आप आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पांच बजकर 5 मिनट पर लेकर आएंगे आपको भजन संध्या कार्यक्रम। हेलो बरेली कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। युववाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर। आज की बात होगी प्राकृतिक खेती पर, साथ ही होगा विशेष सेगमेंट आकाशवाणी गांव में किसान के साथ। ग्राम जगत कार्यक्रम सुन सकते हैं आप शाम 7 बजे, चर्चा होगी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। और हमारी कल की सभा प्रतिदिन की तरह शुरू होगी प्रातः 5:53 पर। सुबह में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम 8:15 से, हम आपके साथ जुड़ेंगे। कार्यक्रम अंकुर आप सुनेंगे 8:15 पर। इसके बाद आप 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, आपका पत्र मिला कार्यक्रम कल 11:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। अनुरोध गीत सुनिएगा कल अपराह्न 1 बजे। रसरंग कार्यक्रम सुन सकेंगे कल आप अपराह्न 2 बजे।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 4 बजे। भजन संध्या कार्यक्रम शाम 5:05 पर प्रस्तुत किया जाएगा। मन भावन कार्यक्रम होगा कल शाम 5:30 पर। श्रोता मंच कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 5:45 पर। युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6 बजे। कल शाम 6:30 पर सुनिएगा ग्राम जगत कार्यक्रम। और जनमंच कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 7:31।

तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के प्रसारण और भजन संध्या कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आपने कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव मनाया और आप तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा में उनका जन्म होने के बाद वसुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा जी के यहाँ छोड़ आए थे। तो आज लेंगे नंदोत्सव के कुछ भजनों का आनंद, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं गजानन गणेश को वंदन।

तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्हे पालकी, नंद घर आनंद भयो।

कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आनंद कंद के जन्म दिवस पर जो उत्सव हुआ उसकी जो शोभा थी वो बिल्कुल अलग ही थी।

0: आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर भजन संध्या कार्यक्रम।
1: हरि भोले तजी अपना कैलाश नंद के द्वारे आए हैं।
0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर और उनके दर्शन के लिए आशुतोष शिवशंकर भी

इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप भजन संध्या कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हेलो बरेली कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार रोचना मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कल आपने मनाई है कृष्ण जन्माष्टमी, और आज भी आप बहुत सारे पकवानों का आनंद जो आपने कल बनाए होंगे उनका आप ले रहे होंगे, क्योंकि लड्डू, कतली, हरीरा, बहुत सी चीजें हम मनाते हैं। 56 भोग ईश्वर को लगाते हैं, अपने नारायण हरि और कृष्ण जी को लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, वो तो जगत को खिला रहे हैं, हम उन्हें क्या 56 भोग लगाएंगे। सही बात तो ये, उनके बहाने से हम अपना इंतजाम कर लेते हैं और हम खाते हैं। और बातें तो आपसे बहुत सी करेंगे, सबसे पहले आज सुनते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर और लकी कॉलर कौन है हमारे साथ आज। हेलो बरेली।
1: बात करे ना कर सके श्री कृष्ण करे सो होए, तीनों लोक नौ खंड में श्री कृष्ण से बड़ा ना कोई। नमस्कार मैम जी।
0: नमस्ते जी, जग के नाथ है वो जी।
1: हाँ जी।
0: और ये बताइए, आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया है, क्या नाम है आपका और आपने हमें कहाँ से फोन किया है?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुड़िया, तहसील नवाबगंज, चौर बरेली से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी। और आप कैसे हैं? कल का त्योहार कैसा रहा?
0: सब लोग बढ़िया हैं आकाशवाणी परिवार में, और सबका त्योहार भी आकाशवाणी परिवार में बहुत अच्छा रहा। तो आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया है, राजेंद्र जी क्या करते हैं आप?
1: मैम जी अभी तो हम घर पे हैं, अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि कल त्योहार है, अभी त्योहार मनाया है और हमारे कुड़िया में मेला भी लगा हुआ है, अभी तो मेला तो चल रहा है, मेला देखेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: आप भी आइएगा
0: जी। बिल्कुल। और ये बताइए, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे आज?
1: हाँ जी, मूवी का नाम है आशिक मस्तानी, इसमें सॉन्ग है प्यार क्या होता है
0: जी।
1: हाँ जी, और कुछ साथियों के नाम भी रहेंगे मैम जी।
0: जी लीजिए।
1: हाँ जी, सबसे पहले शाहरुनूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, सोनू गौतम जी हैं, सुनील पवार जी हैं, गंगा सावंकर जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं, साथ में बरेली पूरा स्टाफ को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम जी।
0: जी।

0: और श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं अगले कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर। हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली, नमस्ते। मेरा
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: नाम है राम भरोसे। मैंने
0: जी राम भरोसे जी, कहाँ से फोन किया है आपने आज?
1: करा है जिला रामपुर तहसील सावा डाकखाना कर रहे थी, सावा के पास में है सरकरा।
0: जी, तो क्या करते हैं आप?
1: मैं हलवाईगिरी का काम करता हूँ दिल्ली में, और ये है इस समय तो मैं अब यहाँ गांव में हूँ, खेती किसानी करता हूँ मैं इस समय।
0: जी, तो इस समय खेतों में क्या लगा रखा है आपने अपने?
1: इस समय है धान
0: अच्छा,
1: और गन्ना है इस समय। जी
0: और बारिश भी अच्छी हो रही है?
1: हाँ, बारिश भी टाइम से ही हो रही है,
0: जी
1: पानी
0: जी
1: लगाने की जरूरत ही नहीं है अब
0: जी
1: इस समय।
0: जी हाँ, किसान के लिए ये भी एक सहूलियत है।
1: हाँ,
0: जी
1: मैं इस समय फूल आ गया है, वो नुकसान है इस समय
0: जी जी
1: धानों
0: बिल्कुल।
1: में।
0: और ये बताइए, आज आपने फोन किया है, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: गैर फिल्म का है, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया।
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन किया है, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: गैर फिल्म का है, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया।
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो बरेली, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से और 100.4 FM पर। अब सुनते हैं इस समय हमारे साथ कौन से कॉलर हैं लाइन पर। हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: जिला बदायूं कस्बा दत्तागंज से मोहम्मद आसिफ बात कर रहे हैं।
0: जी आसिफ जी, क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई करते हैं मैम।
0: कौन से स्टैंडर्ड में?
1: 7वीं क्लास में।
0: अच्छा, तो अभी आप छोटे हैं, 7वीं क्लास में हैं आप, तो 7th क्लास में। तो
1: जी,
0: बताइए, पढ़ने में खूब मतलब मन लगता है आपका?
1: जी बहुत मन लगता है पढ़ने में।
0: अच्छी बात है, बहुत मन लगता है, आपने ये बात कही। और
1: रेडियो सुनने भी बहुत मन लगता है।
0: जी, और रेडियो भी सुना कीजिए।

0: जी, और ऐसा नहीं है कि बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, वो भी हमें साथ साथ सीखनी चाहिए। आज आपने कार्यक्रम में फोन किया है, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: आज हम सुनेंगे हातिम ताई मूवी की कव्वाली है, मेरे आका मेरे मालिक है मेरे परवरदिगार।
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये कव्वाली।

0: हेलो बरेली
1: जी, क्या नाम है आपका?
0: मैं राम प्रसाद सारा बोल रहा हूँ, सबका धोनी हार्डमैन के पास से।
1: जी, क्या करते हैं आप राम प्रसाद जी?
0: मैं मैडम नए पुराने हारमोनियम बनाता हूँ साहब।
1: अच्छा, हारमोनियम बनाते हैं आप?
0: हाँ साहब, हारमोनियम
1: जी
0: काम करता हूँ, कल बचपन से काम कर रहा हूँ अपने। हाँ,
1: जी तो ये आपका एक तरीके से पुश्तैनी काम होगा दादलात।
0: पहले मेरे मेरे बड़े भाई काम करते थे।
1: जी जी
0: हाँ, उसके बाद में हमने शुरू कर दिया काम।
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो राम प्रसाद जी, आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया है, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
0: कोई दोस्ती वाला गाना सुना देना साहब, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। हमारे
1: जी
0: फखरुद्दीन भाई हमें छोड़ के चले गए, हमें
1: जी
0: उनकी बहुत बहुत बहुत याद सता रही है, और हम काफी समय सुन रहे थे साहब,
1: जी
0: पुराने सुन रहे थे।
1: जी जी कोई नहीं राम प्रसाद जी, और ये तो संसार का नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, ठीक है ना जी? ये तो शाश्वत है कि जो आया है जाना है, ठीक है? तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं जी, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका
1: मैम मैं रामपुर से फिजा मलिक बात कर रही हूँ आपसे। मैम
0: जी? क्या करती हैं आप?
1: दरी का काम करती हूँ
0: तो ये
1: और
0: बता
1: आपके प्रोग्राम सुनती हूँ। आप बताइए कैसे हो आप।
0: जी, सब लोग बहुत अच्छे हैं आकाशवाणी परिवार में। ये बताइए, आप जरी का काम करती हैं, तो
1: जी
0: साथ साथ इसको जब ये जो इसमें जो सामान लगता है, दबका है, रेशम है, तो
1: जी
0: ये सब सामान आप लोग लेकर आते हैं या आपको जो करवाते वही देते हैं?
1: वही देते हैं मैम, जो करवाती हैं
0: अच्छा,
1: उनसे
0: आप
1: काम वही
0: सिर्फ
1: देती हूँ मैं, बस सिलाई करके देना होता है।
0: अच्छा आप सिर्फ अपना जो है, जो उसमें आप मेहनत आपकी होती है, वो आपको देते हैं बस। जी, बहुत अच्छी बात है। तो शबीना जी, ये जो जरी का काम आप करती हैं, ठीक है, तो ये आप तो करती हैं, और जब हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत होती है जी। तो ये बताइए, आज आपने कार्यक्रम में फोन किया है, कौन सी पसंद का गीत आप सुनेंगी
1: जी मैम, मूवी का नाम है जुदाई
0: जी?
1: और गाने के बोल हैं हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ।
0: अच्छा, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ जी।
1: जी
0: ये बताइए, आप कार्यक्रम में आपने फोन किया है आज, श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी?
1: मैम, मैं श्रोताओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा रेडियो से जुड़े सब लोग,
0: जी
1: उसमें क्योंकि मनोरंजन ही नहीं होता है, हमारे लिए ज्ञान होता है, सब
0: जी
1: चीज मिलती है हमें रेडियो से और
0: आपको सबसे अच्छा
1: जानकारी
0: कार्यक्रम कौन
1: मिलती
0: सा
1: है।
0: लगता है और क्यों लगता है, ये बताएं।
1: जी
0: आपको सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है और क्यों लगता है
1: मैम, मुझे तो आपका सबसे अच्छा कार्यक्रम आपका पत्र मिला हो गया, जो
0: जी?
1: आपकी पसंद है, मन भावन है, वही सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं मुझे।
0: जी।

अभी आप हेलो बरेली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी ठीक शाम के 6 बजा रही है और समय है कार्यक्रम युववाणी का। तो चलते हैं युववाणी कार्यक्रम की ओर।

हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। तो साथियों, आज भी मैं आपसे बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, आपको जानकारी भी देने वाली हूँ, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और आप बने हुए अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और साथियों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे। आज का दिन उन खास लोगों के नाम जिन्होंने हमें सिर्फ किताबों का इल्म नहीं दिया बल्कि जिंदगी को समझाने का तरीका भी सिखाया। जी हाँ, आज टीचर्स डे है। टीचर साथियों सिर्फ वो नहीं जो क्लासरूम में खड़े होकर हमें पढ़ाते हैं, बल्कि टीचर तो वो भी हैं जो हमारी गलती पर हमें समझाते हैं, हारने पर हौसला देते हैं, और जब हमें खुद पर यकीन नहीं होता तब भी कहते हैं कि तुम कर सकते हो। कभी टीचर की डांट बुरी लगती है, होमवर्क का प्रेशर भी लगता है, लेकिन वक्त बीतने के बाद समझ आता है कि उनकी हर डांट के पीछे हमारी बेहतरी छुपी थी। और जरा सोचिए साथियों, हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी कही हुई एक छोटी सी बात भी पूरी जिंदगी याद रह जाती है। तो आज अपने उस टीचर को जरूर याद कीजिए जिन्होंने आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं है बल्कि आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद की है। और अगर आपके कोई फेवरेट टीचर हैं तो हमें मैसेज करके उनका नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि आज का जो दिन है उनके नाम जिनके बिना हमारी कहानी शायद इतनी खूबसूरत ना होती। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द वंडरफुल टीचर्स। फिलहाल अभी एंजॉय कीजिए इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, टीचर्स डे तो आज है ही, इसी के साथ में आज है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। चैरिटी यानी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करना बिना किसी बदले की उम्मीद के। और चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता है दोस्तों, कभी किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी की फीस में मदद कर देना, किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना या किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थाम लेना भी एक तरह की चैरिटी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन यकीन मानिए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर्स डे पर तो आप अपने टीचर्स को थैंक यू बोलेंगे ही, और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी पर किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और खुशियां बांटने से दोगुनी हो जाती हैं। तो आप ये दोनों काम जरूर कीजिए। और अभी फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यार सा सॉन्ग, एंजॉय कीजिए।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और साथियों, अब प्रोग्राम में बारी है बहुत ही प्यारे सेगमेंट डांस बरेली डांस की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं डांस वाला सॉन्ग।

0: तो साथियों ये डांस वाला सॉन्ग तो आपने सुन लिया और एंजॉय भी कर लिया।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब सवाल का वक्त आ गया है और आज का सवाल हमने आपसे पूछा है कि सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर का हिस्सा है और इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, वेदराम, कैलाश, रिंकी, खुशबू आरोही, गंगा सिंह रावत, जॉन डी कैस्ट्रो, BI धाकड़, लाल मोहम्मद अंसारी और हमारे अन्य सभी साथी। और साथियों अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाश वाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
4: अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और लीजिए अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।

0: कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान बारे और किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनन बारे, सब भैया बहनों को आपके भैया सुरेंद्र
4: और आपके भैया धारा की
3: राम राम।
4: स्वागत है भैया बहनों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान बाड़ी में। और क्यों ना आपका बहुत बहुत स्वागत हो, क्योंकि आज दिन है शनिवार का। और सुरेंद्र भैया, आज के दिन हम होते हैं अपने भैया बहनों के गांव में, कार्यक्रम होता है किसान बाड़ी
3: गांव में किसानों के साथ। पहुंचेंगे तो भैया आज अपने भी किसी न किसी गांव में, लेकिन आप देख रहे हैं भैया कि मौसम को कैसे करवट है,
4: यही नहीं पता चलता है भैया कि किस जगह बारिश हो जाए।
3: हाँ, कोई भैया कभी धूप होगी, कभी तेज बारिश हो जाएगी। और आजकल है का भैया कारण ना कि जो हमारे भैया बहन है ना, उन्हें मौसम के विपरीत चल के खेती करना शुरू कर दी है।
4: हाँ, तो खैर ये तो बात है ही कि मौसम के विपरीत चल के भैया खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और जो दोहन हम अपने वातावरण का कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर तो हम लोगों के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। चाहे हम लोगों के ऊपर सही, हमारे पशुओं के ऊपर सही, बच्चों के ऊपर सही, या फिर हमारी फसलों के ऊपर सही।
3: लेकिन तो, भैया है का इसमें अगर हमारे भैया प्राकृतिक खेती करेंगे तो जा चीज को जरूर उन्हें लाभ मिलेगा।
4: बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम प्राकृतिक खेती करना शुरू कर देंगे तो हमें अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, और जो उत्पादन हमें मिलेगा ना वो खाने में भी सही होगा, और हमारे लिए स्वास्थ्य कर उत्पादन मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों का और हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
3: भैया अगर घर परिवार में सब स्वस्थ रहें तो जैसे अच्छी खुशी की बात कोई होती ना।
4: हाँ भैया,
3: लेकिन आजकल आपने देखी है कि हर घर परिवार में कोई शुगर को पेशेंट है, कैंसर की दिक्कत है, मतलब बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है आज।
4: ये सब बीमारियां इसलिए हैं कि हमारी जो फसलें हैं हम उनमें भरमार रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो रासायनिक उर्वरक किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जब हम अपने खेतों से उपज लेने के बाद उसका इस्तेमाल खान पान में करते हैं तब।
3: तो हम तो अपने किसान भाई बहन से यह कहेंगे कि अगर इन सब चीजों को बचाव करने हैं, ध्यान करने हैं, तो प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करना पड़ेगा।
4: जी, तो सुरेंद्र भैया ये तो प्राकृतिक खेती के संबंध में बातचीत रही। हमारे कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सवाल का, जो हम आज अपने किसान भाइयों से नहीं पूछ रहे हैं, या तो आप भूल रहे हैं। किसान भाई कहेंगे आज सवाल कौन सा है, तो आप सबसे पहले सवाल पूछ लीजिएगा कि कौन सा सवाल लेकर के आए हैं।
3: तो भैया बहन देर ना करो, निकाल लो अपनो कॉपी और कलम और लिख लो हमारो आज को सवाल। हमारो आज को सवाल है, धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है।
4: तो इस सवाल को जवाब आप लोग ढूंढ कर रखो, हम आपको अवश्य बताएंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग हमें कमेंट में इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। और अब देर न करते भैया आप चल रहे हैं क्षेत्र संकेत कार्यक्रम के लिए,
3: आकाशवाणी गाँव में किसानों के साथ।

0: किसान साथियों, आज आकाशवाणी बरेली से निकलकर झुमका चौराहे के रास्ते
1: हम और धारा भैया पहुंचे हैं गांव मीरापुर,
0: जो फतेहगंज पश्चिमी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। गांव तक सड़क है, काफी अच्छा गांव है, मकानात काफी बढ़िया बने हुए है, बिजली व्यवस्था है गांव में, खरंजा काफी अच्छा है, साफ सफाई काफी अच्छी है गांव में। और जैसे ही हमने गांव में भैया प्रवेश करो तो यहाँ पर गांव में जानवर भी काफी लोग पाल रहे हैं, खेतीबाड़ी के साधन भी काफी अच्छे हैं। अब देख रहे हैं हम कि चौपार पर कुछ भैया बहन बैठे हैं, अब इनसे बातचीत कर ले रहे हैं। किसान साथियों, राम राम।
2: राम राम भैया।
0: चाचा आपको क्या नाम है?
3: हमारा नाम योगेंद्र गंगवार।
0: आप गाँव में रहते?
3: इसी गाँव में रहते।
0: उम्र कितनी हुई?
3: उम्र हमारी 60 से ऊपर है।
0: पढ़ाई लिखाई करी है?
3: पढ़ाई लिखाई करी, हाई स्कूल फेल है।
0: 60 साल पहले की खेती में और आज की खेती में क्या अंतर देखो आपने?
3: पहले की खेती में बहुत, आज की खेती में बहुत अंतर है। पहले की खेती है इसी ही बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल, आज की खेती जो है वो तकनीक के हिसाब से है। बहुत फायदा है आज की खेती में,

0: सब कुछ व्यवस्था फिट है, मशीनरी से लेकर खाद बीज दवाई। पहले की खेती ऐसी खाद बीज मशीनरी कुछ नहीं थी, ऐसे ही खत्ता खुआरी करी खेतों में पहुंच गए और ऐसी करी आए चले आए।
1: पहले जो खेती आप करते हो गए तो हल बैल से
0: करते थे, मगर वो बात अब जो खेती हो रही है वो बात पहले वाली नहीं थी।
1: अच्छा, आपने रेड
0: हमने चलाया है। हाँ, रेड चलाया है, ऊंट से रेड चलाया है।
1: अच्छा, ऊंट से भी चलाया है।
0: हाँ, ऊंट से भी रेड चलाया
1: और
0: है।
1: बैल से भी चलता,
0: और बैल से भी चलता था।
1: तो कितनी सिंचाई लगभग एक दिन में हो जाती होगी?
0: एक दिन में 2 बीघा खेत भरा जाता पूरे दिन में।
1: पूरे दिन में 2 बीघा?
0: 2 बीघा खेत भर।
1: तो बड़ा कर्रे काम है पहले तो?
0: पहले के कर्रे काम थे, काफी कर्रे थे, अब कोई कर्रा काम नहीं है।
1: तो आज की सिंचाई में और बस सिंचाई में तो बहुत अंतर हुए?
0: हाँ, बहुत अंतर है। पहले की सिंचाई में और अब की सिंचाई में बहुत अंतर है। पहले बोरिंग नहीं थे, ऐसी कुआं थे तो कुआं से ढुकरी बना के पानी निकालते थे खेतों के लिए। और
1: ढुकली को नाम लो, ढुकली का चीज
0: ढुकली है कि पल्ला की तरह थी और 2 रस्सी उसमें बांधी और 2 आदमी कुआं में से पानी निकाल कर खेत में डालते थे।
1: अच्छा,
0: ये था खेल।
1: अच्छा, पहले जो जुताई होती वो बैलन से?
0: हाँ, बैलन से जुताई होती थी, तो उसको 3-3, 4-4 बार जोतते रहते थे आराम से खूब, और उस वक्त तब बुवाई होती थी।
1: क्योंकि आपकी जो उम्र 60 साल है। हाँ। तो मान कर चले 10 साल की उम्र कम कर दो तो 50 साल से आप खेती बाड़ी को।
0: हाँ,
1: काफी है।
0: हाँ जी, 50 साल से तो खेती बाड़ी आंखों से सबसे देख ही रहे हैं, करिए।
1: दूसरी बात ही और पूछना चाहेंगे आपसे हम, पहले मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी खेती ज्यादा होती?
0: हाँ, इनकी खेती थी पहले, बस ये थी अषाढ़ की जब भन्न पड़ी तब बस जुताई करी और जुताई करके बुवाई करे आए, ज्वार की, बाजरा की, मक्का की, उड़द की, उर्दी की, सब चीज की जो करे आए, और अषाढ़ के बाद जाके उसकी नराई खुरपिया लेके डटे, उसके बाद में नवंबर दिसंबर में वो तैयार हो जाती थी। पानी उनी कोई जरूरत ना,
1: पानी की
0: कोई जरूरत ना थी, भगवान के सहारे थे, बारिश हुई गई तो पौधा बढ़ रहे हैं, चल रही है।
1: भगवान को नाम लो तो हमें आज बात याद आएगी, जैसे जन्माष्टमी कल हुई गई
0: जी,
1: तो जन्माष्टमी में का का तैयारी करी जाती है पहले और अब में?
0: आज की और पहले की ये है कि पहले श्री कृष्ण भगवान की हम लोग सब देसी हमने देखते थे कि दीवारों पर कन्हैया जी पांडवों के फोटो बनाते थे, और आज की तकनीक ये है कि कैलेंडर मिल रहे हैं, कोई पोतने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर टांगो आराम से पूजा करो उनकी।
1: पहले हाथ की दस्तकारी?
0: हाथ की दस्तकारी ज्यादा थी, दीवारों पर कन्हैया जी बना दे, पांडव बनाए, और जितने भी थे सब चीज भगवान बनाए के तब पूजा करते थे।
1: बड़ा अच्छी जानकारी आप दे रहे हो, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आप दे रहे हो, क्योंकि पहले खेती कैसे करते हैं, अब खेती कैसी होती है। अरे, पहले गांव में सब छप्पर होते होंगे?
0: हाँ, टोटल छप्पर था, टोटल छप्पर। अगर गांव में पीछे से अगर आग लग गई तो आगे उतर जाती थी, ये हाल था छप्परों का। आज छप्पर नहीं है, आज के वो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, हर घर पक्का है, हर घर पक्का, हर घर में नल, हर घर में व्यवस्था फिट है, सब कुछ।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि माननीय प्रधानमंत्री ने सब कुछ दिया है। प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाएं चलाई हैं किसान भाइयों के लिए?
0: हाँ, किसान भाइयों के लिए चलाई
1: है। आपको कौन सी योजना को लाभ मिल रहा
0: है? हमें सबसे ज्यादा उनका लाभ मिल रहा है किसान सम्मान निधि, जो वो हमको दे रहे हैं, हर चौथे महीने डालते हैं, तो उससे हमें ये फायदा है कि हमको खेती में भी हर चौथे महीने जरूरत पड़ती है खाद की, बीज की और दवाइयों की, कीटनाशक की, तो वो हमारी उन्होंने व्यवस्था ये कर रखी है, हमको कोई परेशानी नहीं आती है।
1: पहले खेती बाड़ी में जो पैसा लगाने पड़ते हो तो ब्याज पर लाने पड़ते
0: हो? हाँ, ब्याज पर
1: से।
0: हाँ,
1: पहले जो गांव में लोग उठाते हैं, पहले सुनते हैं पैसा।
0: हाँ, तो गांव में से उठाते थे, बाकी जो नाज पड़ा हुआ होता 2-4 क्विंटल वो बेच बाँच कर फंद काट कर तब कहीं खाद बीज लाते थे। अब आज वो नाज हमारे घर में है, वो ही खर्च नहीं होता है।
1: तो अब जो किसान सम्मान निधि आती है वैसे बहुत ज्यादा लाभ?
0: हाँ, उससे हमें बहुत फायदा है, किसानों को सबसे ज्यादा फायदा है,
1: मतलब खेती बाड़ी में हमें पैसा की जरूरत है तो।
0: हाँ,
1: किसान सम्मान निधि से।
0: हाँ, हर चौथे महीने खेती में जरूरत है, हर चौथे महीने किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी हमको डाल देती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमें सम्मान निधि मिल रही है वैसे हमें खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा लाभ,
0: बहुत ज्यादा लाभ।
1: अच्छा, बात करें बरसात की, तो बरसात कैसी
0: है?
1: रही है
0: बरसात अब की खूब हो रही है, काफी हो रही है, ये अगस्त तक काफी बारिश हो रही है। हाँ, लगातार रोज बारिश हो रही है, काफी बारिश हो रही है, फसल को काफी फायदा हो रहा है।
1: कल जन्माष्टमी, कल लो काफी बारिश भाई।
0: हाँ, कल भी बारिश हो रही है, बारिश अब भी इस समय हो रही है, इस समय भी।
1: तो जो बारिश हो रही है, जामे खेती बाड़ी को किस तरीका से ध्यान रखो जाए?
0: इसमें इतना ध्यान रखनी है कि ये ज्यादा बारिश होगी तो अपने खेतों को देखते रहो, सूढ़ी वगैरह है, कीड़ा है, कोई चीज तो ये चीज ना लगे, जैसे धान की खेती है और भी खेती है तो ये पानी ज्यादा होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर और जो गन्ना है और भी है, जैसे अभी मक्का है, तो इसमें पानी अगर भर जाएगा तो ये नुकसान की
1: बात करें। गंगा नदी यहाँ पे किनारे बह रही, इसमें जो नदी बह रही है इसमें बाढ़, इस समय काफी पानी है बहुत।
0: हाँ, इस समय
1: खतरा के

0: समय में क्या करते हो?
1: हाँ, खतरा के समय में इसको ये करते हैं, इसको देखते रहते हैं, जाते हैं गांव वाले कि ना कहाँ पानी आ रहा है, आबादी में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, तो इसको देखते रहते हैं। बाकी जब ओवर होती है तो सूचना करते हैं प्रशासन को कि ये हमारी नदी इतनी खतरा के निशान से ऊपर जाएगी,
0: क्योंकि गांव के किनारे पर नदी है। अब हम आपसे आज बात कर रहे हैं तो कितनी जोरदार बारिश भी हो रही है।
1: हाँ, जोरदार बारिश हो रही है, काफी बारिश हो रही है।
0: इस बारिश के समय में जो किसान की खेती कर रहे हैं तो अच्छा तो लगती है बारिश के समय में।
1: हाँ जी,
0: लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां भी है, बरतना जरूरी होता है।
1: हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ,
0: आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत, बहुत सारे किसान
1: ये कहेंगे कि सभी किसान भाई हमारे जितने भी हैं, ये बढ़िया करके खेती बाड़ी देखें और बाकी सब लोगों की एक दूसरे की मदद करें और आकाशवाणी तक ये हमारी बात पहुंचे और किसान भाई हमारी बात को सुने।
0: बहुत अच्छी बात कही, आकाशवाणी से हमारी बात पहुंचे, किसान भाई सब बात सुने। और जैसे आप काम कर रहे हो, बता रहे हो सम्मान निधि से का का लाभ है, ऐसे ही हमारे किसान भैया बहन है जो सम्मान निधि ले रहे हैं, खेती बाड़ी में बढ़ चढ़ कर समय में पैसा को खेती में ही उपयोग करें।
1: हाँ, हम लोग खेती में ही उपयोग करते हैं उस पैसे को।
0: आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: बातचीत करने के दौरान यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, जान लेते हैं आपसे आपका नाम। जी चमेली देवी जी, आप ये बताइएगा कि आप और हम आज इस गांव में हैं, बातचीत कर रहे हैं आपसे, इस गांव का नाम क्या है?
3: मीरापुर।
2: आपको इस गांव में रहते हुए या आए हुए कितने दिन हो गए?
3: 60 साल।
2: वैसे आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? जी ज्यादा होगी। तो आपने बहुत दिनों से ये गांव को देखा। देखिए, पर्दा प्रथा पहले हुआ करती थी, आपने गांव की गलियों को घूंघट करने के बाद यहाँ देखा होगा, तब ये गलियाँ ये रोड कैसे थे? जी हाँ, अगर फतेहगंज जाना पड़ता था तो कैसे करके जाया करती थी? और अब अगर फतेहगंज जाना पड़ता है तो कैसे जाया करती जी? और आराम से मुश्किल से फतेहगंज 10 मिनट में पहुँच जाती है, पहले घंटा भर लगा। चलिए साहब, देखिए धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ है। आपने घर में तो बहुत सारे काम किए होंगे, खाना बनाना, चौका, चूल्हा, इन सब के साथ साथ जो घर में पशुपालन होता था वो भी किया हुआ?
3: जी, 4 बजे
2: अच्छा, कितनी कितनी भैंसे, कितनी कितनी गाय आपने पाली?
3: हमारे 14 गैया बैठी
2: जी। और अब कितनी गाय और भैंसे हैं?
3: अब एक है।
2: जी जी जी जी, वो हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब ये गाय भैंस कम कैसे हो गई?
3: पालने बना सब पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, हमारा
2: कब्जा ना आए। पहले घर परिवार के सब लोग साथ रहा करते थे, घर में अगर 15-20 लोग हैं तो आराम से रह करके सब अपने अपने हिस्से के काम करते
3: हैं। अब क्या है,
2: अब कोई काम नहीं। तो एक बात मैं बताऊंगा, आप जब गाय और भैंस पाला करती थी तो क्या क्या काम करना पड़ता था? सुबह किस समय उठ जाती थी?
3: बेटा नाम सानी करने पड़ती, गोबर डालने पड़ते, उसको धोने पड़ते, पानी पियाने पड़ते, सब काम होते
2: पड़ते। जी, शुरू में जब दूध निकालने जाती थी तो भैंस से किस तरीके से बात करती थी? और दूध तो कितनी साफ चीज होती है, किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, तो क्या ध्यान रखती थी दूध दूहते समय? और इस्तेमाल में कैसे करके लिया करते थे? लाल दूध कैसे करके बनाया करते थे?
3: लाल तो पड़ोसी को आउट हो जाते, वो लाल करके तब फिर जमा आउट कर फिर जमा हो जाते, फिर मठा बनाते।
2: जी जी, तो अब वो हंडिया, वो बरोसी, वो चूल्हे खत्म हो गए, कैसे करते, क्यों नहीं करना चाहते हैं? जी जी जी, मतलब सबको समय की, सबके पास समय कम है। अच्छा, ये सब घर पे काम देखने के अलावा खेतों में भी कोई काम देखा करती थी?

0: क्या क्या क्या क्या काम करती थी या देखती थी खेतों का?
1: भाई अपने गेहूँ धान होते हैं उनका।
0: जी जी जी
1: हाँ, वो जगह ही बनाना
0: जी जी। अरे वाह, तो खेती बाड़ी का भी अनुभव रहा। अच्छा अब जे तो बताओ, आप तो अपने जमाने में आपने सब काम किए, पशुपालन भी किया, खेतों का भी काम आपने दिखवाया, लेकिन अगर आज आपके लड़के की बहू या आप अपने घर में बेटी से इस काम को करने के लिए कहेंगी तो वो क्या करेंगी? ये सब धीरे धीरे समय का बदलाव। तो आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, आपने अपने समय की वो सारी बातें बताई हैं।
1: पहले गांव, पहले बाजरा, मक्का की रोटी, सिकती गेहूं की सैकड़ों।
0: बाजरा की रोटी तो
1: बाजरा की गेहूँ और ये रोटी चलती, मक्का की ये रोटी पकाते,
0: ताजा ताजा आटा पीसा जाता था
1: और
0: ताजी ताजी रोटी बनती।
1: चक्की से पहले चक्किया चलती, 4 बजे से घर को आटा खाओ जाती, चक्की को जरूर खाओ जाती।
0: चलिए साहब, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 बजे देखो एक किसान भैया अपने पास बैठे हैं, अब इनसे बातचीत कर लेने और जान लेते हैं इनसे खेती बाड़ी के अनुभव कि जे खेती को किस तरह से करता है और का का लाभ लेता है खेती को। भैया नाम क्या है आपको?
3: लाल सिंह नाम है हमारा।
2: आप उसे गाँव में रहते?
3: हाँ, इसी गाँव में रहता।
2: कितनी उम्र हुई आपकी?
3: हमारी 50 साल उम्र है भैया।
2: पढ़ाई लिखाई करी आपने?
3: हाँ करिए, इंटर करिए करो।
2: इंटर के बाद पढ़ाई लिखाई ना करी?
3: पढ़ाई लिखाई ना करी, खेती में लग गया था।
2: अच्छा, खेती में लग गया।
3: हाँ।
2: क्योंकि अगर हम बात करें, आपकी 50 साल उम्र है।
3: हाँ।
2: और 35 साल पहले की बात करें।
3: हाँ।
2: तो इंटर तो अच्छी खासी पढ़ाई ही।
3: हाँ, इंटर अच्छी खासी पढ़ाई।
2: तो अब आप खेती बाड़ी
3: कर रहे हैं?
2: कौन कौन सी फसल है खेती बाड़ी?
3: धान और गन्ना इस समय।
2: धान और गन्ना।
3: गन्ना
2: तो धान तो इस समय अलराम हुआ सब।
3: हाँ, धान अलराम है, निकल रहा हुआ है।
2: देखो बरसात तो काफ़ी ही रही है, बादलों गड़गड़ाए रहे हैं और नदी भी जो है पानी से बराबर चल रही है इस समय। और जब अगर कुछ ज़्यादा बरसात ही जाए, सैलाब आ जाए और धान की फसल कर दी तैयार खड़ी हुई है, तो जाके लिए कुछ प्रबंधन करो ना करो।
3: हाँ, बीमा करवा दो,
2: फसल बीमा योजना
3: जो चल रही है वो करवा देते हैं।
2: का लाभ होता जाएगा?
3: जामा साहब, जो बाढ़ में मारो जाते हैं तब लाभ मिलता है।
2: बीमा हर साल
3: करा देता है।
2: क्योंकि बीमा कराने से फायदा है, अगर हमारी फसल को नुकसान हुआ हो तो बाकी भरपाई हमें
3: जो बीमा कंपनी भरपाई देती है
2: तो बहुत फायदा है फिर तो बीमा।
3: हाँ, बीमा करने से बहुत फायदा है।
2: तो कौन कौन सी फसल को बीमा कराते हो आप?
3: गेहूं और धान की फसल को बीमा कराते हैं साहब, गन्ना ही फसल को ना कराते हैं।
2: गेहूँ और धान की फसल?
3: हाँ, धानों में बाढ़ से हानि आती है, मारा जाता है। और गेहूँ की फसल में बारिश ज़्यादा होने से या ओले पड़ने से फसल मारी है।
2: कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा फसल पर आ रही है, खेती बाड़ी में आ रही है, तो बीमा कराए हुए होंगे तो कम से कम निश्चिंत होंगे कि कम से कम हम बाकी भरपाई मिल जाएगी
3: साहब।
2: भाई 6 महीना की मेहनत है और वह मेहनत में अगर हम ऐसी छोड़ दें और वहाँ में कुछ मिल ना पावे हमें, नुकसान ही जाए तो कुछ मिलेगा ना?
3: कुछ ना मिले।
2: अब बीमा करा
3: जब बीमा करावे होता है तो उसको भरपाई मिल जाती है फसल की,
2: मतलब निश्चिंत रहते हैं एक प्रकार से कि फसल तो हमने बोई है, हुई है तो अच्छी बात है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जिस समय काफी बादलों गड़गड़ा रहे हैं, बरसात तो रोजाना ही रही है और नदियों में पानी काफी भराभर लेवल पर चली रहा है, खतरा के निशान पर बाढ़ की स्थिति में है। अगर बात करें 3-4 साल पहले तो कितनी तेज बाढ़ आई
3: तो उस समय हमें फसल को बीमा मिलो, बीमा था इसलिए फसल को पैसा मिलो उस टाइम।
2: उस समय पैसा मिलो हो जब, क्योंकि बीमा
3: का मारी गई तो,
2: अगर मारी जाए तो उसको पैसा मिल जाए, ना मारी जाए तो कोई जरूरत ना,
3: कोई जरूरत ना।
2: आज रेडियो पर आपको और हमें बहुत से भाई बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए?
3: बिल्कुल, जो कहना चाह रहे हैं साहब, जो कृषि जो कर रहे हैं उनके लिए बीमा बहुत जरूरी है, फसल बीमा, इसलिए सबको लाभ मिल सके इससे फसल के लिए।
2: बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो किसान भैया खेती बाड़ी
3: कर रहे हैं
2: वे अपनी फसल को बीमा जरूर
3: करावे,
2: जिससे कि कोई प्राकृतिक आपदा है तो बाकी भरपाई उन्हें मिल सके। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
3: सर। बहुत बहुत धन्यवाद
2: किसान साथियों, आप लोगों को

बहुत धन्यवाद जो आपने बड़ा अच्छे तरीका से हमें अपनी खेती बाड़ी के बारे में, अपने गांव के बारे में, पशुओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब हम चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर, जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस। अब लो हमारी राम राम, राम।

0: भैया बनो, अभी आपने सुना ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव में किसानों के साथ। आज हम पहुंचे ग्राम मीरापुर, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली के गांव में। और यहाँ हमारी किसान भाई योगेंद्र सिंह, महिला कृषक चमेली देवी, लाल सिंह और अन्य साथियों से बातचीत हुई। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रही मिथिलेश श्रीवास्तव की, और प्रस्तुति सहयोग रहो आपके भैया धारा
1: आपके भैया सुरेंद्र।
0: और सुरेंद्र भैया। देखिए, अगर आज ये कार्यक्रम हमारे जिन किसान भैया बहनों ने सुना है और अपने गांव में हमें कार्यक्रम के लिए बुलाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए एक पत्र लिख भेजें और सोशल मीडिया पर भी हमें कमेंट में अपने गांव का पता लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ एक फोन नंबर अवश्य लिखें। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, और पिन कोड है 2430001। और सुरेंद्र भैया, देखिए समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर है।
1: और अब बात कर ले रहे हैं भैया कृषि समाचार के।
0: हाँ
1: तो आज को जो मुख्य समाचार है भैया वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, यानी सरकार ने किसान भाइयों को राहत दी है। सरकार ने खरीफ 2026 के लिए बीमा कराने की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। प्रति हेक्टेयर 1714 रुपये प्रीमियम देकर 85,700 रुपये तक का बीमा मिलेगा। सरकार 80% सब्सिडी खुद दे रही है।
0: अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर फोन करके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं।
1: और सरकार को भैया एक हमारे किसान भैया हैं उनके लिए एक बड़ा कदम और है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने अमेजोन पर किसान स्टोर लॉन्च करवाया हुआ है। अब बीज, खाद, कृषि औजार घर बैठे होम डिलीवरी पर और सस्ते में मिलेंगे छोटे किसान भाइयों के लिए। ये बहुत अच्छी सुविधा का विषय है। और अगला समाचार है खाद्य तेल जल्द होंगे सस्ते। खाद्य सचिव ने बताया नई फसल आने से सरकार के प्रयास से इस महीने से सरसों तेल और अन्य खाद्य तेलों के दाम घटेंगे।
0: एक महत्वपूर्ण समाचार और है सुरेंद्र भैया, गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार आज गन्ने का नया रेट घोषित कर सकती है।
1: मुख्य सचिव ने मिल मालिक और प्रगतिशील किसानों से रिपोर्ट ले ली है। जल्द ही बढ़ोतरी की भैया उम्मीद है, क्योंकि अच्छा समाचार है। क्योंकि अगर हमारे गन्ने के रेट बढ़ जाएंगे तो हमारे किसान भैया बहन गन्ने की खेती करते हैं उन्हें यह चीज को जरूर लाभ मिले। भैया अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो कल अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। वर्षा जो है 80% होने की संभावना और पूरे दिन तेज हवा रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 93% रहने की संभावना है। और भैया अब बात करें बस सवाल की, जो कार्यक्रम के शुरू में पूछो बाको जवाब दे।
0: सवाल पूछा गया था धान की अच्छी पैदावार के लिए का जरूरी है, तो आप लोगों ने जवाब दो है, हम आपको बता देते हैं। समय पर सिंचाई, संतुलित खाद और कीट रोगों की नियमित निगरानी करके हम धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ऐसो ही जवाब भैया ठाकुर मुन्ना सिंह कठहरिया हैं, इन्होंने कमेंट्स के माध्यम से दिया है। छोटे लाल हैं, अलकनाथ मंदिर के सामने से ये बेंचे लाल हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। और अब भैया समय देख रहे हो कितना हुआ है।
1: भैया अब समय बिल्कुल इजाजत ना दे अपने भैया बहनों से और बात करें, चलते चलते बता दे रहे हैं कि आज के कार्यक्रम से हमें क्या नसीहत मिलती है। तो हम तो अपने भैया बहन से जय कहेंगे कि इस समय अपने क्षेत्र में खड़ी फसल की नियमित देखभाल करें जिससे कि अधिक पैदावार मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम किसान बाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र
0: और अपने भैया धारा को दीजिए अनुमति। भैया बहनों,
1: राम
0: राम
1: राम।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है ग्राम जगत कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में एक बार फिर सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है। धारा भैया, देखो घर के अपने जो गांव में भैया बहन है उनके लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाते हैं, जो जानकारी उनके विकास से संबंधित होता है कि ये जो हमारे भैया हैं वो किस तरीके से अपनो विकास कर सकते हैं। ऐसी बहुत से काम है खेती बाड़ी संघ में जो हमारे किसान भैया बहन कर सकते हैं। और आज देखो घर के जिस गांव में पहुंचे हैं, एक भैया है जो सेलर लगा हुआ, उन्होंने चक्की लगाई है।
1: भैया बहनों, आज हम हैं विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली के गांव पिथुपुरा में, और यहां हम बातचीत कर रहे हैं एक सेलर संचालक युवा हैं उनसे, और आपके यहां सेलर पर धान कूटने की और आटा पीसने की जो मशीनें लगी हुई हैं, और कैसे करके इन्होंने इस काम को करने के बारे में सोचा, क्योंकि आप युवा हैं और हर युवा का ये सपना होता है कि वो पढ़ने लिखने के बाद अपने अच्छे भविष्य के लिए नौकरी करे या फिर कोई व्यवसाय करे। इन्होंने कैसे करके ये विचार बनाया, जान लेते हैं आपसे। आपका नाम?
2: मुकेश कुमार।
0: उम्र कितनी हुई आपकी?
2: उम्र 27 साल हो गई।
0: जो आपने सेलर लगा हुआ है
2: जी,
0: जो आपने कब लगाओ?
2: जी हमने लगाया था 2018 में लगाया था।
0: 2018 में लगाओ
2: जी।
0: अच्छा, इसे लगाने को विचार कैसे आओ आपके मन में?
2: विचार देखो, पहले हमने पढ़ाई करी थी, फिर उससे पहले हम पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाया करते थे, पढ़ाई भी किया करते थे, फिर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी देखी थी। नौकरी में काफी प्रयास किया हमने, सफलता ना मिल पाई। ना मिलने की वजह से फिर हमने सोचा अब अगर नौकरी के पीछे ही भागते रहेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इसलिए मन में विचार आया कि हम अपना काम अगर करें, अगर उस हो सकता है उसमें सफलता मिले, उसी को लेके मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है सेलर का।
0: बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक करी?
2: पढ़ाई मैंने BSc कर रखी है।
0: अच्छा, BSc करने के बाद आपने नौकरी की भी तलाश करी, नौकरी नहीं मिल पाई, उसके बाद आपने अपना व्यवसाय शुरू कर?
2: जी जी।
0: अच्छा, इस व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय लगाने में कुल कितनी लागत आएगी?
2: लमसम 5 से 6 लाख रुपए लागत आई थी।
0: 5 से 6 लाख
2: जी।
0: तो जो व्यवसाय लगाने के बाद में अब आपको क्या अनुभव है?
2: अनुभव यही है कि भाई अपना खुद का बिजनेस है और अपने घर भी हैं, कोई माता पिता को या बच्चों को कोई समस्या है तो अपने घर भी हैं। बाहर जाने से यहाँ अगर 10,000 बचते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, बाहर 20,000 बचेंगे, यहाँ 10,000 बचे हैं वो ज्यादा बेहतर है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही
2: जी।
0: एक तो हम अपने परिवार के साथ हैं
2: जी,
0: हमारा अपना बिजनेस है, और कोई घर परिवार में समस्या आए तो हम कम से कम
2: तो अपने तुरंत तैयार हैं। बिल्कुल।
0: काका चीज आप यहाँ पीसते हो, कैसे कैसे का होता है
2: जी? धान भी कूटते हैं और गेहूं पीसते हैं।
0: गेहूं पीसते हो और धान कूटते हो
2: जी?
0: तो का भाव, जैसे धान किस हिसाब से कूटते हो, गेहूं किस हिसाब से पीसते हो?
2: धान तो फ्री कूटते हैं फिलहाल, भूसी जो भूसी है पालिस है वो बस्ती है, और आटा है वो 2 रुपए किलो पिसाई जाती है।
0: अच्छा, आटे की पिसाई 2 रुपए किलो, और धान जो है किसान ऐसी लगा हुआ।
2: हाँ, और

0: ले जाए।
1: पालिश आपकी रहेगी।
0: हाँ
1: तो भूसी और पालिश बिक जाती हुई है?
0: हाँ बिक जाती है।
1: इकट्ठी बेचते हो या फुटकर?
0: नहीं, हमारे गांव में जानवर काफी हैं तो जानवर वाले ले जाते हैं।
1: कुटाई पिसाई की बात करें तो तुम्हारे गांव की आती है या बाहरों की आ जाती है?
0: हमारे गांव की भी है, प्लस गौटिया है और प्रेम गौटिया है, मीरापुर है, भोलापुर है, ये गांव की आती है।
1: रोड किनारे आपको जो सेलर लगो वो है और आप आसपास के गांव बता रहे हो, दिया है, भोलापुर है, मीरापुर है, रफियाबाद है, सब गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं
0: जी।
1: तो शुरुआत सुबह कितने बजे कर देता हूँ आपका?
0: सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे, उठ जाता हूँ
1: 4 बजे
0: जी। 4 बजे उठ के अपने साफ सफाई करी और उसके बाद अपने काम स्टार्ट कर देता हूँ।
1: सिर्फ जो लोग आते हैं गांव के लोग, किसान कुटवान आते हैं, उन्हीं के साथ?
0: हाँ,
1: आप जो
0: हाँ, हाँ उन्हीं के साथ।
1: अपना मोल लगे कोई
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं,
1: जैसे कोई आदमी आता हम आटा दे दो, चावल दे दो, तो वो कारोबार नहीं?
0: वो तो भाई थोड़ा बहुत तो चलता,
1: थोड़ा बहुत चलता है, मतलब वैसे मुख्य काम
0: नहीं।
1: मुख्य काम जो है वो आपका कुटाई और
0: पिसाई का है।
1: तो एक सेलर ये लगा हुआ है, एक वो है और एक है आपकी
0: पिसाई मशीन।
1: पिसाई मशीन मसाले वगैरह भी पीसते?
0: नहीं, मसाले नहीं पीसते,
1: मसाले नहीं पीसते। आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत से किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनसे आप?
0: किसान भाई से यही कहना चाहूंगा, सबसे मेन चीज है जो आज की नई तकनीकी जो दवाइयां लग रही हैं, वो आज कल के किसान है वो ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और देसी खाद को ऐसे भूल गए हैं जैसे देसी खाद है ही ना। और वैसे आज के टाइम में देसी खाद का ज्यादा प्रयोग किया जाए तो फसल के लिए ज्यादा लाभदायक है, और जो जैविक उत्पादक खाद हैं उसे कम प्रयोग करें।
1: खेतीबाड़ी में देसी खाद लगा हुए, रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम कर रहे हैं, और जैसे व्यवसाय आप कर रहे हो
0: जी,
1: वैसे ही व्यवसाय अगर हमारे किसान भैया बहन करें तो और अच्छी बात है
0: जी।
1: भाई जैसे व्यवसाय आप खुद अपनों कर रहे हो, वैसे व्यवसाय और हमारे भैया बहन युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वे करें तो अच्छी बात है, है नहीं
0: जी? बिल्कुल करना चाहिए।
1: आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: और आइए अब सुनते हैं मधुर लोक गीत।

0: इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत यहीं संपन्न होता है। अपने भैया धारा
1: और अपने भैया सुरेंद्र को दे अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।
2: अभी आप ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 8 सितंबर 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 7 सितंबर 2026 को सायं 4:00। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें, विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 7 सितंबर 2026 को सायं 4:00 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षकों समेत देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से साकार होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। कहा, उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ाएं शिक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों समेत देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉक्टर इफ्तखार खान शामिल हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के

0: 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में बीएचयू के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तिखार खान ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
2: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया न कि कॉपी कराने पे, और आज पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। उन्होंने स्क्रीन की लत कम करने के लिए खेलकूद, बाहरी गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों में पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
4: जो टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जोड़ा, ये केवल ट्रिपल टी तक सीमित नहीं था। इसमें शिक्षक का सम्मान है, इसमें विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, और इसी कार्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने विद्यालयों में वे संसाधन उपलब्ध करवाए जिन संसाधनों का अभाव दशकों से हमारा ये शिक्षक समुदाय महसूस करता था। आपने देखा होगा 2017 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3,000 रुपये, आज मिलता है 18,000 रुपये। अनुदेशकों का मानते अब 17,000 रुपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5 लाख का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है।
0: राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास को रफ्तार दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जनपदों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में

0: परीक्षार्थियों को केन्द्र पर एक घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार इस आपदा में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव, एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
0: राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ के बाद जमा मलबे और गंदगी की सफाई कराने, पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मंदाकिनी की रिकॉर्ड बाढ़ ने रामघाट समेत तपोभूमि के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। 7 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद नदी का जल स्तर घटा तो नुकसान की तस्वीर सामने आई। रामघाट में तुलसी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। करीब 100 मीटर सड़क और लगभग 170 विद्युत पोल बाढ़ की चपेट में आए। फुट ओवर ब्रिज की एलईडी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कैमरे भी बह गए। कई मठ मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से जिले के 36 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 500 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन द्वारा सफाई, राहत और मरम्मत कार्य लगातार जारी है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षकों समेत देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से साकार होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। कहा, उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाएं शिक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम अब आप सुनेंगे।
6: हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
7: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
6: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
7: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
6: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
8: बच्चों के जन्म

0: के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जांच,
1: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
1: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
0: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
1: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय,
2: गंगवार हॉस्पिटल,
1: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
0: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
3: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मुकेश कुमार पांडे, और मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: सभी श्रोताओं को और पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे बिल्कुल अलग विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही हमारे श्रोताओं के समक्ष ऐसी समस्याएं आती हैं, कई बार बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है, और न रोने के पीछे की वजह भले ही कुछ भी हो लेकिन उस बच्चे के साथ कई तरह की समस्याएं जुड़ जाती हैं। तो क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, क्या वजह होती है जो बच्चा नहीं रोता है? सर,
4: देखिए, प्रत्येक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसका पहला काम होता है रोना, और रोने के साथ वो एक सांस लेता है, गहरी सांस
3: जी,
4: जिससे उसके लंग्स खोलते हैं और वो अपना सांस लेना शुरू करता है।
3: डॉक्टर साहब, जहाँ तक रोने की बात है, तो कोई बच्चा धीरे से रोता है, कोई बहुत चीख मार के रोता है, तो ये दोनों में क्या सही है?
4: देखिए, रोना इतना जरूरी नहीं, बच्चे का सांस लेना उतना जरूरी है।
3: जी जी।
4: अगर बच्चा नहीं भी रोए और उसने सांस अच्छे से ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं। रोना तो उसके साथ इसलिए जोड़ लेते हैं, अक्सर बच्चे तेजी से रोते हैं और सांस लंबी खींच के लंग्स उनके खोलते हैं।
3: अच्छा।
4: तो जब भी कोई बच्चा अगर पैदा होने के बाद ठीक से नहीं रोया, उसकी सांस नहीं आई, तो उसका इस दुनिया में आने पे अपना सिस्टम शुरू नहीं हो पाया।
3: जी जी।
4: जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, उन गैसेस का जो एक्सचेंज है वो थ्रू प्लेसेंटा होता है, माँ के थ्रू होता है,
3: यानी माँ के शरीर,
4: माँ के शरीर के ब्लड के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन बच्चे के तक पहुँचती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के जरिए माँ के शरीर के द्वारा बाहर निकलती है।
3: एक श्रोता लाइन पर आगे, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
5: अगर हम मुन्ना लाल बोल रहे हैं, ग्राम
3: टहा ताजपुर के मुन्ना लाल जी, एक बार फिर रेडियो हेल्पलाइन।
4: हाँ, नमस्कार मुन्ना लाल जी, बताइए आज क्या प्रश्न है आपका?
5: एक सर, हमारे यहाँ DST में बच्चा पैदा हुआ है
4: जी,
5: और बच्चा पैदा होने पर रोया नहीं
4: जी जी,
5: और बच्चा किनारा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप बरेली ले जाइए किसी बच्चे वाले डॉक्टर के पास, इसको मशीन भी रखना होगा।
4: नहीं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका मैं अभी जवाब देने की प्रयास करूंगा पूरी तरह से। देखिए, जब बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता है तो इसका मतलब उसके जो अपना सांस लेने सिस्टम है वो शुरू नहीं हो पाया। तो जब बच्चा नहीं रोता है तो उसके लंग्स ओपन नहीं हो पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उससे परेशानी होती है, या उतना अच्छे से सांस नहीं ली जितना उसको चाहिए होती है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे बच्चे का जो SpO2 है वो कम होने लगता है, और बच्चे किन्हाना शुरू करता है। किन्हाने के साथ साथ बच्चे के सांस लेने में गड्ढे पड़ने लगते हैं, रिट्रैक्शंस होने लगते हैं। कई बार जो देहात में कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते कहते हैं कि पैदा होते ही निमोनिया हो गया, या कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस खराब हो गई, इसने गंदा पानी सांस में ले लिया, तो सांस में गंदा पानी ले लिया इसकी वजह से सांस खराब हुई, या पैदा होते ही निमोनिया हो गया, या फिर पैदा होते निमोनिया तुरंत तो अक्सर नहीं होता है, उसमें कुछ समय चाहिए। तो पैदा होने के तुरंत बाद बच्चा जब सांस नहीं लेता है तो उसकी वजह से शरीर में जो नुकसान होता है वो शरीर के हर हिस्से को नुकसान होता है, और ये जैसे बच्चा पैदा होते समय फंस गया, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की ट्राई कर रहे हैं और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो बच्चे का माँ की तरफ से तो डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, वो अलग होना शुरू हो जाता है, और उसका अपना सिस्टम शुरू नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से एक तरह से उसका दम घुटता रहता है, तो इसको एस्फिक्सिया बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चे में जब अगर ये तकलीफ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं HIE, हाइपोक्सिक इश्मिक ब्रेन इंजरी जी, ब्रेन को नुकसान होता ऑक्सीजन की कमी की होने से। तो आज की तारीख में इन बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा इलाज है वो है थेरेप्यूटिक होल बॉडी हाइपोथर्मिया। नवजात शिशु को हम 72 घंटे के लिए बिल्कुल एक टेम्परेचर जैसे कि 34 से 36 के बीच में टेम्परेचर सेट करते हैं, और 34 या 34.5 डिग्री पे उसको 72 घंटे के लिए रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको वार्मिंग करते हैं। तो होल बॉडी हाइपोथर्मिया देने के लिए

0: आपको दो तरह की मशीन आती हैं, एक इंडिजिनस मशीन्स हैं जो पहले यूज होती थी, जिन्हें मिराकेडिल बोलते थे, और आजकल जो नई मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप उसमें एक बार सेट कर दीजिए टेम्परेचर, बच्चे का वो धीरे धीरे ठंडा करके आपको उस टेम्परेचर पे वो सेट कर देंगी, और जब 72 घंटे हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे बच्चे को रिवार्मिंग कर ले नॉर्मल टेम्परेचर। आपको बच्चा ठंडा रखने से ये फ़ायदा होता है, जो बच्चे को होने वाला नुकसान है वो
1: जी
0: मिनिमाइज हो जाता है। तो बच्चे के जो दिमाग पे बुरा असर आता है इस तकलीफ की वजह से, वो बच्चे को नुकसान कम हो जाता है और सेरेब्रल पैल्सी होने के
1: चांसेस
0: चांस
1: कम
0: कम
1: हो
0: हो
1: जाते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं। लेकिन ये होल बॉडी हाइपोथर्मिया एस्फिक्सिया वाले बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रो रहे हैं, उनको उसी सेटअप में आप हाइपोथर्मिया देने की कोशिश करें जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हों, जैसे कि सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग। आप इसमें अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं सीजर्स को, सटल सीजर्स जो आपको क्लिनिकली नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं और बच्चे को दौरे हमें नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तो वो मशीन लगा के आप सीजर्स कंट्रोल कर सकते हैं। आप जल्दी पता लग जाता है कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, आप उस हिसाब से दौरे की दवाई दे सकते हैं। थेरेप्यूटिक बॉडी हाइपोथर्मिया देने के लिए ये भी जरूरी है बच्चे का वजन 2 किलो से ऊपर हो
1: अच्छा
0: और बच्चे आपको 6 घंटे के अंदर मिल जाए।
1: जी,
0: बच्चे अगर 6 घंटे के बाद मिलता है तो थेरेप्यूटिक बॉडी उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, जबकि आजकल 6 घंटे से 12 घंटे के बीच भी नए स्टडीज आए, रिसर्च हुए कि आप 12 घंटे के अंदर भी थेरेप्यूटिक बॉडी हाइपोथर्मिया
1: दे
0: देने का
1: सकते हैं।
0: प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो है विद इन 6 आवर्स। और जितना आप जल्दी शुरू, तो शुरू में जब बच्चा आपको प्राप्त होता है तो आपको पहले उसको हीमोडायनेमिकली आपको स्टेबल करना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपको मिला आपने तुरंत उसे हाइपोथर्मिया पे डाल दिया,
1: जी,
0: पहले बच्चे को स्टेबलाइज करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, उसका ऑक्सीजन लेवल सही से आने लगे, उसका बीपी सही से आने लगे, जब
1: उसके बाद
0: बच्चा
1: मशीन।
0: स्टेबलाइज हो जाए तब उसको हाइपोथर्मिया मशीन पे डालते हैं, जिससे कि उसको जो ब्रेन को नुकसान है वो कम से कम हो, तो आगे आपको सेरेब्रल पैल्सी होने के चांस कम हो जाते हैं,
1: जी,
0: सर्वाइवल बेटर हो सकता है, आउटकम बेटर हो सकता है। बच्चा अगर पैदा होने के बाद किनार रहा है, उसकी सांस बहुत तेज चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 है, बच्चा नीला पड़ना शुरू हो रहा है, उसका SpO2 लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये बच्चे को हाइपोक्सिक इस्केमिक इंजरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और इस बच्चे का तुरंत इलाज एक अच्छे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ पे कि आपको सारी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके। अगर संभव हो तो होल बॉडी हाइपोथर्मिया भी दी जानी चाहिए, तो ये समस्या है। अच्छा, अब इससे जब बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रोता है तो क्या होता है, एक तो हो गया ब्रेन को नुकसान, क्यों नुकसान तो शरीर के हर हिस्से को होता है,
1: बिल्कुल
0: लंग्स को भी नुकसान होता है। कई बार ये बच्चे जब ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर होती है तो वो मीकोनियम पास कर देते हैं, है? मीकोनियम बच्चे की फर्स्ट पॉटी को मीकोनियम बोलते हैं,
1: जी,
0: और उस मीकोनियम की जो अगर सांस में चले जाते हैं तो कई बार मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम डेवलप होता है,
1: फेफड़े में चला जाता है।
0: जी, तो उसमें बच्चे की सांस बहुत खराब होती है, और उसमें फिर एक चीज और बहुत कॉमन होती है जिसको हम लोग PPHN बोलते हैं, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वहां पर अक्सर कई बार आपको हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर की भी जरूरत पड़ जाती है, उन बच्चों को ऑक्सीनेशन मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कई बार इन बच्चों के साथ साथ होता है, बर्थ एस्फिक्सिया के बच्चे हैं। अब ये एक तो हो गया आपका ब्रेन इंजरी, दूसरा लंग इंजरी, तीसरा हार्ट में मायोकार्डियल डिसफंक्शन होता है, क्यों जो हाइपोक्सिक इंजरी हार्ट को हुई उसकी वजह से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, कई बार इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, या कई बार टैकीकार्डिया होता है, या फिर अरिदमियाज होते हैं, तो हार्ट इन्वॉल्वमेंट भी होता है। फिर बच्चों का जो GIT है, गट है, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे कि दूध डाइजेस्ट करने में इनको प्रॉब्लम आती है, हाथों में भी समस्या आती है। फिर सबसे AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, कि बच्चों के जो गुर्दे हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और उनको पेशाब होना कम शुरू हो जाती है, बाद में उनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ये बढ़ने लगता है। सबसे जो पहले मार्कर बढ़ता है उसको हम लोग NGAL बोलते हैं, तो NGAL अगर बच्चे का किसी का बड़ा हुआ फर्स्ट डे तो उसको इस बात के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि उसको AKI होगा, और उसको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इन बच्चों को जब जिन बच्चों को AKI हो जाता है और आउटपुट बिल्कुल नहीं होता, पेशाब नहीं होती, तो उनके लिए फिर हम लोगों को डायलिसिस भी करनी पड़ती है, जिसको हम लोग PD बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो उसमें जो पेरिटोनियल फ्लूड डाल के फ्लूड को साइक्लिंग करते हैं और उसमें फ्लूड डालते हैं, फ्लूड निकालते हैं, तो उससे हमें सैलवेज हो जाता है कि

0: के इंजरी की वजह से जो आपके प्रोडक्ट्स बच्चे के शरीर में बढ़ते जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है, उसकी वजह से जो नुकसान होता है
1: जी,
0: उसको आप बढ़ने को कम कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम बढ़ने लगता है जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, तो उसको मैनेज करने में आपको ईजी हो जाता है। तीसरा, आपका जो फ्लूड मैनेजमेंट है उसमें ईजी हो जाता है। वरना क्या होता है, जब पेशाब नहीं हो रही, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, आईवी फ्लूड दे रहे हैं, ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे हैं, तो बच्चे शरीर में जा रहा आ कुछ भी नहीं रहा, तो फ्लूड ओवरलोड हो जाता है। उधर मायोकार्डियल इंजरी होती है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है फ्लूड पंप करने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों को एडिमा होने लगता है, सूजन आने लगती है। तो AKI हो गया और ऐसे बच्चों का इनका जो दूध हम जब देना शुरू करते हैं, पहला दूध कोशिश होना चाहिए माँ का ही दूध दें। ये दूध बच्चे पी तो सकते नहीं, तो इनको EBM मतलब एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, माँ का दूध निकलवा के और नली से देते हैं, जिसको एनजोगेस्ट्रिक फीडिंग बोलते हैं। तो वो दूध जितना जल्दी हो उतना जल्दी देना शुरू करना चाहिए, जिससे कि आंत ठीक से काम कर सके, और फिर धीरे धीरे उस दूध को बढ़ाना होता है। आपको जो दूध देना शुरू करते हैं तो कई बार ये दूध डाइजेस्ट नहीं करते, और आपके जो दूध बढ़ाने का जो रेट है वो बहुत धीमे रखना पड़ता है। और फिर एक दिक्कत और आती है, चूंकि ये बच्चे बहुत कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो इनको सेप्सिस होने का चांस बहुत रहता है।
1: अच्छा,
0: जिसे हिंदी में बोलते हैं जहरबाद। तो सेप्सिस होने पे इनको आपका दुनिया भर की परेशानी आना शुरू होती है। आपको फिर ब्लड कल्चर करा के उनका कौन से बैक्टीरिया, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देना पड़ती है, है ना, और दूसरी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तीसरा, कई बार प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है
1: जी।
0: या फिर लीवर डिसफंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से प्रोथंबिन टाइम और APTT और INR आपका चेंज होने लगता है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो वहाँ पे आपको FFP भी चढ़ाना पड़ता है, या कई बार प्लेटलेट कंसंट्रेट चढ़ाने पड़ते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से कई बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आपको RBC ट्रांसफ्यूज करने होते हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो सेप्सिस से बचाना होता है। सेप्सिस ना हो तो उसके लिए आपको, आपका जो स्टाफ है वो पूरा एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करे प्रॉपर से। और जो बच्चे अक्सर ये वेंटिलेट करने पड़ते हैं, तो वेंटिलेशन की भी अपनी अलग समस्या है। कई बार बच्चे ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होते हैं।
1: अच्छा।
0: बैप बोलते हैं इसको।
1: जी जी,
0: तो वो हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है, और शरीर का हर हिस्सा इस तकलीफ में इन्वॉल्व हो जाता है
1: जी। मुन्ना लाल जी, और क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, समस्या भले ही एक छोटी सी थी कि बच्चा नहीं रोया, कहने के लिए तो ये है कि पैदा होने के बाद बच्चा नहीं रोया।
0: नहीं रोने का मतलब हुआ बच्चे ने ठीक से अपनी सांस नहीं ली, और बच्चे के एक तरह से दम घुटता रहा, और जब दम घुटेगा तो शरीर का हर हिस्सा जवाब देगा,
1: बिल्कुल,
0: चाहे ब्रेन हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे गट हो, इंटेस्टाइन हो
1: जी,
0: इवन हमारे जो प्रतिरोधक डिफेंस सिस्टम है वो भी
1: इफेक्ट हो जाता,
0: कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, और बच्चे को सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो जहरवाद वाली बात आपने बताई, बच्चा रंग बदलने लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा रंग बदल रहा है, तो तरह तरह की भ्रांतियां भी लोगों में आती हैं कि साहब ये कोई हवा का चक्कर है,
0: देखिए रंग बदल रहा है। जी जी जी पांडे जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये नवजात शिशु जिसको आप कह रहे हैं रंग बदलता है, उसमें कई वजह हो सकते हैं। देखिए, जब नवजात शिशु को शॉक में होता है, शॉक मतलब दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, परफ्यूजन अच्छा नहीं, तो बच्चा सफेद सा दिखता है।
1: अच्छा,
0: तो बच्चा दूसरा, अगर बच्चे को पीलिया बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चा
1: पीला
0: दिखता है
1: जी।
0: बच्चे को अगर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, और बच्चा ऑक्सीजन कमी की वजह से नीला पड़ने लगा, तो बच्चा नीला हो गया। और एक और बच्चे का कलर होता है जिसको लोग ग्रेइश बोलते हैं, वो बच्चा जिनको सेप्सिस हो जाती है उनका ग्रेइश लुक हो जाता है, स्लेटी सा रंग
1: जी जी,
0: तो उसको हम लोग ग्रेइश या सेप्टिक लुक बोलते हैं
1: जी जी।
0: तो सेप्टिक लुक हो सकता है जॉन्डिस की वजह से, पीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, उसकी वजह से खून की कमी की वजह से भी सफ़ेद हो सकता है बच्चा
1: जी जी जी।
0: अगर ब्लीडिंग कहीं से हो जाए
1: जी,
0: है ना,
1: तो बच्चे का रंग बदलना कोई ऊपरी हवा का चक्कर नहीं बल्कि अंदर की समस्या है।
0: जी जी, बच्चों को, इन बच्चों को दौरे भी पड़ते हैं,
1: दौरे
0: पड़ते हैं, तो इनका पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो कम्प्रोमाइज होते हैं, तो उस समय आपका परफ्यूजन कम हो जाता है, वो सफेद पड़ने लगते हैं।
1: जी जी जी, डॉक्टर साहब, जो बच्चे के ना रोने की बात है, जन्म के तुरंत बाद बच्चा अगर नहीं रोया और उसके बाद कुछ गोल्डन आवर्स की बात भी आप लोग करते हैं, कितने समय के अंदर उसको सही जगह पर, या ये कहें कि एक ऐसे अस्पताल में जहां नवजात शिशुओं के इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां पहुंचाना जरूरी होता है, समय का क्या महत्व?
0: जी, समय का महत्व तो इसलिए बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे समय बीतता है

0: वैसे वैसे जो हमारी ब्रेन इंजरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो होना शुरू हो जाती है। कायदे से तो इन बच्चों को 3 मिनट के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना
1: तीन
0: चाहिए,
1: मिनट के अंदर
0: 3 मिनट के अंदर,
1: जी जी
0: क्योंकि 3 मिनट के बाद हमारे ब्रेन में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली देखो, किसी को जो अगर 3 मिनट किसी को सांस ना लेने दो आप,
1: जी जी
0: तो जीवन समाप्त।
1: जी बिल्कुल सही बात है।
0: लेकिन
1: 3 मिनट
0: नवजात शिशुओं की क्षमता ईश्वर ने दी है कि वो कई बार ठीक से 3 मिनट तक सांस नहीं लें, फिर भी वो जीवित बच जाते हैं।
1: सर्वाइव करते
0: एडल्ट
1: हैं,
0: के पास ये क्षमता नहीं
1: नहीं
0: है
1: है
0: कि 3 मिनट वो सांस ना ले और बच
1: जी,
0: जाए,
1: बिल्कुल सही बात है
0: या
1: डॉक्टर
0: कोई
1: साहब।
0: उसका 3 मिनट के लिए गला दबा ले और वो बच जाए। तो नवजात शिशु को जब ये दिक्कत आना शुरू होती है और 3 मिनट के अंदर कायदे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो इसका मतलब पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट भाई उपस्थित होना चाहिए जहाँ
1: जी
0: बच्चे की
1: जी
0: डिलीवरी हो रही है।
1: बिल्कुल, जन्म के समय डॉक्टर का मौजूद रहना जरूरी है।
0: जरूरी है, खासतौर से नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ का।
1: जी
0: अब अगर मान लीजिए वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो फिर दूसरा है कि ये फर्स्ट आवर, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं,
1: जी
0: वो आवर बहुत जरूरी है। और उस आवर में अगर बच्चा आपको मिल जाता है तो उसके कई एडवांटेज हैं। आप बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर लेते हैं, दूसरा आप बच्चे को स्टेबलाइज कर सकते हैं, तीसरा बच्चे को आप होल बॉडी हाइपोथर्मिया दे सकते हैं, चौथा आप जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो कम होंगे क्योंकि नुकसान आपको कम हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें निश्चित ही बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो आपसे जरूर जानना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो ये स्वाभाविक है, जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोएगा, लेकिन क्या ऑपरेशन में भी यही होना चाहिए? ऑपरेशन के तुरंत बाद जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो क्या उसे रोना बहुत जरूरी है?
0: देखिए रोना तो देखो, चाहे बच्चा बाहर आ रहा है ऑपरेशन से, चाहे बच्चा आ रहा है पैदा हो गया नॉर्मल,
1: जी
0: दोनों को सांस लेनी पड़ेगी तभी तो जीवन शुरू होगा।
1: बिल्कुल
0: तो उस बच्चे को भी रोना जरूरी है जो नॉर्मल ऑपरेशन से हो रहा है, और जो बच्चा नॉर्मली पैदा हो रहा है वो भी, उसका भी रोना जरूरी है। तो कई बार बल्कि एस्फिक्सिया उन बच्चों में ज्यादा होता है जहाँ पे नॉर्मल ट्राई करते रहते हैं, फंस जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में पड़ा रहता है, वो बच्चे को ना तो माँ से सप्लाई मिल रही, ना बाहर से अपनी सप्लाई शुरू हो पा रही, त्रिशंकु वाली हालत हो जाती, ना इधर का ना उधर का, तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा डैमेज होता है। इसलिए जो आजकल के मेट्रिटिशियन या लेडी डॉक्टर्स हैं, वो पहले से डिसाइड करके कि हाँ इसको प्लान सीजीरियन करना है, इसको नॉर्मल ट्राई करना ही नहीं है।
1: जी जी जी
0: तो बहुत कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कि आप
1: नॉर्मल ट्राई नहीं कर
0: नहीं
1: सकते।
0: करते हैं, जैसे कि कई बार हुआ कि ट्रांसवर्स लाई है या बच्चे को प्लेसेंटा प्रीविया
1: जी
0: है, या फिर कई बार बच्चा ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पा रही है अंदर,
1: जी
0: या
1: जी
0: आपका पहले 2 सीजरियन ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप नॉर्मल ट्राई नहीं करते, कहीं जो पिछले सीजरियन से उनके जो स्टिचेस हैं वो आपके खुल ना जाए,
1: जी जी
0: है ना,
1: कई रिस्क होते हैं।
0: कई रिस्क होते हैं।
1: जी
0: तो एक एक ही प्लांट सीजरियन होता है, एक होता है कि बच्चा ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में आ गया, अब नॉर्मल पैदा नहीं हो पा रहा है तब
1: जी
0: सीजरियन
1: तब
0: हुआ,
1: से जी
0: तो
1: हुआ
0: उस सीजरियन में भी वो बच्चे के ना रोने के चांस है क्योंकि
1: जी
0: वो ऑलरेडी कम्प्रोमाइज हो चुका है।
1: जी जी
0: अगर उस बच्चे की पैदाइश नॉर्मल भी हो जाए तब भी वो कम्प्रोमाइज है, तब भी
1: बिल्कुल
0: वो पैदा होने के बाद दिक्कत करेगा।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: कोई भी बच्चे पैदा होने के बाद अगर तुरंत नहीं रोता है, सांस प्रॉपर सही से नहीं आती है, बच्चा कुन कुन कुन कुन कुन और उसके बाद बच्चा किन्हाना शुरू कर देता है, तो उस बच्चे को आप घर में लेके ना बैठे। और अगर उसकी सांस खराब है, सांस तेज चल रही, बच्चे को सांस ठीक से नहीं आ रही, तो देहात के चक्कर में ना पड़े, वहाँ पे वो कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा कह देते हैं निमोनिया हो गया पैदा होते ही,
1: जो
0: और
1: कि
0: ये
1: गलत है।
0: वो गलत है, वो इलाज नहीं है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि फिल्मों में कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, उसके पैर से पकड़ के उसे उल्टा किया और उसकी पीठ थपथपाते हैं, ये कोई प्राकृतिक क्रिया है क्या? ऐसा
0: नहीं
1: करना
0: नहीं नहीं
1: उचित है?
0: ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए इसको।
1: जी
0: इसकी वजह से बच्चे के IBH हो सकता है और बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित ना करें और ऐसे बिल्कुल भी ना करें। खास तौर से कई जगह जहाँ पे लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ANM है या GNM है या और डिलीवरी करा रहा
1: मतलब
0: है
1: जो प्रशिक्षित लोग
0: तो
1: नहीं है
0: नहीं
1: अगर।
0: है, और वो अगर बच्चा ऐसा है तो लटका के ये काम बिल्कुल ना करें। आप उसको ये कर सकते हैं कि बच्चे को क्लीन करके उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे सकते हैं पैर में या तलवे में, हल्की सी उंगली मार के, या उसको जो पीठ में आप थोड़ा स्टिमुलेशन दे सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए,
1: जी
0: या फिर आप बहुत हल्के से उसको थपथपा सकते हैं जिससे कि वो सांस लेने लगे।
1: लेकिन उल्टा नहीं करना है,
0: उल्टा बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना है।
1: जी, वाकई में जो फिल्मी बातें हैं उन्हें फिल्मों तक रहने दे और अपनी
0: आजकल की फिल्मों में नहीं दिखाते, वो पुरानी फिल्मों में दिखाते।
1: जी जी, लेकिन पुराने लोग घर में होते हैं तो वो अपनी बात पहले आगे रखते हैं कि हम अनुभवी हैं।
0: नहीं, जमाना जैन जी का।
1: जी, जमाना बली।

0: जैन जी का हो डॉक्टर साहब, लेकिन बातें सभी हमारे श्रोताओं को पता होनी चाहिए, ये जरूरत है आज की। सर
1: ऐसा नहीं है, जैन जी को बहुत कुछ पता है, वो हम लोग उनके कांटेक्ट में जब आते हैं तो पता लगता है उनका लेवल क्या है। वो हम लोगों के पास जब पहुंचते हैं ना, पूरा चैट जीपीटी गूगल पूरा देख के पहुंचते हैं, और वो एक एक दवाई को फिर चैट जीपीटी पे गूगल पे करके देखते हैं डॉक्टर साहब ने दवाई किस चीज के लिए दी है।
0: जी।
1: और कोई भी आप फालतू दवाई दे दो तो ये क्यों दिए, इसको ये तो गूगल मना कर रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये बातें अपनी जगह है, लेकिन एक जो सही जानकारी है, चूंकि आप एक वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन है सर, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और लंबा अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपसे जो बात हमारे श्रोताओं को मिलेगी निश्चित ही उनके फायदे की होगी। यहाँ पर बात है बच्चे के तुरंत न रोने की, और क्या करें शंकाएं और समाधान की बात भी हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत तरह की मशीनों के नाम लिए, बहुत तरह की प्रोसीजर बताए, जो बच्चे अगर नहीं रोते हैं तो उनके साथ ये हो सकता है, ये करना पड़ सकता है, और क्या खास बात बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अगर कोई बच्चा तुरंत बाद नहीं रोया लेकिन कुछ समय के बाद रोया, तो उसका जीवन कैसा रहता है फिर बाद में?
1: जी, ऐसा 1000 डिलीवरी में सिर्फ 10% डिलीवरी ऐसी होती है जहाँ पे कुछ असिस्टेंस देने की डॉक्टर को जरूरत होती है।
0: अच्छा।
1: बाकी 990 डिलीवरी में कोई ज्यादा
0: नहीं होती,
1: किसी प्रकार ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती।
0: अच्छा।
1: तो 1000 में 10 बच्चों के लिए आपको डॉक्टर्स के लिए वो इमरजेंसी होती है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेट करना पड़ता है उसको, बच्चे को आपको कार्डिक वो भी देना पड़ता है, पल्सेशन और आपको रेस्पिरेशन भी देना पड़ता है, और उन 10 में से भी एक बच्चा बहुत सीरियस होता है।
0: अच्छा।
1: 0.1%
0: जी, 0.1% रह जाता है।
1: तो उन बच्चों को आपको सब कुछ करना पड़ता है, और वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर सांस नहीं ले रहा है तो पहला काम तो ये कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा मुंह साफ करके और उसको अच्छे से कॉटन में लपेट दें, या कपड़े में, साफ कपड़े में लपेट कर उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे दें, उसकी पीठ को सहला दें या थपथपा दें, और उसके जो तलबे को उसको थोड़ा सा स्ट्रोक कर दें। अगर बच्चा सांस लेने लगे तो अच्छी बात है, अगर बच्चा नीला पड़ रहा और उसका SpO2 लेवल कम हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन लगा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लगा के फिर अपने पास ना रखें, बच्चे को तुरंत शिफ्ट करने की व्यवस्था करें, क्योंकि आने वाले टाइम में उस बच्चे की परेशानी बढ़ सकती है। एक चीज़, अब बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है, उसका सिर्फ दिल काम कर रहा है, तो आपको फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो वो आते हैं एम्बू बैग, जिनको आप मुंह पे लगा के और बच्चे को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन,
0: ये तकनीकी काम है डॉक्टर साहब जो डॉक्टर को ही करना
1: नहीं, वो कर वो भी सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड नर्सेज हैं आपकी, वो भी एम्बू बैग दे सकती हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें ऐसे कुछ बहुत बड़ा स्किल्ड वाला काम नहीं है।
0: अच्छा।
1: लेकिन एम्बू बैग को रखना, प्रॉपर पोजिशन लगना, और उसकी कितनी उसको प्रेशर देना है, कितनी फिंगर्स से यूज करना है, जो अगर नॉर्मल न्यूनेट नॉर्मल नवजात शिशु है उसमें हम लोग 3 फिंगर्स यूज करते हैं, थंब और 2 फिंगर्स, और जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उसमें 2 थम और वो यूज करते हैं। फिर आपको उसके साथ प्रेशर मीटर भी लगाना चाहिए कि आप कितने प्रेशर से सांस दे रहे हैं, वो बिलो 40 होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: सबसे अच्छा है कि वो बिलो 20 हो।
0: अच्छा।
1: है ना, तो आप प्रेशर मीटर लगाने से आपको पता लगता रहता है कि आप कितने फोर्स से सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन कब दे रहे हैं और कितने परसेंट ऑक्सीजन। वैसे कई बार ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती जितना सांस देने की जरूरत होती है, और आपके पास एम्बू बैग भी नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, तो आप लास्ट में ये कर सकते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अपने मुंह से बच्चे को सांस दे सकते हैं
0: जी,
1: उसमें हो सकता है सांस आना शुरू हो जाए, अगर उसमें उसका दिल भी काम नहीं कर रहा तो आपको कार्डिक कंप्रेशन भी देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको दोनों थंब यूज करके आपको चेस्ट दबाना पड़ेगा 1/3
0: जी,
1: और चेस्ट कंप्रेशन देने पड़ेंगे जिससे कि दिल काम करना शुरू करे,
0: CPR। हाँ,
1: इस अभी तक यहाँ तक
0: जी
1: कोई ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती
0: जी। अच्छा।
1: हाँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है, एक चीज। दूसरा, अगर बच्चा कार्डिक कंप्रेशन देने के बाद उसका दिल आ गया, सांस अभी भी नहीं आ रही, तो आपको बच्चा इंट्यूबेट करना पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: इंट्यूबेट करने के बाद आप बच्चे को एम्बू बैग पे कनेक्ट करके उसको अच्छी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ आगे का मैनेजमेंट हो।
0: डॉक्टर साहब, जितनी बातें आपने बताई है ये बिना प्रशिक्षण के तो शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित
1: नहीं, सरकार हमारी प्रशिक्षण देती रहती है, नर्सेस को भी देती रहती है, डॉक्टर्स को भी देती रहती है, और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वो भी इन सब चीजों का ध्यान रखती है, और नेशनल न्यूट्रोलॉजी फोरम है NNF, वो भी इस तरह के वर्कशॉप कराते रहता है सबको ट्रेन करवाने को, जिसमें आपको एम्बू बैग है, कार्डिक कंप्रेशन देने का है, CPR देने का है, वो सब एक एक दिन दो दो दिन के कोर्सेज होते रहते हैं, नर्सेज के लिए अलग, डॉक्टर्स के लिए अलग, और क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं वो भी वो लोग बता

0: रहते हैं।
1: जी जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि वो कौन सी माताएं हैं जिनके साथ ये संभावना ज़्यादा रहती है कि बच्चा हो सकता है पैदा होने के तुरंत बाद ना रोए। मेरा आशय है आज की आधुनिक जीवन शैली में जो बीमारियों का चलन बढ़ा है, जैसे शुगर की बीमारी कई बार माताओं को होती है, तो कई बार थायराइड की बीमारी होती है, और कई बार दिल की मरीज भी हो जाती हैं महिलाएं, तो वो कौन से बीमारियां हैं जिनके साथ ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं?
0: देखिए, माँ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए
1: जी,
0: और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मदर्स का बीपी बढ़ना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन
1: जी,
0: और अगर ये साथ में स्वेलिंग आ गई तो इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया।
1: अच्छा।
0: और स्वेलिंग के साथ स्वेलिंग हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बाद में दौरे भी पड़ने लगे, तो ये हो गया एक्लेम्पसिया।
1: माता को अगर हो रहा
0: है, माता को तो माँ को दौरे पड़ने, सूजन आ गई और माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, तो ये एक्लेम्पसिया हुआ
1: जी,
0: प्री एक्लेम्पसिया, जिसमें कि माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा
1: जी
0: और सूजन आ गई पूरे शरीर, खासतौर से पैरों पे
1: जी,
0: और अगर सूजन नहीं आई तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है
1: जी,
0: तो
1: अच्छा।
0: उसमें माँ को रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहने चाहिए।
1: अच्छा।
0: ये PIH प्री एक्लेम्पसिया अक्सर 6 मंथ्स के आसपास होना शुरू होते हैं, 6 मंथ्स के गर्भावस्था के बाद।
1: अच्छा।
0: अच्छा, दूसरी चीज है माँ का ब्लड शुगर
1: जी,
0: कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड भी डायबिटीज होती है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपका ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है, और जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है माँ का ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड
1: डायबिटीज।
0: तो इसको आप डिटेक्शन, आप अपने लेडी डॉक्टर दिखा के अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल वो करा के डिटेक्ट कराए, और प्रॉपर शुगर कंट्रोल होना चाहिए। माँ का प्रॉपर शुगर कंट्रोल इंसुलिन से ही होना चाहिए, खाने वाली दवाइयों पे बहुत कम दवाई इस्तेमाल होती हैं जो कि माँ के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल
1: कर, गर्भावस्था में
0: जी, गर्भावस्था में
1: जी जी जी,
0: हाँ उसके बाद तो आप दवाई ले सकते
1: जी जी।
0: अच्छा, तीसरी चीज़ है थायराइड
1: जी,
0: तो कई बार कुछ मदर्स को थायराइड पहले से होती है और कुछ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड हो जाती है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो सकता है
1: जी,
0: बच्चे को हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकती है
1: और डिलीवरी के समय भी समस्या हो सकती है,
0: डिलीवरी समय बच्चा सुस्त हो सकता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है, और डिलीवरी एक बार हो गई और मदर को हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसका करीब 48 घंटे बाद बच्चे का थायराइड लेवल करा लेनी चाहिए, अगर बच्चे को भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी
1: थायराइड
0: की दवा दी जाएगी, और थायराइड की दवाई अगर उस समय मिस हो गई, आपने नहीं दे पाए किसी कारणवश और उस हाइपोथायरॉइडिज्म हुई, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और बच्चे स्लो हो जाता है, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटीज कम हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जागरूक रहने की आवश्यकता है, और विशेष तौर से जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चा नहीं रोता है तो ये कई गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करता है, इसलिए जो गोल्डन आवर्स की बात आपने बताई है,
0: फर्स्ट आवर इज गोल्डन आवर
1: जी, तो वो ध्यान रखनी है, और बच्चे के साथ कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ हों तो समय ना गंवाए, समय रहते उचित स्थान पर एक अच्छे योग्य चिकित्सक से ही इलाज कराएं,
0: लापरवाही ना करें।
1: और इसी के साथ आज की रीड हेल्पलाइन कार्यक्रम से मुझे यानी मुकेश कुमार पांडे को डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी के साथ अनुमति दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, आइए आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों से।

0: for Pakistan, winning the toss, selecting to bat, and for the third time, India losing the toss.
1: और पहली गेंद इस मुकाबले की ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, हालांकि इस गेंद पर बल्लेबाज ने निगाह नहीं डाली, लेकिन अतिरिक्त के रूप में एक रन पाकिस्तान की झोली में आया है, वो रन वाइड के रूप में आया है। क्रांति गौड़ की गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर पिच भी हुई और छोड़कर बैटर को पूरी तरह से बाहर निकल रही थी, निगाह तक नहीं डाली थी। बहुत ज्यादा समर्थन भारत के लिए दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अगली गेंद के साथ तैयार क्रांति, इस बार बहुत बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज को छोड़ती हुई, हल्का सा छोड़कर बाहर की तरफ निकली, बल्ला चला दिया था मुनी।

0: ने किस्मत वाली रही कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया, अन्यथा शुरुआती तौर पर ही पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग सकता था। मुनीबा फॉर्म में चल रही हैं, लेकिन आज भारत की इस गेंदबाजी के सामने, जिसने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया अब तक, उसके सामने कैसी बल्लेबाजी करती है पाकिस्तान की टीम और खासतौर पर मुनीबा, ये देखना होगा। अगली गेंद इस बार मिडिल और लेग स्टंप की, जिसको लगभग फुल टॉस बनाते हुए खेल दिया ऑन साइड में मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर पाकिस्तान का एक रन बगैर किसी नुकसान के। दो गेंदों का सामना अभी तक जो है वो पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा ने किया है। हमने आपको बताया कि यह मुकाबला जो है पाकिस्तान का 200वां इंटरनेशनल T20 मुकाबला है। अगली गेंद को एक बार फिर से, जो कि मिडिल स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाते हुए अपने सामने की तरफ खेला मुनीबा ने, इस बार भी कोई रन नहीं। काफी किफायती गेंदबाजी, सधी हुई लाइन, अनुशासन भरी गेंदबाजी। टॉस आज पाकिस्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उस फैसले को अगर कहें तो अभी तक पाकिस्तान की टीम को साबित करना होगा। पाकिस्तान का यह दूसरा मुकाबला है एशिया कप 2026 का। अगली गेंद को ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से, गैप भी ढूंढने में कामयाब रही मिस फील्डिंग, और इस मौके पर फील्डर भाग रही गेंद को उठाने के लिए, बाउंड्री लाइन के करीब 2 से 3 गज अंदर इस गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक पूरा मौका है भाग कर 3 रन पूरा करने का, और वो 3 रन आसानी के साथ पूरे हुए। इन 3 रनों के साथ पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के। इस बार जगह दी थी ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद पिच होने के बाद लगभग फुलर लेंथ की गेंद थी, और उसको ड्राइव किया खूबसूरत तरीके से पॉइंट और कवर के बीच से, बढ़िया 3 रन। फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी, और इन 3 रनों से पाकिस्तान के स्कोर में इजाफा हुआ, 5 रन पर पहुंच गई है पाकिस्तान की टीम, बल्कि 4 रन पर है। पहला रन अतिरिक्त के रूप में आया था, और ये 3 रन बल्ले से आए हैं। इस ओवर की 2 गेंदें अभी बची हुई हैं। अगली गेंद इस बार सीधी गेंद ऑफ स्टंप पर, जिसको आगे आते हुए सम्मान दिया पूरी तरह से बल्लेबाज शवाल ने, सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज की तरफ इस गेंद को खेला, रन की कोई संभावना थी नहीं, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। जहां तक इस मैच में भारतीय टीम की बात है, 2 तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़, इसके साथ साथ 3 स्पिनर्स टीम में शामिल। अगली गेंद इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराई शवाल के, और परिवर्तन के तौर पर ऑन साइड में गई मिड ऑन की तरफ, रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 पाकिस्तान का बगैर किसी नुकसान के।
1: So four without loss, Pakistan winning the toss and electing to bat here at the Dubai International Stadium, and Pakistan today winning the toss and making no change from the team that beat Thailand the other day, India too continuing to trust the same 11 players that quite comprehensively beat the Hong Kong China team the other day. Quickly, for the benefit of late tuners, I shall run through the composition of the two teams. The Indian team, Smriti Mandhana, Shaif Ali Varma, Pratika Rawal, Harmanpreet Kaur, Bharti Fulmali, Richa Ghosh, Dipti Sharma, Prema Rawat, Nandini Sharma, Sri Charani and Kranti Gaut. It is going to be Nandini who will be now bowling to the left-handed Munima, who has been in good nick, made 54 in that last game. But that's a good ball that came back sharply into the left-hander, and Muniba onto the front foot on that occasion, a bit jittery, not playing with all that conviction, but nonetheless managing to keep the ball away off the inside edge onto that back pad. The second line of defense coming in to her rescue. Good start to the over from Nandini and Kranti Gaud sharing the new ball have done a fabulous job so far. As here is Nandini in to the left hander, that's been driven beautifully, finds the gap, but there is protection in the deep. A sweeper cover comes in, sending in the return, but not before the batsmen have all the time in the world to get a couple of runs, and that takes the total up to 6 without loss. Over pitch from Nandini, coming on to the front foot on that occasion was the left-hander, and Muniba driving

0: crucial game. They call it as the mother of all the battles, a titanic clash, a high-octane match between India and Pakistan. But if you really go according to the statistics, you can't really call it as the mother of all battles, because India have thoroughly dominated. Last ball of the fourth over coming up. Here is the next ball into the left hand, and that's been swung away. She'll get only a single for it because there is protection in the deep. And after four overs, the total for Pakistan winning the toss and batting first is 23 for no wicket.
1: तो कुल मिलाकर अभी तक पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के चार ओवर की बल्लेबाजी के बाद, और नंदिनी शर्मा ने अपना दूसरा ओवर समाप्त किया. इन दो ओवर्स में उन्होंने 14 रन खर्च किए हैं. मुनीबा अली 9 रन बनाकर अभी भी मैदान पर हैं. 6 रन पर उनको जीवन दान मिला था, और शवाल ने अभी तक 13 रन बनाए. कहा जा सकता है कि पिछले ओवर में उनको भी एक जीवन दान मिला. रन आउट करने का एक बढ़िया मौका था, मिड ऑफ पर गेंद को खेला था, वहां पर शेफाली वर्मा फील्डर थी. गेंद को पहले प्रयास में अगर उन्होंने पकड़कर गेंदबाज की तरफ थ्रो कर दिया होता तो रन आउट का वो एक बढ़िया मौका था. काफी दूर थी बल्लेबाज क्रीज में पहुंचने से, लेकिन वो मौका भी भारत के हाथ से गया. गेंदबाजी में एक परिवर्तन, शेफाली वर्मा अब गेंदबाजी के लिए आई है. पहला ओवर पहली गेंद बाई हाथ की बल्लेबाज मुनीबा के लिए ऑफ स्टंप पर, आर्म के सहारे ये गेंद अंदर आती हुई, और उसको मुनीबा ने आगे आते हुए खेल दिया कवर की तरफ. रन नहीं मिलेगा. अभी भी स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरी गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लॉब किया लॉन्ग ऑन की तरफ, और फील्डर वहां पर थी लेकिन क्रीज से बाहर, वो थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर चली गई थी. क्रीज से बाहर निकलकर यह स्ट्रोक खेला था, एक मौका हो सकता था, लेकिन उस मौके की जगह चौका मिला है पाकिस्तान को, और बढ़ता हुआ स्कोर 27. क्रीज से बाहर निकले, लॉब किया, फील्डर थी वहां पर लेकिन बाउंड्री लाइन से काफी अंदर आ गई थी, जिस वजह से इस गेंद को लपक नहीं सकी, इस कैच को लपक नहीं सकी, और एक और मौका भारत के हाथ से जाता हुआ. आज भारतीय फील्डिंग उस स्तर की दिखाई नहीं दे रही जिस तरह का प्रदर्शन पिछले मैच में भारतीय फील्डर्स ने किया था. तीन मौके कम से कम अभी भारत के हाथ से निकले हैं, और अगली गेंद क्लीन बॉल, एक विकेट भारत के लिए आता हुआ. अंदर आती हुई गेंद आर्म के सहारे, उसको कट करने का प्रयास किया मुनीबा ने, और सीधा गेंद उनको छकाती हुई जाकर स्टंप पर टकराई. पहली सफलता भारत के लिए 27 पर. मुनीबा आखिरकार वापस जा रही है ड्रेसिंग रूम में, और भारत के लिए राहत की सांस, क्योंकि 6 रन पर उनको जीवन दान मिला था, और शेफाली वर्मा ने आते ही भारत के लिए सफलता अर्जित की है. 27 पर मुनीबा अली का विकेट पाकिस्तान ने गंवाया है. 13 रन बनाए मुनीबा ने. कुल मिलाकर गेंदों का जो उन्होंने सामना किया, 15 गेंदों का सामना करने के बाद वो मैदान से बाहर गई हैं. इसमें एक चौका शामिल था. अब नई बल्लेबाज मैदान पर, गुल फिरोजा. तो आते ही एक सफलता शेफाली के जरिए. हालांकि शेफाली पिछले ओवर में अगर मिस फील्डिंग न करती तो एक विकेट वहां पर भी भारत के लिए आ सकता था, लेकिन गेंदबाजी के जरिए उन्होंने वो अधूरा काम पूरा किया है. कुल मिलाकर ये एशिया कप का 10वां संस्करण, और इस बार 8 टीमों के बीच 12 मैच खेले जा रहे हैं. श्रीलंका इस टूर्नामेंट का पिछला चैंपियन है, जबकि सबसे अधिक 7 बार भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीता है. वनडे में जब ये टूर्नामेंट खेला गया वनडे फॉर्मेट में, तब 4 बार भारतीय टीम चैंपियन बनी, और T20 में 3 बार खिताब जीता. अगली गेंद शेफाली की, इस बार बैकफुट पर जाकर फिरोजा ने इस गेंद को खेल दिया कवर की तरफ, रन नहीं मिलेगा. बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कट करने का प्रयास था मुनीबा का, और पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूकी थी और स्टंप्स पर जाकर गेंद टकराई थी. बढ़िया ओवर चलता हुआ, अगली गेंद भी सुरक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए मजबूर हुई फिरोजा. अभी भी स्कोर पाकिस्तान का 27, एक विकेट के नुकसान पर. 5वां ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद आनी बाकी है. शेफाली वर्मा ने भारत को पहली सफलता अपने इसी ओवर में दिलाई है. जिस गेंद पर उनको विकेट मिला उससे पहले की गेंद पर एक चौका जड़ा था, और अगली गेंद पर भी

0: Pablo Guimin. Up goes the finger. That one was a slower one, picking up a wicket. And two wickets in the very first over. Ayesha was looking to sweep, was beaten once again by the lack and the paucity the ball generated. The ball might have kept a bit low. In fact, it hit the batter well above the knee roll. And a very loud shout for LBW. The umpire taking her time, giving the batter out. So Shahwaz Zulfikar, LBW Sujani for 14 or 14 balls. And Pakistan now in dire straits, have lost 3 wickets for 29 runs as we come to the end of the power play.
1: तो पावर प्ले की समाप्ति हो गई है और पाकिस्तान की टीम पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक 3 विकेट भारतीय टीम ने झटक लिए हैं पाकिस्तान के। 29 रन पर तीसरे विकेट का पतन हुआ है। अब नई बल्लेबाज मैदान पर आएंगी। शवाल 14 रन बनाकर आउट हुई हैं। पहला विकेट मुनीबा अली का पाकिस्तान ने गंवाया, जब शेफाली वर्मा ने उन्हें अपने पहले ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। 13 रन बनाकर आउट हुई, 15 गेंदों का सामना किया था, एक चौका लगाया। उसके बाद दूसरा विकेट पाकिस्तान ने गुलफिरोजा का गंवाया, वो छठे ओवर में आउट हुई और उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई, दीप्ति शर्मा गेंदबाजी पर आई हैं। पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेला, रन नहीं मिलेगा। तो शवाल जुल्फिकार बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, 14 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रही थी, लेकिन पिछले ओवर में शिचरणी की गेंदबाजी का शिकार हुई। अगली गेंद इस बार दीप्ति शर्मा की, लेग स्टंप को छोड़ती हुई स्वीप करने का प्रयास आयशा का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक अपील हुई जरूर गेंदबाज और विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन उस अपील को अंपायर ने नकारा। फिर से स्टंप्स की लाइन में गेंद, स्वाइड थी थोड़ी गेंद में, ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद टर्न होकर बल्लेबाज की तरफ आ रही थी, जिसको बैकफुट पर जाकर आराम से लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए खेल दिया। और इस एक रन के जरिए आयशा 2 रन पर पहुंच गए। बहुत ही जबरदस्त ये 2026 रहा है शिचरणी के लिए। अगली गेंद फिलहाल दीप्ति शर्मा की, जो इस टूर्नामेंट के लिए भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं, 6 विकेट ले चुकी हैं पिछले 2 मैचों में। शिचरणी ने 18 मैचों में इस साल 33 विकेट लिए हैं और सबसे सफल गेंदबाज भारत की। अगली गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर गेंदबाज की तरफ वापस खेला, रन के लिए जाना चाहती थी, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका दीप्ति शर्मा ने और एक ही एक्शन में थ्रो कर दिया विकेट कीपर की तरफ। हालांकि सुरक्षित अपने क्रीज में वापस लौट गई बल्लेबाज सदाफ शम्स। एक और विकेट का इंतजार भारत को, दबाव में समय पाकिस्तान की टीम। अंतिम गेंद दीप्ति शर्मा की, ओवर की इस बार फ्लाइट थी गेंद में, जिसको क्रीज से बाहर निकलकर मिड विकेट की तरफ खेला, एक रन के लिए भाग पड़ी और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पाकिस्तान का स्कोर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स के बाद।
0: So 31-3 Pakistan after having won the toss and elected to bat, and at one point of time they were 27 without loss, with Muniba Ali and Shawal Zulfikar going on well. And I'm sure at that point of time not even the most optimistic of the Indian supporters would have ever imagined that Pakistan would be looking down the barrel. But that's how cricket is played, and that is why it is called as a game of glorious uncertainties. Unpredictability is the essence of the game, and the Indian spinners doing a fantastic job. Shefali Verma, Sri Charni and Dipti bowling quite well indeed, and Sri Charni in the very first over picking up 2 crucial wickets of Shafal Zulfikar, and Gulfiroza was out without scoring. It is going to be Sri Charni yet again with a current run rate of 4.43. Pakistan are tottering on the brink of disaster. 31-3. Here is Sri Charni, tall left arm round the wicket, keeping the ball well up

0: coming onto the front foot and finding the gap on the offside is Sadaf. Now they need a partnership here for the fourth wicket. The alarm bells have started ringing and the SMS messages have been flashed for Pakistan. They need the two batters to bring all their experience into play and to extricate Pakistan from the jaws of collapse. They lost the first wicket when the score was 27. Muniba was out at 28. Gul Firoza, and at 29, Shahwal was dismissed. Here is Krichani. Once again, good fielding placement. We have a fielder at slip at this time. That's been driven straight to the fielder at Baran, which is the Indian captain, Harmanpreet Kaur, in her 150th T20 match as captain, has taken a wonderful catch. And Pakistan then have lost yet another wicket, 32 for 4, with Sri Chandni picking her third wicket. Continuing her good form, Sri Chandni tossing the ball up, and Ayesha on that occasion couldn't really resist the temptation. The idea was right, the execution wasn't. She wanted to hit the ball over the fielder at Madan, but it was the Indian captain Harmanpreet Kaur who kept her eyes on the ball till the last moment. And held it gleefully. So two of seven balls, and Pakistan then certainly digging a hole for themselves. And I thought after that 27 runs partnership, when Pakistan, Dhanvaramani Ragesh, when the Pakistan batters look back, they will be disappointed with the performance, because some of the shots that they have played certainly were not justified in the context of the game.
1: Bilkul sahi kaha apne. Pakistan ki team pata nahi kis jaldbazi mein dikhai de rahi hai. अनावश्यक स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश की वजह से उन्होंने विकेट्स गंवाए हैं. बहुत सारी हड़बड़ाहट उनकी बल्लेबाजी में दिखाई दे रही है. मुनीबा अली को भी हमने देखा कि आज उस लय में नहीं थी जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जानी जाती हैं. हालांकि अब नई बल्लेबाज मैदान पर आई हैं, कप्तान खुद, और इस गेम को उन्होंने सुरक्षात्मक तरीके से खेला है और रन कोई भी नहीं मिलेगा. फातिमा सना नई बल्लेबाज, 65 मैच, 800 रन बनाए हैं. स्ट्राइक रेट 135 की उनकी जरूर है, लेकिन इस समय पाकिस्तान को जरूरत है कि एक साझेदारी बने ताकि एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा हो सके. इस बार फिर से टॉसअप किया था इस गेंद को, जिसको सुरक्षित तरीके से अपने सामने खेल दिया गेंदबाज की तरफ वापस कप्तान ने. फातिमा सना, अभी तक स्कोरिंग की शुरुआत उनकी नहीं हुई है.
0: So pushing it on the on side, the last ball coming up, and what an excellent bowling display this has been from Sri Chandni, picking up three wickets. That's a quicker one, flatter through the air, and the batter can do no more. Fatima, the captain, and the ball since last boundary is 21, says our scorer Bhagwat Singh Rawat, who along with a very agile statistician Pradeep Kumar Tumbe have been providing us with all the details that we have been able to pass on to the listeners of Akashwani. The last ball coming up, current trend rate has dropped down considerably, 4.09, as this time down the leg side, an appeal has been made for a catch. Will it be a wide? We'll have to wait and see, but no wide signal. Did the ball graze the pads? But over comes to an end, and after 8 overs, Pakistan with a run rate of 4. Are 32 for the loss of 4 wickets.
1: तो गहरे संकट में इस समय पाकिस्तान की महिला टीम, भारत की महिला टीम के साथ एशिया कप T20 के इस मुकाबले में भारत की टीम, हम आपको बता दें कि पहले ही ग्रुप ए के अपने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और अगर भारत आज ये मुकाबला जीतता है तो उसकी अपने ग्रुप में नंबर वन की जगह तय हो जाएगी. फिलहाल 8 ओवर के बाद स्कोर 32, 4 विकेट के नुकसान पर. इसमें अतिरिक्त का योगदान 1 रन का, 27 रन तक पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार विकेटों का पतन. नए ओवर की शुरुआत प्रेमा रावत, भारतीय टीम के लेग स्पिनर, गेंदबाजी के लिए आई है. पहली गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप की, जिसको सुरक्षात्मक तरीके से अपने विकेटों से दूर ढकेला सदाफ ने. सदाफ शम्स जो अभी तक 2 रन बनाकर खेल रही हैं. पाकिस्तान का वर्तमान रन रेट 3.92 का. अगली गेंद, इस बार फ्लाइट दिया था गेंद में, ललचाया था क्रीज से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपनी क्रीज से ही इस गेंद को सदाफ ने खेल दिया कवर की तरफ. रन नहीं मिलेगा. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी शेफाली वर्मा ने, जब

0: भारत को पहले विकेट की जरूरत थी, दरकार थी, तब शेफाली ने अपने उस पहले ओवर में सफलता दिलाई थी। इस बार इस गेंद को खेला है कवर बाउंड्री की तरफ, स्वीपर कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, मिस फील्डिंग हुई लेकिन उसका कोई फायदा पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ। एक रन तो आना ही था और वो एक रन आया। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33, चार विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चल रहा है प्रेमा रावत का, अभी तक तीन गेंदें उन्होंने की हैं जिसमें एक रन खर्च किए हैं। जरूरत है पाकिस्तान को एक साझेदारी की। अगली गेंद को इस बार सीधे गेंदबाज की तरफ खेला, एक मौका और भारत के हाथ से जाता हुआ। गेंदबाज प्रेमा रावत ने फॉलो थ्रू में एक मौका गवा दिया, सीधे उनके हाथ में गेंद गई थी, फ्लाइट थी इस गेंद में, ताकत जरूर था इस स्ट्रोक के पीछे लेकिन कहीं ना कहीं प्रेमा रावत की निगाह गेंद से हट गई थी, इसलिए मौका भारत के हाथ से जाता हुआ। अगली गेंद इस बार पैड पर टकराई है कपिल, लेकिन इस बीच भागकर पाकिस्तान की दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया है। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34, चार विकेट के नुकसान पर। लेग बाई का यह रन था। फातिमा सना को अभी भी अपना खाता खोलना है, छह गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं प्रेमा रावत, उनकी ही गेंद पर फातिमा सना को जीवनदान मिला था। यह गेंद अंतिम गेंद और इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को स्वीप करने का प्रयास, गेंद की लाइन को चूकी लेकिन अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा और ये अतिरिक्त रन पाकिस्तान के खाते में जाता हुआ वाइट के रूप में। 35 हो गया स्कोर, चार विकेट के नुकसान पर। अभी भी अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक प्रेमा रावत ने इस ओवर में। इस बार भी फ्लाइट दिया और पूरी तरह लाइन चौकी, सदाब क्लीन बोल्ड, एक और विकेट पाकिस्तान का जाता हुआ, पांचवें विकेट का पतन 35 रन के स्कोर पर। नवे ओवर में भारत ने पाकिस्तान की आधी टीम को आउट कर दिया है 35 रन पर। आधी टीम वापस पवेलियन में और सदाब शम्स इस फ्लाइटेड गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, क्लीन बोल्ड हुई और प्रेमा रावत ने यह सफलता अर्जित की है, तीन रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए सदाब शम्स।
1: So this has really been a very pathetic and a very deplorable display of batting by the Pakistani batters. It was the captain Fatima Sana who won the toss this evening at the Dubai International Cricket Stadium, elected to bat, and at one point of time they were 27 without loss, and this is really turning out to be a horror story because from 27 for one they have now plummeted down to a position of complete disappointment and disillusionment. Now 27 runs for the first wicket, and then just look how the figures read. One run for the second wicket, one run for the third wicket, three runs for the fourth wicket, three runs for the fifth wicket. These have been the partnerships, and I think one should appreciate the way Harmanpreet Kaur has handled the bowling, as here is the first ball into the right-hander. Fatima is struck on the pass by Deepthi, and she's been given out LBW. This is the collapse of the highest order. They have lost the wicket of Fatima to a ball from Deepthi, which was a slow one, once again spinning back, and she was on to the front foot, completely missed the line, given out LBW, and we have 20 overs to be bowled in the first innings, the second in the other section of the game as well. And Dharmendra Mani Rajesh, are we going to have a scenario where we have a match completed in the first session itself?
0: संभावना तो अभी तक ऐसी ही दिखाई दे रही है, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम कोलैप्स हुई है, 27 तक कोई विकेट नहीं और 35 रन तक 6 विकेट पाकिस्तान ने गवा दिए हैं, उसमें कप्तान फातिमा सना का विकेट भी अब शामिल हो गया है। तो कितने ओवर पाकिस्तान की टीम खेल पाएगी? 20 ओवर उनको खेलने हैं, क्या पूरे 20 ओवर की बल्लेबाजी पाकिस्तान की टीम कर पाएगी? अब ये सवाल, क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से पाकिस्तान का बिखर चुका है, निचले क्रम की बल्लेबाजी बची हुई है और निचला क्रम भारत की इस टॉप क्वालिटी की गेंदबाजी का किस हद तक और कैसे सामना करेगी, ये बड़ा सवाल इस समय जरूर है।
1: Yes, so the Indian bowlers then have run through this very pathetic Pakistan batting lineup like a power saw through soft timber. There has been no resistance at all. Cricket is always interesting when

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने

0: इस 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to

0: Imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत की राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर सड़कें पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026।

0: पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म तमाशा से। आवाज मोहित चौहान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत AR रहमान का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म ताल से। आवाज़ें आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण की थी। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म साथिया से, आवाज़ सोनू निगम की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत AR रहमान का।
1: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता में गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रोजा से, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की, गीत के बोल पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों आज के फनकार हैं निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा।
1: सोचो के झीलों का शहर हो,

0: झीलों के शहर में रहने का ख्वाब कितना मीठा और सुहाना होता है ये तो आपने सुना, लेकिन ये भी आपको बता दें कि विधु विनोद चोपड़ा मूल रूप से कश्मीर के ही हैं, इसीलिए शायद इनकी फिल्मों में हसीन वादियों की लोकेशन ज्यादा होती हैं।
1: और पढ़ाई लिखाई भी वहां हुई, कॉलेज भी वहां हुआ, सो अगर सही मानों में आप कहें तो कश्मीरी हूं मैं, कश्मीर से हूं और कश्मीर में ही मेरी कश्मीर के बाद मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया था।

मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में हर छोटे शहर में हर छोटा लड़का या हिंदी फिल्म का हीरो बनना चाहता है या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दो ही हीरो हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या हिंदी फिल्म के हीरो हैं।

हर बच्चे की तरह, छोटे शहर के बच्चे की तरह, मेरा भी एक ही सपना था कि मैं फिल्मों में कुछ करूं, और हिंदी फिल्मों में, और वहां कश्मीर में सिर्फ हिंदी फिल्म देखने को मिलती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं टॉप किया हूँ, यूनिवर्सिटी नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से ही, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूंगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। पूछा कि ये हर लड़का जो फिल्म इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ाई के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ है? मैंने कहा नहीं, अगर उस लड़के के पास कैम्ब्रिज में पीएचडी करने की चॉइस हो, और एफटीआईआई से डीसीडी डिप्लोमा इन सिनेमा की चॉइस हो, और वो ऑप्ट करे यहां आना, तो वो बेवकूफ ही नहीं, गधा है बिल्कुल। तो फिर ऋषिदा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि आप गधे क्यों बन रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी, जो एक ख्वाब था, मैं जो जितनी मेरी रैशनल सेंसेस हैं उनको ओवर रूल करके यहाँ आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ दिल और जज्बात से ये डिसीजन ले रहा हूँ।

0: दोस्तों, विनोद चोपड़ा का घरेलू नाम है विधु, जिसको मिलाकर ये कहलाए विधु विनोद चोपड़ा। यदि आपने इनकी कोई फोटो या तस्वीर देखी हो तो निश्चित ही आप भी मानेंगे कि ये काफी हैंडसम हैं। लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर फिल्म निर्माण और निर्देशन की बागडोर ही क्यों संभाली, इसका भी एक राज है।
1: मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल में, उसमें मैं हीरो था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्टिंग करके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं।

मुझे तो ऐसा लगता था उस समय भी और आज भी कि एक्टर्स जो हैं ये ठीक है कि मैगजीन्स में उनकी फोटो छपती है, लोग कहते हैं वाह, लेकिन हैं वो सिर्फ पपेट्स हैं बिल्कुल। उनके धागे तो किसी और के हाथ में, जैसे आनंद में उसने बहुत कमाल की लाइन गुलजार भाई ने लिखी थी कि धागे ऊपर वाले के हाथ में, तो यहाँ धागे जो हैं उन एक्टरों के वो हमारे हाथ में।

विधु विनोद चोपड़ा ने बहुत ही चुनिंदा फिल्में बनाई हैं। फिल्मकार के रूप में उनका नजरिया लीक से हटकर है, अपनी बात को फोकस करने का उनका अपना अंदाज है। 1942 ए लव स्टोरी से ही उन्होंने ये बात साबित कर दी थी।

विधु विनोद चोपड़ा ने जब फिल्मों में आना तय किया तभी ये सोच लिया था कि फिल्म मनोरंजन का मीडिया तो है लेकिन इसका उपयोग अपनी बात कहने के लिए कैसे किया जाए इस बात में सावधानी बरती जाए तो यकीनन फिल्मों का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि उनकी हर फिल्म में एक नया विषय जरूर होता है, चाहे वो फिल्म मिशन कश्मीर हो, 42 ए लव स्टोरी हो, परिंदा हो या हो करीब, सभी में एक नया एहसास उनकी फिल्मकारी का आपको जरूर मिलता है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस। इसके मुख्य चरित्र को लेकर उन्होंने कई समस्याओं को फिल्म के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। लोगों ने उनके बात कहने के इस अंदाज को भी बहुत बहुत पसंद किया है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद लगे रहो मुन्ना भाई ने भी काफी लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया और ये फिल्म भी एक मिसाल बन गई।

0: और दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी थ्री इडियट्स, देखी होगी आपने और मजा भी लिया होगा।
1: आउट ऑफ कंट्रोल हो टोको करके गोल।

0: और सन 2014 में विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी फिल्म पीके।
1: तुझे तक तक तक रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना, काम काज सब भूल।

0: आज का ये प्रोग्राम आज के फनकार केंद्रित था निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी।

0: अधूरे ओवर को पूरा करने के लिए तैयार फातिमा।
1: So here is Fatima now after being attended to by the physiotherapist into Harmanpreet. And this time Harmanpreet can do no more than to push the ball back along the track. There is no run. So Fatima Sana, despite having scored zero when Pakistan batted, has been like a one-woman army for Pakistan. She has been paddling the boat all by herself, giving all 100%, showing the intent. And managed to pick up three wickets, three important wickets of Smriti Mandhana, Shefali Verma and Pratika Rawal, up to Harmanpreet now and Deepti Sharma to take India home with just 22 degrees of 85 balls as the next one has been pushed on the offside, not for runs. Six overs gone, we are done with the power play. 34-43 India in quest of that magical figure of 56.
0: So, Bharat ne 34 run banaye hain ab tak, तीन विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के छह ओवर्स की समाप्ति हो गई है और इन छह ओवर्स में भारत की तरफ से चार चौके आए हैं और एक छक्का भी आया है। सादिया इकबाल ने इन पावर प्ले में तीन ओवरों की गेंदबाजी की पाकिस्तान के लिए, जिसमें 16 रन दिए और फातिमा साना एकमात्र सफल गेंदबाज पाकिस्तान की कप्तान। तीन ओवर 17 रन और तीनों की तीनों सफलताएं उन्हीं के खाते में। नए ओवर की शुरुआत होगी, दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पर होंगी और पावर प्ले के बाद का पहला ओवर। नशारा संधु आ रही हैं गेंदबाजी के लिए। भारत का रन रेट अभी है 5.67 का, रिक्वायर्ड रन रेट 1.57 का। वैसे तो सिर्फ औपचारिकता दिखाई देती है इस मुकाबले में, लेकिन जिस तरह से फातिमा शना ने गेंदबाजी की उससे थोड़ा सा रोमांच जरूर इस एशिया कप के मैच में आया है, लेकिन भारत अभी भी इस मुकाबले में काफी आगे है। दीप्ति शर्मा स्ट्राइक के लिए तैयार हो रही है। 84 गेंदों में 22 रन चाहिए। इस ओवर की पहली गेंद नशारा संधु की, ओवर द विकेट, पहली गेंद को लॉक किया है मिड विकेट के ऊपर से और यह चौका आता हुआ दीप्ति शर्मा के बल्ले से। पहला चौका दीप्ति शर्मा का और इस चौके के साथ उनका स्कोर बढ़ता हुआ 8, भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, तीन विकेट के नुकसान पर। इस चौके के जरिए दबाव भी हटाने में दीप्ति शर्मा कामयाब रही हैं भारतीय टीम के ऊपर से, जो तीन विकेट के एक के बाद एक पतन के बाद मानसिक दबाव की स्थिति भारतीय बैटिंग पर आई थी। इस चौके ने उसको काफी कुछ हल्का किया होगा और नशारा संधु निश्चित रूप से दबाव में आई होंगी, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की और उनकी पहली ही गेंद पर यह शानदार स्ट्रोक लगाया है दीप्ति शर्मा ने। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार नशा संधु, इस गेंद को जो बेहतर गेंद थी बैकफुट पर जाकर खेला मिडॉन की तरफ, रन के लिए जाना चाहती थी लेकिन वो रन था नहीं वहां पर। अपने अपने कदमों को वापस क्रीज में खींचा। अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुकाबलों की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्या वो आंकड़ा रहा है हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहली बार इस ओवर में इस गेंद को स्वीप किया दीप्ति शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 39, तीन विकेट के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा 9 पर पहुंच गई हैं। तो हम बात कर रहे थे इस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच लार्जेस्ट विक्ट्रीज विकेटों के लिहाज से, तो उसमें भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी और 7 गेंद रहते वो जीत हासिल की थी, 106 रन का लक्ष्य हासिल किया था। धन्यवाद प्रदीप कुमार तुमटे आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी के लिए तैयार, इस गेंद को पैडल स्वीप किया है एक रन के लिए, तेजी के साथ भागी है, फील्डर भाग रही है उस गेंद के पीछे, जब तक गेंद को रोक पाए दूसरे के लिए भी पलटेंगी। हालांकि यह दूसरा रन थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन अंत में आसानी के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वो दूसरा रन भी पूरा किया और इन दो रनों के साथ भारत का स्कोर पहुंच गया 41 रन, तीन विकेट के नुकसान पर। अब थोड़ी सी सजग भारतीय बल्लेबाजी अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाती हुई, लक्ष्य अब बहुत दूर

0: Well, to this masterclass of the Indian spin bowlers as we watch Omiyani once again round the wicket. That's a picker ball pushing it on the offside. They go for a quick single. Good call from Harmanpreet, who was at the North Shakers, and the Indian skipper well responded by Dipti Sharma, and they make that run quite easily. The ball was played in that area at short mid-off where there was no fielder, and before fielders could converge on the ball, the two batters out in the middle, Harmanpreet Kaur and Dipti, running between the wickets like a gazelle, adding one more run to the Indian total, which goes up to 44 for 3. As here is the next ball due to Harmanpreet, clipping it away on the onside, down to the left of the fielder at short backwards. Quelle can't prevent a single coming of the last ball. 8 overs gone, and the total for Pakistan, for India, then it's 45 for 3.
1: So, Bharat ab jeet se sirf 11 run door, aur abhi bhi Bharat ke paas 12 overs bache hue hain. Required run rate Bharat ke liye 0.92 ka, 7 wicket abhi bhi surakshit. और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद मैदान पर हैं, उनके साथ वरिष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा मोर्चा संभाले हुए हैं. अब जीत की औपचारिकता भर भारत के लिए रह गई है. क्या इन 11 रनों के सफर में पाकिस्तान की टीम और भी कोई विकेट झटकने में कामयाब हो पाती है? जहां तक विकेट्स के लिहाज से भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में जीत की बात है, भारत ने 105 रन का लक्ष्य हासिल किया था 9 विकेट रहते और 20 बॉल बाकी रहते. फिर 8 विकेट से जीत हासिल की, 94 रन का लक्ष्य हासिल किया 9 गेंद बाकी रहते. एक बार फिर से 8 विकेट की जीत हासिल की, 38 गेंद बाकी रहते और लक्ष्य था 100 रन का. इस मुकाबले में भी अब जीत का लक्ष्य बहुत दूर नहीं है. एक रन और इस बीच में भारत के खाते में आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 46 3 विकेट के नुकसान पर. अब स्ट्राइक पर दीप्ति शर्मा 13 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रही हैं. अशरा संधु के इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद पर एक रन, दूसरी गेंद का सामना करेंगी दीप्ति. बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन और मिलेगा. एक एक रन के जरिए भारत अब जीत की मंजिल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचना चाहता है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले 7 मुकाबले, जिसमें से 6 भारत ने जीते, सिर्फ एक में पाकिस्तान को जीत मिली, और ये 8वां मुकाबला भी भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है. इस गेंद को लॉब किया है, इस बार हवा में मिड ऑन के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने. जैसे ही देखा कि गेंद पर फ्लाइट है, कदमों को बाहर निकाला और थोड़ी देर के लिए जान हलक में जरूर आई होगी, क्योंकि मिड ऑन पर एक फील्डर मौजूद थी, उनसे बहुत दूर नहीं थी ये गेंद, हाथों के आसपास, उंगलियों के आसपास से निकलती हुई ये गेंद, कप्तान खुद वहां पर मौजूद थी, हालांकि गेंद को लपक नहीं सकी और 4 रन आया. इसके साथ ही भारत के 50 रन पूरे, 51-3 विकेट के नुकसान पर. अब चाहिए भारत को 5 रन. 69 गेंदें बाकी इस ओवर में, अभी 3 गेंदें बाकी. क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को लॉब किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और इसके साथ ही भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर ने इस छक्के के साथ 18 रन पूरे कर लिए और भारत ने महिला एशिया कप 2020 2026 में अपनी लगातार 3री जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जानकारी के साथ कि भारत ने पाकिस्तान के साथ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपना ग्रुप ए का 3रा मैच 7 विकेट से जीत लिया है. मैं धर्मेंद्र मणि राजेश अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस के साथ साथ, स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुम्बड़ के साथ आप सभी को आज इस तमाम आंखों देखा हाल के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा. लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही, उसने अपने तीनों के तीनों लीग के मुकाबले जीते और 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है. ग्रुप ए में भारत

0: पहले स्थान पर रहा है। अब आपको लिए चलते हैं अपने खास कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
1: प्लेयर ऑफ द मैच।
2: Welcome to Player of the Match, and what a match it was. The Indian cricket team has beaten Pakistan by 7 wickets in Dubai, and a comprehensive win at the Asia Cup. Sensational performance by the Indian women. Aur aaj hamare saath hai Megha, who's hosting the show with me, and we have some special guests. Latika Kumari, former Indian cricketer, and Sabi Hussain is also here, a senior sports journalist. And Megha, we didn't think that India would have it so easy, magar comprehensive performance bhi nahi, ye kehte hain sensational performance aaj hui hai hamare Indian women ki.
3: Absolutely, coasting to a 7 wicket win. All three games, India managing to leave an impact and being very dominant. Latika, सबसे पहले तो काफी कम रन्स थे, पाकिस्तान ने जज्बा दिखाया दूसरी इनिंग्स में, लेकिन वो कभी काफी नहीं होने वाला था।
4: कभी काफी नहीं होने वाला था वो तो हम जरूर जानते हैं, लेकिन मुझे बड़ा इम्प्रेस किया पाकिस्तानी कप्तान फातिमा ने, जिस तरीके की फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने इस मैच में दिखाई और फ्रंट से लीड करते हुए टीम को जिस तरह गेंदबाजी उन्होंने की, 3 ओवर में 17 रन देके और जो टोटल जो 3 विकेट पाकिस्तान ले पाया वो उन्हीं की गेंदबाजी में आई, तो एक प्लेयर के नाते वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा कि किस जो उन्होंने अपनी टीम के लिए कोशिश की वो एकदम कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करने वाली चीज है। बाकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं दिए कि वो लड़ाई कर सके, तो इसी की वजह से ये जो एक आसान सी जीत है वो भारतीय खेमे में जरूर नजर आई आज।
2: एंड सभी लतिका ने बहुत ही वैलिड चीज कही है कि फातिमा की परफॉर्मेंस ऐसे मैच में जहां पे स्पिनर्स ने डोमिनेट

0: पल्ला भारी था, मगर फातिमा सना ने आके एक कैप्टन, 24 इयर्स ओल्ड की है पाकिस्तान की ये कैप्टन, और 3 विकेट, 17 रन, 3 ओवर, क्वाइट अ गुड परफॉर्मेंस देयर बाय द पाकिस्तान स्किपर।
1: बिल्कुल, फातिमा सना की जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि डिस्पाइट कि इतना है ना लो टोटल को है ना, मतलब कि एक पाकिस्तान डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी उन्होंने भारत के जो 3 बैटर्स हैं जो उनको आउट किया, और मतलब कि उन्होंने, मतलब कि जहां पे हम स्पिन डोमिनेशन की बात कर रहे थे वहां पे उन्होंने, जिसे कहते हैं ना शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और 3 विकेट उन्होंने चटकाए। कुछ जैसे अगर हम फातिमा की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन जो पाकिस्तान है आज अपना 200th T20 इंटरनेशनल खेल रहा था, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि इस ओकेजन को और अच्छा करे, जीतते, लेकिन बैटिंग उनकी बिल्कुल ही नहीं चली जहां पे, और हमारे इंडिया के जो स्पिन कॉम्बिनेशन है उन्होंने 9 विकेट निकाल दिए और पूरी तरीके से डोमिनेट किया। तो जब आपके स्कोर ही इतना नहीं था कि जिसको आप डिफेंड कर सके, उसमें भी फातिमा सना ने 3 विकेट निकाल कर ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर उनके बैटर्स और अच्छा परफॉर्म कर पाते, कहीं ये स्कोर 100-120 प्लस होता तो एक फाइटिंग टोटल होता, एक है ना फाइट हो सकती थी, लेकिन 55 रन्स जहां पे बनाया था, 56 रन्स का टारगेट था, उसमें भी उन्होंने 3 विकेट निकाले। तो और जिस तरीके से हम देख भी रहे थे कि वो उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी, जो रिदम थी, वो कहीं भी नहीं भटकी, मतलब 3 विकेट देखिए आपने, ऐसा नहीं है कि वो कि कोई बैट्समैन की उस तरीके से कोई गलती रहे, बॉलिंग इतनी अच्छी थी, वो बॉलिंग इतनी सटीक थी, बॉलें इतनी तीनों अच्छी थी कि उन्होंने वो, जैसे कहते हैं ना शी अर्न दोज विकेट्स। तो फातिमा सना ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट ये चीज़ रही कि टोटल इतना छोटा था डिफेंड करने के लिए कि वो भी कुछ मतलब कर नहीं पाए उस।
2: लतिका बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं फातिमा सना, 2024 में पहली बार विश्व कप में कप्तानी की, वो जो जज्बा है उनका वो टाइम एंड अगेन हमें देखने को मिलता है, और जिस तरह से एज ए लीडर इतनी कम उम्र में वो अपनी टीम को लीड करती हैं, 3 गेंदों पे जो उन्हें विकेट्स मिले, पहली 2 गेंदे तो ऑफकोर्स इन टू द विकेट और उसके बाद फुलर, लेकिन जितनी सटीक लाइन और लेंथ।
3: बिल्कुल, देखिए, और ये सीखने वाली चीजें हैं, जब इस तरह का प्लेयर आपको एक मैच में दिखता है, चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहा हो, तो यंगस्टर्स के लिए काफी मोटिवेशनल चीजें होती हैं यहाँ पर, कि उनकी गेंदबाजी किस तरीके से रही, चाहे भले ही टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में उनके हाथ में क्या था, उन्होंने उस चीज को फोकस करते हुए लाइन लेंथ को अपना एक हथियार बना लिया, और उस लाइन लेंथ के चलते स्मृति मंदाना जैसी आपने बड़ी मछली फंसाई, वहां पर शेफाली वर्मा को आपने चलता किया, प्रतिका रावल को आपने बिल्कुल मौका नहीं दिया। तो बॉलिंग में अगर धार चाहिए आपको, किसी भी तरीके से परेशान करने वाली गेंदबाजी चाहिए, तो वो इस प्लेयर से आपको सीखना चाहिए किस जज्बे के साथ उन्होंने गेंदबाजी यहां पर की है।
0: 7 विकेट विन फॉर इंडिया, एंड हमने मैच से पहले बात करी थी सभी अबाउट द इंडियन मिडिल ऑर्डर बीइंग टेस्टेड, आज वो टेस्ट था, मगर आपको क्या लगता है ये इंडियन मिडिल ऑर्डर ने वो टेस्ट पास करा है या फेल करा है, क्योंकि आज ओपनर्स आपके चीपली डिसमिस हो गए, मगर चांस था प्रतिका रावल के लिए इंपैक्ट करने का जो वो नहीं कर पाई।
1: प्रतिका रावल को देखिए, उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहा ही, क्योंकि स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था, चाहती तो वो कुछ, जिसे कहते हैं ना कि बिफोर दी नॉकआउट मैचेस, जो सेमीफाइनल में इंडिया है और हो सकता है कि फाइनल में भी जगह बनाए, तो उस पॉइंट से अगर देखें तो प्रतिका रावल अगर आज कुछ रन्स स्कोर करती तो थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस आता आगे के गेम के लिए, थोड़ा सा उनको खुद को ही अच्छा लगता, लेकिन आज फिर से अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही चीपली डिसमिस हो गई, क्योंकि उसमें फातिमा सना की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, वो बॉल ही इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल चकमा खा गई। और जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की बात रही, तो पास और फेल होने वाली बात इसलिए नहीं आई क्योंकि स्कोर ही इतना कम था, अगर थोड़ा सा भी स्कोर ज़्यादा होता तो जैसा आपने ठीक कहा कि 3 विकेट भारत के, जो जिसमें हमेशा से टॉप ऑर्डर पे वो भारत अपना जो डोमिनेट करता है पोजीशन को और हमेशा से टॉप ऑर्डर चला, आज वो कहीं ना कहीं दिखा कि पाकिस्तान के फातिमा सना के आगे वो बिखर गया या वो इतना कमाल नहीं कर पाया, और फिर मिडिल ऑर्डर पर बात आ गई, लेकिन टारगेट इतना नहीं बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं हरमनप्रीत और दीप्ति जिन्होंने भारत को फाइनली जीत दिलाई, और हरमनप्रीत ने वो एक लाजवाब 6 मार के वो जो डोमिनेंट विन जो दर्ज करी, तो वो उतना स्कोर नहीं था क्योंकि उनके बॉलों का भी कुशन था, रन रेट का भी कोई प्रेशर नहीं था, विकेट्स भी उनके हाथ में थे, तो सब चीज़ें ही भारत के पक्ष में चल रही थी। तो मिडिल ऑर्डर का रियल टेस्ट शायद मैं कहता हूँ कि सेमीफाइनल में आएगा, जब उनका वो श्रीलंका या बांग्लादेश में से वो अपोनेंट पता चलेगा, यही हालात अगर ऐसे किसी आगे सेमीफाइनल या फाइनल के मैच में होते हैं और भारत कोई 150 के आसपास चेज कर रहा है, तब वो पता चलेगा।

0: कि मिडिल ऑर्डर क्या वाकई में ही इतना, जिसे कहते हैं, वो प्रेशर ले सकता है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो मिडिल ऑर्डर आपको दे सेल पास दैट शिप, तो देखना पड़ेगा। लेकिन आज की जगह तक हम बात करें तो आज तो इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर 15th जो विन है वो सेलिब्रेट करने का वक्त है, तो सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी, 28 रनों की साझेदारी हुई हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के बीच में लतिका, और दोनों ही काफी अनुभवी खिलाड़ी। मे बी जो लगातार वॉबल हम देखते आए हैं पहले दो मैचेस में, उसके बाद शायद किसी तरह का कॉन्फिडेंस तो इस साझेदारी ने इंस्पायर किया होगा भारतीय टीम में।
2: देखिए, जिस तरीके की शुरुआत हुई, शेफाली ने कोशिश जरूर करी, लेकिन फातिमा की गेंद में एक इतनी अच्छी गेंद पड़ी, वहां पर वो आउट हुई। उसके बाद जिस तरीके से प्रतिका रावल आउट हुई, फिर स्मृति मंदाना, तो बहुत जल्दी जल्दी ये विकेट गिरे। और उसके बाद जब हरमनप्रीत वहां पर आती हैं, और काफी समय से अगर मैं बोलूं तो काफी समय से उनके बल्ले से हमने वो रन्स, वो कॉन्फिडेंस वो अभी तक देखा नहीं है मैचेस में, और दीप्ति के बल्ले से हमने जरूर देखा है। लेकिन मैं यहाँ पर हरमन की ये भी दाद दूंगी कि आपने इस लो स्कोरिंग मैच में किस तरीके से आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहां बल्लेबाजी की, जो आपको गेंदे मिली आउट ऑफ द पार्क करने की, उन पे आप खेले तो किसी शेल में नहीं गए। अदरवाइज अगर हमने पिछले मैचेस में देखा होगा तो वो इतना उभर के बल्लेबाजी करती हुई नहीं दिखाई दी। और प्रतिका रावल के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा चांस उनको यहां पर मिला है एशिया कप में अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कि आप T20 प्लेयर हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके की स्किल है, जिस तरीके की टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया वो बल्लेबाज हैं। लेकिन क्या वो T20 में एडजस्ट कर पा रही हैं, क्या नहीं कर पा रही हैं, उसके साथ साथ आप फील्डिंग पे भी नजर रखें कि आप टीम को कितना कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रही हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जरूर बहुत सारी चीजों को सोच रहा होगा, और मैंने हमेशा देखा है कि हरमन है या मैनेजमेंट है, वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक प्लेयर के लिए कि वो किस तरीके से आगे इस एशिया कप को देखती है।
3: मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया 3 out of 3, 3 matches 3 जीत, टॉप ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप स्टेज से तो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। इंडिया का सेमीफाइनल मैच थर्सडे 10 सितंबर को होगा, मगर अभी हमें नहीं पता इंडिया किसके खिलाफ खेलेगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका के 4 points है,
4: बांग्लादेश।
5: In hindsight, looking back, how wise was the decision to win the toss and elect to bat first?
4: I think we know that a fresh wicket, and we just want to put the maximum total, and we know we have a good bowling side, so we just try to put the maximum total there.
5: You delivered a star turn of sorts with that spell of yours, 3 wickets. How would you want to remember that? Because India versus Pakistan is always special.
4: Yeah, but still, if we lost the match, that it doesn't matter. So we just need a win. So that was not matter.
5: You're still alive in the race to the semi-finals. How crucial is your next match going to be, which is also going to be your last group stage contest?
4: Yeah, definitely we will try to play a good cricket there, and the last match we will try to win the match, and we will play to semi-final.
5: Go well in the next one. Thank you, Fatima. That was Pakistan skipper Fatima Sana Khan. Time now to announce the player of the match for fixture number 9, India versus Pakistan. And for spectacular figures of 3 for 7, the player of the match is the 22-year-old from Kadapa, Andhra Pradesh, world number 1 in women's T20Is, N. Sri Charani. What a performance. She will collect the check from Miss Ebtisam Ahmed Al-Kabi, and trophy from Miss Esha Chatterjee, delivering the goods once again, operating with aplomb inside the power play and also in the middle overs, and is now one shot of her 50th T20I wicket in Sri Charani of Kadapa, Andhra Pradesh. How delightful is it to be player of the match in an India versus Pakistan fixture?
6: It's great, ma'am. Great feeling to be to contribute my team.
5: थोड़ा अपने स्पेल के बारे में बताइए, हरमनप्रीत कौर ने आपको पावर प्ले में लाया, फिर किस तरीके के माइंडसेट के साथ आपने ऑपरेट की?
6: लाइक जस्ट वांटेड टू बोल टू माय स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड।
5: What do you back yourself with most, wicket to wicket? You've got great speed as well, as Avishkar Salvi, your bowling coach, has mentioned. What is it that you are most confident about in your arsenal of skills?
6: Only I just try to give more reps on the ball, so that helps me every time.
5: and to be one shot of that 50th T20

0: ह्यूमिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि अभी भी जिस तरीके से वो देखती हैं कि माइलस्टोन्स जो हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे इंडिया को जीत दिलाने के लिए, अपनी बॉलिंग से अपने कैप्टन का जिसे कॉन्फिडेंस जीतने के लिए और अपनी कंट्री के लिए ना जो कहते हैं ना कि 100% देना, तो जिस तरीके का अभी देखिए वो एक जिस तरीके की मैच्योरिटी वो दिखा रही हैं और इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हर कैरेक्टर की उनको माइलस्टोन से या इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली उनका गोल है अपना अच्छा बॉलिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस देती रहे, टीम को जब उनकी ज़रूरत पड़े तब अपना 100% दें और टीम को जीत दिलाएं, और यही एक एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। और जैसा कि हम इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सुन भी रहे थे, हरमनप्रीत ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये टीम रूथलेस है, और जब जब कैप्टन कह रही है कि ये टीम रूथलेस है तो रूथलेस होने का मतलब यह है कि आपके हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा टू दी ऑप्टिमम लेवल। तो वही चीज़ है, श्री चढ़नी अपने जो कैप्टन हैं उनके उस जो कॉन्फिडेंस उन पर दिखा रही हैं वो उसको पूरा 100% दे रही हैं, तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि श्री चढ़नी माइलस्टोन्स की तरफ नहीं देख रही हैं, अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टीम के लिए उनका 100% देना और कंट्री को जीत दिलाना, ये उनका जिसे कहते हैं ना दिस इज हर टारगेट।
1: जी हाँ, टारगेट है, स्टैंडर्ड्स हाई हैं और इंडिया की जीत का जश्न आज पूरी कंट्री मना रहा है। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए आपके पास कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, लतिका या सभी के लिए, या आप कोई विशेष
2: करना चाहते हैं। मेरा नाम वही वेंकट रेड्डी, गाँव लखपुर सूर्यपेट तेलंगाना बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी बोलिए,
2: सबको कह रहा हूँ गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग,
2: मेरा सवाल ये है सेमीफाइनल या फाइनल्स में हम श्रीलंका के साथ मैच खेलना पड़ता है, श्रीलंका की क्रिकेट टीम एक तगड़ी टीम है, हमारा मिडिल ऑर्डर बार बार फेल हो रहे हैं, श्रीलंका के साथ मैच में एक या दो चेंजेस के साथ आना चाहिए, ये तो मेरा मानना है, आप क्या कहते हैं लतिका जी?
3: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से अभी तक खेल रही है और जो कॉम्बिनेशंस भारतीय टीम के पास हैं अभी, तो उसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि श्रीलंका के अगेंस्ट आप बहुत बड़े चेंजेस करने जाएंगे। आप ऑलरेडी प्रतिका रावल को वो चांसेस दे चुके हैं, आगे भी उसको इस सीरीज में देखना चाहेंगे कि वो कैसा कर रही है। हाँ, मिडिल ऑर्डर जरूर हमारा कोलैप्स हुआ है, कई जगह पे कोलैप्स हुआ है, लेकिन हरमनप्रीत जिस तरीके से अपना भरोसा दिखा रही है अपनी टीम की तरफ, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम बेहतर प्रदर्शन करें वहां पर अगर श्रीलंका हमारे सामने सेमीफाइनल्स में आती है तो मुझे लगता है हम एक कॉम्बिनेशंस में है, शुरुआत बल्लेबाजी में अच्छी हो रही है, गेंदबाजी हमारी डोमिनेट कर रही है, तो इतना खतरा मुझे नजर नहीं आता। बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और उस दिन किस तरीके से क्या डिसीजन मैनेजमेंट लेगा या सपोर्ट स्टाफ लेगा तो वो चीज उसी दिन देखते हैं, और कौन सी टीम भारतीय टीम के सामने आएगी ये भी अभी तय होना बाकी है।
1: थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, प्लीज आप कॉल कर सकते हैं हमें 011-234-21084 या 85 पर। और एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इंडिया की ये शानदार जीत पर।
4: जिला फैलका से कुलदीप बोल रहा हूँ जी।
1: हाँ जी बोलिए,
4: आज बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है जी।
1: बिल्कुल बॉलिंग तो शानदार हुई है, तो
4: सेमीफाइनल पिचका रावल की जगह किशोर को कट करें जी,
1: और लग रहा है ये सेंटिमेंट सभी सबके लिए हर कॉलर का है कि प्रतिका रावल की जगह किसी और को चांस देना चाहिए। आपको लगता है क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट ऐसा स्टेप ले सकती है?
0: मुझे नहीं लगता है कि प्रतिका रावल को रिप्लेस किया जाएगा, ऑल्दो ठीक है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये उनको भी लग रहा होगा, आज भी जिस तरीके से जब वो आउट हुई बहुत ही निराश लग रही थी, हमने देखा भी कि किस तरीके से उनका हम फेस रीड कर पा रहे थे कि बहुत ही है ना, मतलब उनको खुद को मतलब अपने वो शॉट बॉल बहुत अच्छी थी ये मैं कहना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि आज वो दिन था कि थोड़ा मतलब टारगेट भले ही छोटा था लेकिन कुछ स्कोर कर पाती, थोड़ा सा वो कुछ अपना बैटिंग आज अच्छी दिखा पाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ेगी टीम मैनेजमेंट या अमूल मजूमदार या बाकी जो लोग हैं वो इस तरीके का कोई ड्रास्टिक स्टेप लेंगे जहां पे वो प्रतिका रावल को ड्रॉप करे। हालांकि ये ज़रूर है क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनसे बात ज़रूर करेगी, जानना चाहेगी कि क्या चीज़ है जो कि मतलब कि ऐसा कुछ उनको अफेक्ट कर रही है। बट देखिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें थोड़ा बहुत

0: उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, बट ऐसी ज़्यादा कोई वरी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडियन टीम है उसमें सारी मैच विनर्स हैं। एक एक मैच की बात है, एक अच्छी नॉक की बात है, हो सकता है वो अगले मैच में वो नॉक आ जाए, तो ऐसे इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रतीका रावल ने अपने आप को प्रूव भी किया है, शी हैज़ बीन अ फाइन प्लेयर, और उन्होंने है ना टाइम एंड अगेन दिखाया भी है अपनी परफॉर्मेंस से कि वो काफ़ी अच्छी प्लेयर रही हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं से कि अभी इस तरह की कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और टीम मैनेजमेंट भी मुझे नहीं लगता ऐसे कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेगा, लेकिन हालांकि टीम मैनेजमेंट बात ज़रूर करना चाहेगा, बट आई थिंक इंडिया शुड गो हेड विद दिस विनिंग कॉम्बिनेशन, चाहे वो श्रीलंका हो या कोई एनी अदर टीम हो। और श्रीलंका तो वैसे भी डिफेंडिंग चैंपियन है, 2024 में उन्होंने ये एशिया कप जीता था, इंडिया ने 2022 में जीता था, तो इंडिया तो खेल रही है रिटेन करने के लिए, वापिस से रिगेन करने के लिए ये एशिया कप ट्रॉफी। तो प्रतिका रावल के ऊपर जो सवाल है वो यही है कि अभी विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेट हर गिव हर्स अ टाइम टू सेटल डाउन।
1: अगर मुझे लगता है अगर कोई चेंज हुआ तो मैं कमलिनी को यहाँ देखना चाहूंगी, क्योंकि एक यंगस्टर है और अच्छी ताकत भी रखती हैं, WPL में भी उन्होंने दिखाया है और डोमेस्टिक लेवल पे भी काफी अच्छा उन्होंने खेला है। तो अगर कोई चेंज होता है तो मुझे लगता है कि ये चेंज होगा तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा, कि राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी आपके पास आता है वन डाउन पर, और वो किस तरीके से गेम को चलाएंगी वो भी देखना होगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रतिका रावल ने हमें वर्ल्ड कप में अपनी जो प्रतिभा है वो हमें दिखाई है कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। हाँ ठीक है, T20 में उनको इतना एक्सपोजर अभी तक मिला नहीं है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं, चोटिल वो हो गई थी जिसकी वजह से उनका WPL भी मिस हो गया था, उसके बाद काफी जो मैचेस हैं उनके मिस हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है किसी ना किसी प्लेयर की, और ये एक अच्छी जगह है प्रतिका रावल के लिए भी कि आप किस तरीके से इन मैचेस को देखते हैं। कोई भी प्लेयर जो ग्राउंड में उतरता है खेलने के लिए उतरता है वो अपने आप को दिखाने के लिए ही जाता है, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे गेंदबाज हो, चाहे वो फील्डर हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ मैनेजमेंट प्रतिका को जरूर यहाँ बैक करेगी, अगर कोई चेंज होता है तो मैं कमलिनी को वहां पर देखना चाहूंगी।
2: Pratika unfortunately dropped two catches as well, but the only change that we've seen from the World Cup to the Asia Cup is Indian team backing its players. Now, moving ahead, tomorrow, that is 6th of September, there is Sri Lanka versus Bangladesh clash, aur usme sabhi humne dekha hai ki Chamari Attapattu, as always, shandar form mein hai, lekin batoor all-rounder, jis tarah se unhone contribute kiya hai, 48 unbeaten UAE ke khilaaf, aur uske baad Indonesia ke virudh 7-4.
0: नहीं बिल्कुल जी, कि चमारी अट्टापट्टू जो है वो एक श्रीलंका की टॉप परफॉर्मर है, और हमेशा हम देखते भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका को है ना कई अच्छी जीत दिलाई हैं, कभी भी है ना टफ सिचुएशन हो वहाँ से भी है ना टीम को दे, शी हैज़ बीन एबल टू रिगल इट आउट टीम को। तो काफ़ी कल का मैच देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, श्रीलंका एक तो डिफेंडिंग चैम्पियन है और वो चाहेगी कि है ना कि वो एक अपनी ये लय बरकरार रखे और वो अपने इस क्राउन को डिफेंड कर सके एशिया कप के। वहीं बांग्लादेश भी एक अच्छी टीम है और वो भी एक प्रूवन परफॉर्मर है। तो चमारी अट्टापट्टू जो है वो अगेन शी विल बी अ वाइटल कॉग श्रीलंका की स्कीम ऑफ थिंग्स में, और वो चाहेंगी कि अपनी जो जैसा आप बता रहे थे कि इंडोनेशिया के अगेंस्ट 7 विकेट्स बाकी 48 रन, तो वो चाहेंगी कि वो लय बनी रहे, लेकिन कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसी से तय होगा कि इंडिया का नेक्स्ट सेमीफाइनल अपोनेंट कौन हो सकता है।
3: जी हाँ, और उसके बाद जो मैच होने वाला है 7 सितंबर को पाकिस्तान और हांगकांग चाइना का, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लतिका अभी जो पोजीशन है टेबल में पाकिस्तान सेकंड पोजीशन में है, -0.569 का रन रेट है, थाईलैंड जो सारे मैच अपने खेल चुके हैं -2.05, और हांगकांग चाइना -3.57। तो पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही कुछ ड्रामेटिक करना पड़ेगा कि वो सेमीफाइनल तक नहीं प्रवेश कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि हांगकांग ऐसा कुछ कर सकता है पाकिस्तान के साथ 7 सितंबर?
1: देखिए मैं फिर से बोलूंगी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और हमने देखा है कि हमारी भारतीय टीम भी कितनी लड़खड़ा रही थी इन टीम्स के सामने, इनकी गेंदबाजी के सामने, वहां पाकिस्तान ने जिस तरह की बल्लेबाजी आज की है काफी निराशाजनक जरूर रही, लेकिन कोशिश पाकिस्तान भी यहां से करेगा कि हांगकांग के सामने अपनी दावेदारी बहुत ही मजबूत तरीके से रखे, और वहां से अगर उन्होंने जीत हासिल करते हैं तो सेमीफाइनल में वो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर हांगकांग कुछ उलटफेर करेगा तो पाकिस्तान को देखना होगा कि फिर वो कहां पर

0: एंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैच इतना भी परेशान नहीं करेगा पाकिस्तान टीम को।
1: और उसके बाद बांग्लादेश और यूएई आमने सामने होंगी। समीकरण सभी ऐसा बना हुआ है कि बांग्लादेश ऑब्वियसली इज इन विद द चांस एंड सो इज यूएई। और बांग्लादेश ने अभी तक कुल एक मुकाबला ही खेला है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने, खास करके नहीदा और मारूफा ने, शानदार प्रदर्शन किया इंडोनेशिया के विरुद्ध।
2: जहाँ तक बांग्लादेश की बात करें तो देखिए, कल का मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही देखना चाहेंगे थोड़ा सा कि सेमीफाइनल्स की जो रेस है, जो जिसमें है ना, भारत ने तो अपनी जगह पक्की कर ही ली है, पाकिस्तान भी हांगकांग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश की तरफ से भी हम देखें तो है ना, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, तो ये एक है ना कि ये एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। और यूएई के साथ भी बहुत अच्छा ही मुकाबला होगा बांग्लादेश का, तो ये जिसे कहते हैं कि सेमीफाइनल की रेस इज क्वाइट हॉटिंग अप। तो देखते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट अपोनेंट क्या होता है और ये जो चार सेमीफाइनलिस्ट वो कौन आते हैं।
3: जी हाँ, और इंडियन टीम को वेल डिजर्व ब्रेक मिलने वाली है क्योंकि उनका अगला मैच होगा 10 सितंबर को, थर्सडे को, उनका पहला सेमीफाइनल। और इंतजार रहेगा कि कौन होगा उनके सामने, श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई। एंड मेगा, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच। और हमने सोचा नहीं था कि इंडिया कितनी इजिली ये मैच जीतेगी और क्या कैसे डोमिनेट करेगी। और आई थिंक आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो इट्स अ गुड टीचर्स डे गिफ्ट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम।
1: एब्सोल्युटली, अमोल मजुमदार वुड बी थ्रिल्ड विद द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट द इंडियन टीम केम अप विथ। और हम भी काफी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला इतनी जल्दी समाप्त हो गया, बट शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट्स का जिन्होंने इतनी बारीकी से मैच को ऑब्जर्व किया और हमें अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू टू यू एज वेल अभिनव, एंड वीड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन टीम वर्किंग टायरलेसली बिहाइंड द सीन्स, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर एंड माधवी तिवारी। आर प्रोड्यूसर इज शाहनवाज खान। आर टेक्निकल टीम कंप्राइजेज विनोद कुमार, अनिरुद्ध गुप्ता, नागेंद्र कुमार पटेल एंड त्रिलोक गुप्ता। विद दैट वी साइन ऑफ, बट वीड बी बैक विद द टू सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम द एंटायर टीम।
4: प्लेयर ऑफ द मैच।
5: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
6: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
7: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
8: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताज़ा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
9: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: ही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
2: सुनिए कहानी कविताएं नाटक मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी लीवर हार्ट कॉर्निया इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है व्यर्थ मनुष्य डरता है एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
0: 870-001-4242।
7: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पीजीआईएमएस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाग अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan.

अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।